0: ଆମ ପାଖରେ ଯେତିକି ଅଛି ସେତିକିକୁ ନେଇ ଖୁସି ହେବା ଉଚିତ। ଆକାଶବାଣୀ ଭବାନୀପାଟଣା, ସମୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ସକାଳ 6 ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ପ୍ରଥମେ ହିନ୍ଦୀ, ପରେ ପରେ ଇଂରାଜୀରେ ସମ୍ବାଦ ରିଲି କରି ପ୍ରଚାର କରୁଛୁ ଆକାଶବାଣୀ ଦିଲ୍ଲୀରୁ କିଛି କ୍ଷଣ ମଧ୍ୟରେ।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पेपर लीक की घटना के बाद पिछले 2.5 महीने से कई कदम उठाए गए हैं। दोषियों को गिरफ्तार कर और जेल भेजा गया है। कल रात एक वीडियो संदेश में श्री मोदी ने कहा कि सरकार की मुख्य जिम्मेदारी ये सुनिश्चित करना थी कि विद्यार्थियों का शैक्षणिक वर्ष व्यर्थ न जाए और तत्काल परीक्षाएं आयोजित करना जरूरी था। उन्होंने कहा कि पेपर लीक एक छोटा मुद्दा नहीं है और ये लाखों विद्यार्थियों और उनके अभिभावकों के लिए अत्यंत पीड़ादायक है। प्रधानमंत्री ने कहा कि उन्होंने संबंधित विभागों से फास्ट ट्रैक अदालतों के लिए प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दिए हैं।
2: फास्ट ट्रैक कोर्ट के लिए विभागों को निर्देश दिए थे। विभागों ने लगातार मेहनत करके देर रात मुझे मुसद्दा भी दे दिया। फास्ट ट्रैक कोर्ट और कठोर सजा के प्रावधान के साथ का यह मुसद्दा कैबिनेट में चर्चा होगी। कैबिनेट के साथियों के सुझाव के बाद उसका अंतिम रूप दिया जाएगा और सोमवार से जल्द

0: उस बिल को सदन में पारित कराने का प्रयास किया जाएगा।
1: सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक ने कल रात गुरुग्राम के एक निजी अस्पताल में केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह की उपस्थिति में 26 दिनों से जारी अपना अनशन समाप्त किया। वांगचुक की पंक्ति गीतांजलि आंगमू और लेह लद्दाख के शीर्ष निकाय के वरिष्ठ नेता भी अस्पताल में मौजूद थे। इससे पहले विभिन्न राजनीतिक दलों के 65 सांसद भी वहां पहुंचे थे और पत्र लिखकर अनशन समाप्त करने का आग्रह किया था। श्री वांगचुक 28 जून से शिक्षा स्वास्थ्य में सुधार और पेपर लीक मामले में जवाबदेही तय करने की मांग को लेकर अनशन कर रहे थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सामाजिक कार्यकर्ता श्री वांगचुक से अपील की है कि वे डॉक्टरों की सलाह के अनुसार अपनी दिनचर्या का पालन करें और जल्द से जल्द अपने सामान्य वजन को वापस प्राप्त करें। एक सोशल मीडिया संदेश में प्रधानमंत्री ने ईश्वर से श्री वांगचुक के स्वस्थ बने रहने की प्रार्थना की है। दिल्ली मेट्रो रेल निगम DMRC ने सुरक्षा कारणों से आज सुबह 7:30 बजे से अगले आदेश तक 17 मेट्रो स्टेशनों को बंद रखने की घोषणा की है। इन स्टेशनों में लोक कल्याण मार्ग, राजीव चौक, पटेल चौक, रामकृष्ण आश्रम मार्ग, बाराखंबा रोड, सुप्रीम कोर्ट, सेवा तीर्थ, जनपद, झंडेवालान और मंडी हाउस, केंद्रीय सचिवालय, ITO, दिल्ली गेट, इंद्रप्रस्थ, खान मार्केट, जोरबाग और शिवाजी स्टेडियम शामिल हैं। हालांकि राजीव चौक, मंडी हाउस और केंद्रीय सचिवालय स्टेशनों पर इंटरचेंज की सुविधा जारी रहेगी। दिल्ली उच्च न्यायालय ने सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम अधिनियम 2024 के अंतर्गत मामलों की सुनवाई के लिए तत्काल प्रभाव से एक फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन किया है। दिल्ली पुलिस ने बताया है कि पाकिस्तान से संचालित 480 सोशल मीडिया हैंडल की पहचान कर उन्हें ब्लॉक किया गया है। पुलिस के अनुसार ये हैंडल छात्रों और युवाओं को गुमराह करने के लिए अफवाहें और झूठी जानकारी फैला रहे थे। भारत और रोमानिया ने विज्ञान और प्रौद्योगिकी, शिक्षा तथा खेलों के क्षेत्र में सहयोग के लिए 3 समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। इन समझौतों पर कल बुखारेस्ट में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और रोमानिया के राष्ट्रपति निकोसो डैन के बीच प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता के बाद हस्ताक्षर किए गए। अपनी प्रेस विज्ञप्ति में राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि भारत और रोमानिया 7 दशकों से अधिक समय से घनिष्ठ और स्थायी मित्रता साझा करते आ रहे हैं, जो आपसी विश्वास, सम्मान और मजबूत जनसंबंधों पर आधारित हैं। उन्होंने कहा कि भारत रोमानिया साझेदारी समय के साथ लगातार मजबूत हुई है। राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि उन्होंने और राष्ट्रपति निकोसो डैन ने सार्थक और उपयोगी चर्चा की और हाल के वर्षों में हुई प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि भारत और रोमानिया विनिर्माण, औषधि, स्वास्थ्य सेवा, नवीकरणीय ऊर्जा, हरित हाइड्रोजन, कृषि उत्पादन, उर्वरक, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, डिजिटल सार्वजनिक सुविधा और AI जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर सहमत हुए। भारत ने मानवाधिकारों का सम्मान करने और सभी के लिए अवसर सृजित करने वाली सुरक्षित, समावेशी और न्याय संगत खेल प्रणालियों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि की है। स्कॉटलैंड के ग्लासगो में राष्ट्रमंडल खेल मंत्रियों की बैठक को संबोधित करते हुए युवा मामले और खेल मंत्री डॉ मनसुख मांडविया ने राष्ट्रमंडल में खेल प्रशासन, खिलाड़ी कल्याण और संस्थागत क्षमता के विस्तार के लिए भारत के दृष्टिकोण को रेखांकित किया। स्कॉटलैंड के ग्लासगो में 23वें राष्ट्रमंडल खेलों का रंगारंग आगाज हो गया है। उद्घाटन समारोह में भारतीय दल का नेतृत्व मीराबाई चानू और लवलीना बोरगोहन ने किया। वहीं पुरुष क्रिकेट में भारत ने कल शाम हरारे में 3 मैचों की T20 अंतर्राष्ट्रीय श्रृंखला के पहले मैच में जिम्बाब्वे को 7 विकेट से हरा दिया। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Tanvi Khurana. Prime Minister Narendra Modi has said that over the past 2.5 months since the paper leak incident, several steps have been taken. The culprits have been arrested and are in jail. In a video message last night, Mr. Modi said, "Government's foremost responsibility was to ensure that students did not lose an academic year and it was essential to conduct the examinations immediately."
0: लाखों विद्यार्थी और उनके अभिभावकों के लिए बहुत ही पीड़ादायक है और इसलिए पेपर लीक घटना से अब तक पिछले 2.5 महीनों में अनेक वीत कदम उठाए गए, गुनहगारों को पकड़ा गया है, वे जेल में पड़े हैं। हमारा सबसे महत्वपूर्ण जिम्मा था कि विद्यार्थियों का 1 वर्ष बर्बाद न हो। सरकार ने अभी कम से कम समय में

आकाशवाणी संबलपुर जुहार आंचलिक खबर पढ़ुचन सुप्रीति मिश्र नदिनिया श्रीगुंडीचा यात्रा सहित चतुर्थ मूर्ति आड़प लीला शेष होछे आषाढ़ मासर उज्जवल पखर दशमी तिथि दिन आज बाहुड़ा यात्रा थी श्रीगुंडीचा मंदिर नु श्रीमंदिर के फिर भी श्रीजीव पवित्र बाहुड़ा यात्रार उल्गुने महाप्रभु विशेष नीतिकांति लगी समय धारी श्रीमंदिर के बाहुड़ लगी पूरी शरदावालीन तालध्वज तर्पदलन आ नंदीघोष रथ प्रस्तुत रही दिन बार नु अढ़ाई बजे भितर आड़प मंडप नु श्री विग्रह पहंडी आर ऊपर बेला चार बजे रथ घीचा मूल्यवा बाहुड़ा यात्रा नीतिकांति जल्दी करबार के प्रशासक आ सेवक मान भितर तैयारी चली एथिलागी गला रातिनु श्रीमंदिर नीतिकांति मूल हेछे परीक्षा प्रश्नपत्र प्रघट मामला थी संप्रक्त दोषी विरोधी सरकार कड़ा कार्यानुष्ठान नेबार सहित तुर्ती विचार लगी फास्ट ट्रैक अदालत स्थापना करबे प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी सामाजिक गणमाध्यम जरिए इटा घोषणा करिछन सूचना अनुसार आज हेबार के थिबा कैबिनेट बैठक थी प्रश्नपत्र लीक बाबदे कड़ा कार्यानुष्ठान पदक्षेप उपस्थापन करा जिबा प्रघट सांगे जड़ित थिबा लोकमान विरोधी कड़ा कार्यानुष्ठान निया जिबार आउ से तार तुर्ती कार्यान्वयन बाबदे कैबिनेट थी आलोचना हेबा बोली आस करा जाउछे मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी आज भुवनेश्वर लोकसेवा भवन सम्मेलनी कक्षन एआई डाटा सेंटर पार्क विश्वस्तरीय जोगाण केन्द्र स्थापना लगी एचसीएल टेक संगे गुटे बुझामणा पत्र स्वाक्षर करबे 730 कोटी टंका खर्चा थी खोर्धा थाने हेबार के थिबा प्रकल्प लगी राइजे जुआन पीढ़ी मान लगी व्यापक निजुक्ति सुजोग तैयार हेबा ए सहभागिता प्रजुक्ति विद्या क्षेत्र थी राज्य क्षमता के बरकस करबा राज्य स्वास्थ्य सेवा के बरकस करवार लगी स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग तरफ भिन्न भिन्न सरकारी मेडिकल कॉलेज न 152 टा प्रोफेसर एसोसिएट प्रोफेसर असिस्टेंट प्रोफेसर और सीनियर रेसिडेंट पदवी अनुमोदित हेछे ई सब पदवी सुपर स्पेशलिटी विभाग अंतर्गत आए ई अनुमोदन उत्तर स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मुकेश महालिंग कहिछन मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी अध्यक्षता थी स्वास्थ्य सेवा आगे बढ़वार सहित गुणात्मक स्वास्थ्य सेवा जुगावार्थी विभाग अयतका सफल हेबा महानदी जल विवाद परवर्ती सुनाणी आबा मास 21 तारीख हेबा बोली एडवोकेट जनरल पीतांबर आचार्य कहिछन ट्रिब्युनल थी गलाकाल हेथिबा सुनाणी बाबदे सूचना देकरी श्री आचार्य कहिछन आबा 2 मास भितर जल विवाद बाबदे समाधान सूत्र बाहर बार संभावना रहिछि ट्रिब्युनल ओडिसा और छत्तीसगढ़ भितर आपोस आलोचना लागि परामर्श देइछन केन्द्र जल आयोग जल शक्ति मंत्रालय के इति मध्यस्थता करबार के कहा जाइछि बोली श्री आचार्य सूचना देइछन प्रधानमंत्री राष्ट्रीय कृषि विकास पीएमआरकेवीवाई एकीकृत छत्र योजना अधीन राज्य स्तरीय अनुमोदन कमिटी बैठक मुख्य शासन सचिव अनुगर्ग अध्यक्षता थी गलकाल भुवनेश्वर लोकसेवा भवन हो जाइए बैठक थी 2026-27 आर्थिक बचर लगी योजना अधीन राज्य लगी भिन्न भिन्न योजनार वार्षिक कार्य योजना आउ चास आउ आनुषंगिक क्षेत्र प्रकल्प मान उपर विस्तृत आलोचना और समीक्षा कर बैठक थी चास उत्पादकता चाषी मान कमानी बढ़ावार आउ जलवायु सहनशील चास राज्य 2026-27 शिक्षा बर्ष युक्त दुई थी ना लेखाबार लगी गलाकाल दुई नंबर मेधा तालिका बाहरी छे ई खेपे 46,570 जन छात्र छात्री को बछा जाय छे कला थी सर्वाधिक 32,782 जन छात्री मनोनीत हेछन झारसुगुड़ा जिलापाल कुनाल मोतीराम चौहान अध्यक्षता थी सीएम संपद योजना मासिकिया समीक्षा बैठक गलाकाल जिलार विकास के आगे नेबार लगी प्रस्तावित टॉपअप इंटरवेंशंस आउ बहुटे नुआ जनकल्याणकारी पदक्षेप उपरे आलोचना करा जाइकरी से सब समीक्षा करा जाइथिला झारसुगुड़ा जिला दक्षता विकास और नियोजन कार्यालय तरफ गलाकाल जिलापाल कार्यालय थिबा डीएमएफ प्रेक्षालय जिला स्तरीय निजुक्ति मेला हो जाए निजुक्ति मेला थी प्रतिष्ठित कंपानी मैंने जोग देकरी निज निज संस्था लगी प्रार्थी बाछीते इति जिला और जिला बाहर मोट 84 जन चाकरी आशायी भाग नहीं सुवर्णपुर जिला रामेश्वर स्टेडियम ठाने हेबार के थिबा जिला स्तरीय 80 नंबर

स्वाधीनता दिवस पालन अवसर गलाकैल जिलापाल डॉक्टर नृपाला साहू अध्यक्षता प्रस्तुति बैठक हो बैठक थी स्वाधीनता दिवस पालन कार्यसूची बाबदे विस्तृत आलोचना कर बरगढ़ जिला सदर महकुमा थाने पालन होबार के जिला स्तरीय स्वाधीनता दिवस समारोह लगी जिलापाल आदित्य गोयल सभापतित्व गोटे प्रस्तुति बैठक हो स्वाधीनता दिवस के जाकजमक्ति पालन करवा लगी उत्सव पालन कमिटी सब सदस्य मान सहयोग करवार के जिलापाल निवेदन कर पाणीपाग राज्य भिन्न भिन्न जगान दक्षिण पश्चिम मौसुमी वायु सक्रिय रहबार लागि वर्षा लागि रहिछे आबा 24 घंटा भितरे संबलपुर झारसुगुड़ा सहित सुल्हटा जिल्लार गुटेकि जुड़े जगान अति जबर वर्षा हेबार संभावना थिबानु पाणीपाग केन्द्र तरफ सतर्क सूचना जारी करा जाइछे हिराकु जलभंडार जलस्तर आइ सकाल 6 बजे तक 614.47 फुट रहितला ई समयते जलभंडानु सुल्हटा गेट देइकरि फी सेकेंड थी 277491 घन फुट पानी छड़ा जाउतबार बेले 265656 घनफुट पैन जलभंडार के आसुचे एथिर आंचलिक खबर इना सेसला आरवलर आंचलिक खबर सुनी परवे रात 7 बजे के 2 मिनट थी जुहार।

व्यक्ति से निकला जा रहा है, अतः सीता के लिए उनकी सिखावन भी अनिवार्य है कि यदि वो अपना और पति का कल्याण चाहती हैं, तो उन्हें श्रीराम की आज्ञा मानकर घर पर ही रहकर सास की सेवा करनी चाहिए। सास ससुर के चरणों की सेवा से बढ़कर कोई दूसरा धर्म नहीं है। पत्नी से श्रीराम का कहना है, हे सुमुखी, जब जब प्रेम से व्याकुल होकर माता मुझे याद करें, तब तब उन्हें पुरानी कथाएं सुनाकर धीरज बंधाना। मेरी आज्ञा मानकर घर पर रहने से गुरु तथा वेदवाणी द्वारा सम्मत आचरण का फल बिना किसी क्लेश के तुम्हें मिल जाएगा। हठ करने के कारण गालव ऋषि तथा राजा नहुष जैसों ने केवल कष्ट ही सहे हैं, किंतु वन प्रवास में होने वाले घोर कष्टों का वर्णन सुनकर भी सीता ने अपना निश्चय नहीं बदला। वन मार्ग में नंगे पैरों में चुभने वाले कुश कांटे और कंकड़, दुर्गम पर्वत और खो, रीच बाघ भेड़िये सिंह आदि के डरावने गर्जन तर्जन की आशंका उन्हें तनिक भी विचलित नहीं कर सकी। वन के भीषण सर्पों, भयानक पशु पक्षियों तथा स्त्री पुरुषों को उठा ले जाने वाले राक्षसों के झुंड का वर्णन भी सीता को उनके निर्णय से नहीं डिगा पाए।

वन गमन के लिए तैयार श्री राम माता कौशल्या से विदा ले चुके हैं, किंतु साथ जाने के लिए दृढ़ प्रतिज्ञ पत्नी सीता से माता की उपस्थिति में कुछ भी कहने में उन्हें संकोच हो रहा है। उधर समय अपनी

0: 过了，数你的猴子。
1: आमे बेड़ी के बच्चे को आउ हीरो बाबू का डायलॉग भी सुनिबू हीरो बाबू जिन

0: जिंदाबाद
1: ना आमे खाली डायलॉग सुनिमु ड्रामा देखिबु ना कोन कहउछ भाई भौनी माने कोन कहउछ
2: मा तमो कतिरे परे मु बस्ती तमो तिरिला
1: कोन हे गला
2: मरु ना आउरी पचारुछ कोन हेला होय हे मु परा तमो माईपी आउ मु केमे तमो भौनी हेलीबा
3: ए चबस
1: आहा कथा को नथा जेमिति भाई की भौनी सेमिति कहु को कहि देली बोली एबे एमिति को महाभारतटा अशुद्ध हे गला जे
2: अल्बत अशुद्ध हे गला माईपु को भौनी बोली काई कहिला मते आका बुद्धि कहबटी
1: ओहो कहि तो देलिनी
2: किया कहि बाबा
1: ओहो कहि तो देलिनी
2: किया कहि बाबा तम्मे माने कहिला तम्मे माने कोठी एमिति अभिला कथा सुनि चकी किए का माईपु को भौनी केबे कहे
3: ए शाबाश
4: मो लाजा ए मा तमर धर्म हब मा तमे तुनी पड़ आनंद रे यात्रा देख
2: होई रे रोई जला बाड़ी पड़ा तू मते पुनी मा कहिलु मु तोर की मागी रे तू मोर को परे मो बोलो मो स्वामी गो भौनी आउ ए गात बाजार मा हबा पई मु कोन यात्रा देखि आसिली कि लो बहु मते मो घरे त भौनी कहले लो मो मा कोटू बाड़ी पड़ा रे आसी मते मा कहितला लो मो आई अरे मो पुआ रंक निधि ताऊ ताऊ ए बुढ़ा डर क्या मु मा एली लो मो मा
4: मो लाजा
3: अरे धनी धनी आगिरे अरे देखिलु तेरे कोन हला देखिबु टी ए पेंडल आडु कोन सब कांदना सांगु को जोरदार पाटतुनो सुबुची
5: म मु परा मेकअप रे बसची आ जीबी किमिति जे
3: ओ अरे पोरे मेकअप होले चलिबोनी
5: किमिति चलिबो खाली पार्टी अछि बोली कहि दउचंती ना कहबा पछरे किछि अर्थ अछि
3: अर्थ माने माने कोन
5: मु अभी सपनर राजकुमारी हिडिंबा देवी को मेकअप करछि टी राजकुमारी मेकअप टा कोन चाकर पुजारी मेकअप होइछि कि जेमिति सेमिति बोली हिगले भी काम चली जिवा खबर कागज रे पढ़ी नांत कि आज्ञा गोटाए सीन पई परा महाभारत द्रौपदी चार दिन काल मेकअप रे बसतिला
3: आउ बेसी गुडे पाउडर बोली हो ना रे बाबा सत को सत तू राजकुमारी द्रौपदी हे जिबु रे बुझिलु ओ किलो रतनी ए सेपटा कोन हला कि कोन हला
6: किलो कोन किरे बोली कहि पर नांत कि देखु चंदी टी अबिका मु राजकुमार नारी दर्प चूर्ण मेकअप रे अछि टी
3: ओ मु जाने परा सीधा अंगूठी रे केबे घी भारी बनी ओ
6: पोरे अंगूठी टा को बंका करिवे आग दे तेने संभालंतु पेंडल ऊपर भूकंप आरंभ हलानी
3: भूकंप भूकंप कोन
6: नाटक रो डायलॉग को नै लोके आपत्ति उठेलेनी आउ से आपत्ति टा स्वामी स्त्री को कोळी को जाड को चली गलानी
3: हा से कुडा को अपमान काल रो डायलॉग आदि जाय चली आसुची आ आदि इमति कोन गुडे नाकरा हे गला जे ह
6: सेतेबेले लोके अशिक्षित थिले चलुथिला एबे लोके शिक्षित हलेनी चट किना धरचोंती
3: कोन धइले कोटा को धइले आ आगे एक कथा टिके कह
6: समुद्र भितरे पद्म फूल फुटिला केमिति सेई कथा को नै दर्शक आ मेंजर बाबूंक भितरे टणा उटरा चलिछि तेणे जाई संभालंतु न हेले खाली ढेला माडा होबो
3: ओ ओ ओ
1: आ तू नुवो भला लुके जात्रा देखिबे ना तमकु देखिबे।

0: रतनी धनिया को ने अबे ए धनिया अबे रंगवती की बारी पड़बे
1: हेटी मु मेहनत करी राजकुमारी हिडिंबा बेसरे निज को सजे सारलेनी हां मोहनी जाऊ
0: अबे
2: आपण एतेटा व्यस्त होचोंदी काहे की कहले मु एका एका संभाली देबिनी मेंजर बाबू संतळ जे घोषणा करू न काहे की मो
3: मोला जा एई सांगे सांगे बाहरी पडली परा रंगवती आसुची कौन ये आसीगला हो रंगवती आस आस।

0: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
1: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं? मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पेपर लीक की घटनाएं रोकने के लिए नया कानून लाने का वादा किया। आज मंत्रिमंडल की बैठक में कड़े प्रावधान लाए जा सकते हैं। प्रधानमंत्री मोदी की घोषणा के बाद दिल्ली उच्च न्यायालय ने पेपर लीक मामलों के लिए विशेष फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाया। सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक ने केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह की उपस्थिति में अनशन समाप्त किया। भारत ने 350 किलोग्राम थ्रस्ट क्षमता वाला अपना पहला एक्सपेंडेबल टर्बोजेट इंजन विकसित किया। भारत और रोमानिया ने विज्ञान और टेक्नोलॉजी, शिक्षा तथा खेल के क्षेत्रों में 3 समझौतों पर हस्ताक्षर किए और 23वें राष्ट्रमंडल खेलों का स्कॉटलैंड के ग्लासगो में रंगारंग उद्घाटन समारोह के साथ शुभारंभ। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पेपर लीक की घटना के बाद पिछले 2.5 महीने में कई कदम उठाए गए हैं। दोषियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है। कल रात एक वीडियो संदेश में श्री मोदी ने कहा कि सरकार की मुख्य जिम्मेदारी ये सुनिश्चित करना था कि विद्यार्थियों का शैक्षणिक वर्ष व्यर्थ न जाए।
3: पेपर लीक एक कोई

0: मामूली विषय नहीं है। लाखों विद्यार्थी और उनके अभिभावकों के लिए बहुत ही पीड़ादायक है और इसलिए पेपर लीक घटना से अब तक पिछले 2.5 महीनों में अनेक विहित कदम उठाए गए, गुनहगारों को पकड़ा गया है, वे जेल में पड़े हैं। हमारा सबसे महत्वपूर्ण जिम्मा था कि विद्यार्थियों का एक वर्ष बर्बाद न हो। सरकार ने अभी कम से कम समय में 22 लाख जितने विद्यार्थियों के एग्जाम हो जाएं, इसका प्रबंध किया।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि संबंधित विभागों को फास्ट ट्रैक अदालतों के लिए प्रस्ताव तैयार करने का निर्देश दिए गए हैं।
0: फास्ट ट्रैक कोर्ट के लिए विभागों को निर्देश दिए थे, विभागों ने लगातार मेहनत करके देर रात मुझे मुसद्दा भी दे दिया। फास्ट ट्रैक कोर्ट और कठोर सजा के प्रावधान के साथ का ये मुसद्दा कैबिनेट में चर्चा होगी, कैबिनेट के साथियों के सुझाव के बाद उसका अंतिम रूप दिया जाएगा और सोमवार से जल्द उस बिल को सदन में पारित कराने का प्रयास किया जाएगा।
1: वहीं दिल्ली उच्च न्यायालय ने सार्वजनिक परीक्षाओं अनुचित साधनों की रोकथाम अधिनियम 2024 के अंतर्गत मामलों की सुनवाई के लिए एक त्वरित न्यायालय का गठन किया है। हमारे संवाददाता ने बताया कि इस कदम का उद्देश्य सार्वजनिक परीक्षाओं में अनुचित तरीकों से संबंधित मामलों का शीघ्र निपटारा सुनिश्चित करना है।
2: दिल्ली की राउस एवेन्यू अदालत में लोक परीक्षाओं में नकल और पेपर लीक से जुड़े मामलों की जल्द सुनवाई के लिए एक विशेष फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाया गया है। दिल्ली उच्च न्यायालय की अधिसूचना के अनुसार यह अदालत लोक परीक्षाएं अनुचित साधनों के रोकथाम अधिनियम 2024 और उससे जुड़े अन्य मामलों की सुनवाई करेगी। यह अधिसूचना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा परीक्षा में पेपर लीक के मामलों में शामिल लोगों को शीघ्र और कड़ी सजा सुनिश्चित करने के लिए देशभर में फास्ट ट्रैक अदालतें स्थापित करने की घोषणा के कुछ घंटों बाद जारी की गई। रोहन, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक ने कल रात गुरुग्राम के एक निजी अस्पताल में केंद्रीय मंत्रियों जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह की उपस्थिति में 26 दिनों से जारी अनशन समाप्त कर दिया। एक रिपोर्ट।
3: इस दौरान सोनम वांगचुक की पत्नी गीतांजलि आंगमो और लेह लद्दाख के शीर्ष निकाय के वरिष्ठ नेता भी अस्पताल में मौजूद थे। इससे पहले विभिन्न राजनीतिक दलों के 65 सांसद भी वहां पहुंचे और पत्र लिखकर अनशन समाप्त करने का आग्रह किया था। श्री वांगचुक ने कहा कि उन्होंने विभिन्न शर्तों पर लंबी बातचीत के बाद अनशन समाप्त किया है। उन्होंने सभी से किसी भी प्रकार की हिंसा न होने देने के लिए सतर्क रहने का आग्रह किया। श्री वांगचुक 28 जून से शिक्षा प्रणाली में सुधार और पेपर लीक मामले में जवाबदेही की मांग को लेकर अनशन पर थे। अनुपम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मृगनयनी पांडे।
1: प्रधानमंत्री मोदी ने श्री वांगचुक से अपील की है कि वे डॉक्टरों की सलाह के अनुसार अपनी दिनचर्या का पालन करें और जल्द से जल्द अपने सामान्य वजन को वापस प्राप्त करें। दिल्ली मेट्रो रेल निगम ने राष्ट्रीय राजधानी में सुरक्षा कारणों से आज सुबह 7:30 बजे से अगले आदेश तक 17 मेट्रो स्टेशनों को बंद करने की घोषणा की है। इन स्टेशनों में लोक कल्याण मार्ग, राजीव चौक, पटेल चौक, रामकृष्ण आश्रम मार्ग, बाराखंबा रोड, सुप्रीम कोर्ट, सेवा तीर्थ, जनपथ, झंडेवालान, मंडी हाउस, केंद्रीय सचिवालय, आईटीओ, दिल्ली गेट, इंद्रप्रस्थ, खान मार्केट, जोरबाग और शिवाजी स्टेडियम शामिल हैं। हालांकि राजीव चौक, मंडी हाउस और केंद्रीय सचिवालय स्टेशनों पर इंटरचेंज की सुविधा जारी रहेगी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
4: भारतीय वायु सेना में अग्निवीर वायु और एयरमैन मेडिकल असिस्टेंट बनने के लिए जल्दी रजिस्टर करें। रजिस्ट्रेशन 26 जुलाई 2026 को बंद हो जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए www.iefrecruitment.edcil.co.in पर जाएं।
0: एक प्रकार से पीएम जय अब

0: में लगभग 2,00,000 करोड़ रुपए की बचत हुई। आरवी आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4555 पर कॉल करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। भारत और रोमानिया ने विज्ञान और प्रौद्योगिकी, शिक्षा और खेलों के क्षेत्र में सहयोग के लिए 3 समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। इन समझौतों पर कल बुखारेस्ट में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू

0: और रोमानिया के राष्ट्रपति निकुशोर डान के बीच प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता के बाद हस्ताक्षर किए गए। एक रिपोर्ट।
1: प्रेस वक्तव्य में राष्ट्रपति ने कहा कि भारत और रोमानिया के बीच 7 दशकों से ज्यादा से गहरा और मजबूत संबंध रहा है, जो आपसी भरोसे, सम्मान और लोगों के बीच मजबूत रिश्तों पर टिकी है। उन्होंने कहा कि भारत और रोमानिया विनिर्माण, फार्मास्यूटिकल, स्वास्थ्य सेवा, नवीकरणीय ऊर्जा, ग्रीन हाइड्रोजन, कृषि उत्पादन, उर्वरक, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचे और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर सहमत हुए हैं। बुकारेस्ट रोमानिया से शुभाश्री महापात्रा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से चाहत सिंह।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज बुखारेस्ट के विक्टोरिया पैलेस में रोमानिया के प्रधानमंत्री इली बोलोजान के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगी। वे रोमानिया के राष्ट्रपति के साथ भारत रोमानिया व्यापार मंच को भी संबोधित करेंगी। केंद्र सरकार ने विभिन्न मंत्रालयों और विभागों में सचिवों की नियुक्ति की है। वर्तमान में शिक्षा मंत्रालय में उच्च शिक्षा सचिव विनीत जोशी को पंचायती राज मंत्रालय का सचिव नियुक्त किया गया है। नरेश पाल गंगवार नए उच्च शिक्षा सचिव होंगे। टीके अनिल कुमार स्कूली शिक्षा और साक्षरता सचिव होंगे। भारत ने 350 किलोग्राम के थ्रस्ट श्रेणी का अपना पहला स्वदेशी डिस्पोजेबल टर्बोजेट इंजन विकसित किया है। इसे रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन के गैस टरबाइन अनुसंधान प्रतिष्ठान GTRE ने विकसित किया है। एक रिपोर्ट।
2: रक्षा मंत्रालय ने कहा कि DRDO के डिजाइन पर आधारित इस जटिल प्रणाली की डिलीवरी भारतीय रक्षा उद्योग की बढ़ती तकनीकी क्षमताओं को दर्शाती है। ये वर्षों की सटीक इंजीनियरिंग, उन्नत विनिर्माण और भारत के वैज्ञानिक और औद्योगिक समुदाय के बीच घनिष्ठ साझेदारी का परिणाम है। मंत्रालय ने इस बात पर जोर दिया कि जेट इंजन प्रौद्योगिकी को विश्व के सबसे परिष्कृत इंजीनियरिंग विषयों में से एक माना जाता है। इस इंजन को बुधवार को आजाद इंजीनियरिंग द्वारा सफलतापूर्वक विकसित किया गया और GTRI को सौंपा गया। भानु की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से शक्ति सिंह।
0: DRDO ने आज ओडिशा तट के निकट डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वीप से लंबी दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली कुशा मिसाइल का पहला सफल उड़ान परीक्षण किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस उपलब्धि के लिए DRDO और संबंधित पक्षों को बधाई दी है। ओडिशा के पवित्र तटीय शहर पुरी में आज विश्व प्रसिद्ध बहुधा यात्रा का आयोजन होने जा रहा है, जिसमें भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र, देवी सुभद्रा और भगवान सुदर्शन की श्री गुंडिचा मंदिर से श्री जगन्नाथ मंदिर तक की वापसी यात्रा कराई जाएगी।

0: प्रकाश दास आकाशवाणी समाचार।
1: और अब बात मौसम की। मौसम विभाग ने आज पूर्वी राजस्थान, गुजरात और मध्य महाराष्ट्र में तेज बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। अगले दो दिन में हिमाचल प्रदेश, कोंकण, गोवा, मध्य प्रदेश, ओडिशा, पंजाब, सौराष्ट्र, कच्छ और उत्तराखंड में भी मूसलाधार वर्षा होने की संभावना है। इस बीच गुजरात में पिछले 48 घंटों से लगातार हो रही वर्षा से जनजीवन अस्त व्यस्त है। 23वें राष्ट्रमंडल खेलों का शुभारंभ स्कॉटलैंड के ग्लासगो में एक भव्य और रंगारंग उद्घाटन समारोह के साथ हुआ। 10 दिवसीय इस आयोजन में 74 देशों की टीमें भाग ले रही हैं। ध्वजवाहक मीराबाई चानू और औपचारिक मशालवाहक लवलीना बोरगोहेन के नेतृत्व में भारतीय दल ने तिरंगे लहराते हुए स्पोर्ट्स एरेना में प्रवेश किया। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं।

0: अभियान। निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते। टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
1: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान। अधिक जानकारी के लिए

0: नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
1: और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं फरहत नाज।
2: धन्यवाद विशाल। पेपर लीक की गंभीर समस्या से निपटने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की घोषणा आज के अधिकांश अखबारों के मुख्य पृष्ठ पर है। हिंदुस्तान ने प्रधानमंत्री के शब्दों को दिया है, पेपर लीक पर कड़ा कानून बनेगा, आज कैबिनेट की बैठक में रखा जाएगा मसौदा। सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक के अनशन समाप्त करने को भी अखबारों ने सुर्खी बनाया है। राजस्थान पत्रिका ने लिखा है, वांगचुक ने आधी रात तोड़ा अनशन, केंद्रीय मंत्रियों ने जूस पिलाकर तोड़वाया अनशन। वहीं आंदोलनकारी छात्रों और सरकार के बीच बातचीत पर नवभारत टाइम्स का कहना है, वेन्यू पर अटकी सरकार से वार्ता। अमर उजाला की सुर्खी है, यूपीएससी की तरह एनटीए परीक्षाएं होंगी फुल प्रूफ, शुरू हुए बड़े बदलाव, गड़बड़ी पर नपेंगे अधिकारी, ऑन स्क्रीन मार्किंग सिस्टम की भी होगी समीक्षा। परीक्षा सुधार जरूरी शीर्षक से हिंदुस्तान ने संपादकीय में लिखा है, प्रश्न पत्र लीक के खिलाफ छात्रों का आंदोलन अपनी जगह है, लेकिन परीक्षा सुधार के लिए जो कदम उठाए गए हैं उन्हें नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। प्रधानमंत्री मोदी की घोषणा को साकार करने की जिम्मेदारी सरकार के साथ साथ परीक्षा तंत्र से जुड़े लोगों की भी होनी चाहिए। दो साल के अंतर की शर्त लगाकर नहीं रोक सकते मातृत्व अवकाश, सरकारी कर्मियों के मातृत्व अवकाश पर इलाहाबाद उच्च न्यायालय की टिप्पणी दैनिक जागरण में है। न्यायालय ने कहा, पहले और दूसरे बच्चे के बीच दो वर्ष का अंतर होने की शर्त लगाकर मातृत्व अवकाश देने से नहीं किया जा सकता इनकार। आतंकवादी कृत्यों को अंजाम देने वालों को नतीजे भुगतने होंगे, विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर का ये बयान जनसत्ता में है। फिलीपींस के मनीला में 33वीं आसियान क्षेत्रीय मंच की बैठक में विदेश मंत्री ने कहा, अंतर्राष्ट्रीय समुद्री मार्ग सुरक्षित और निर्बाध से खुले रहने चाहिए।
1: धन्यवाद फरहत। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पेपर लीक की घटनाएं रोकने के लिए नया कानून लाने का वादा किया। आज मंत्रिमंडल की बैठक में कड़े प्रावधान लाए जा सकते हैं। प्रधानमंत्री मोदी की घोषणा के बाद दिल्ली उच्च न्यायालय ने पेपर लीक मामलों के लिए विशेष फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाया। सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक ने केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह की उपस्थिति में अनशन समाप्त किया। भारत ने 350 किलोग्राम थ्रस्ट क्षमता वाला अपना पहला एक्सपेंडेबल टर्बोजेट इंजन विकसित किया। भारत और रोमानिया ने विज्ञान और टेक्नोलॉजी, शिक्षा तथा खेल के क्षेत्रों में 3 समझौतों पर हस्ताक्षर किए और 23वें राष्ट्रमंडल खेलों का स्कॉटलैंड के ग्लासगो में रंगारंग उद्घाटन समारोह के साथ शुभारंभ। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम वीसी प्रमोद। द हेडलाइंस। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी प्रॉमिसेस न्यू लॉ टू टैकल पेपर लीक्स। टुडेज कैबिनेट मीटिंग टू कम आउट विद स्ट्रिक्टर मेजर्स टू डील विद द इश्यू। Delhi High Court sets up special fast-track court for paper leak cases after PM Modi's announcement. Activist Sonam Wangchuk ends his hunger strike in presence of Union Ministers JP Nadda and Jitendra Singh. India develops its first expendable turbojet engine of 350 kilograms thrust class. India and Romania sign 3 agreements in the fields of science and technology, education and sports. And 23rd Commonwealth Games begin in Glasgow, Scotland with spectacular and colourful opening ceremony. Prime Minister Narendra Modi has said that he directed the departments to prepare a proposal for fast-track courts to tackle paper leaks, and they worked continuously and submitted the draft to him late last night. In a video message last night, Mr. Modi said, "This draft includes provisions for fast-track courts and stringent punishment will be discussed by the cabinet today." He said after incorporating the suggestions of cabinet colleagues, it will be given its final shape. The Prime Minister said, as the second week of Parliament begins on Monday, the government will make every effort to get this bill passed by the House at the earliest.
4: मैंने fast track court के लिए विभागों को निर्देश दिए थे। विभागों ने लगातार मेहनत करके देर रात मुझे मुसद्दा भी दे दिया। Fast track court और कठोर सजा के प्रावधान के साथ का ये मुसद्दा कैबिनेट में चर्चा होगी। कैबिनेट के साथियों के सुझाव के बाद उसका अंतिम रूप दिया जाएगा और सोमवार से संसद का दूसरा सप्ताह शुरू हो रहा है, तब जल्द से जल्द उस बिल को सदन में पारित कराने का प्रयास किया जाएगा।
3: The Prime Minister said that over the past 2.5 months since the paper leak incident, several steps have been taken. The culprits have been arrested and

कर्मभूमि को सुंदर भाव रे समग्र विश्व को समग्र प्राणी मान को ताहादे से मानवीय लीलार विस्तृत भाव रे जो जन्म अच्छी से मार प्रेम मार स्नेह रहा सहित आम कर्म करम आम आर्म ये हूँ तीन गोटी कथा जहाँकि आम मानवीय जात्रा बा जो लीला जात्रा घोष जात्रा रथ जात्रा माध्यम रे प्रभु निजे समग्र विश्व को वार्ता प्रदान करुछन्ते अखिल ब्रह्मांड ठाकुर नीति रे आज आम देखिपु सुंदर भाव रे रथ गुड़िक सुसज्जित होती से सरधा बाली रे सरधा बाली को चाहां रे सजनी सरधा बाली को चाहां तीन रथे तीन ध्वजा उड़ू अच्छी केमंत सदी रे आहा जो सुंदर भाव रे रथ आसी सिंह द्वार रु गुंडीचा मंदिर रे सिंह द्वार रे रही किंतु रथ दक्षिण मोड़ हो आज नाकचणा द्वार रे अपेक्षा करो नाकचणा द्वार दे जाइले प्रभु सिंह द्वार दे प्रत्यावर्तन करे नाकचणा द्वार दे से

0: स्वतंत्र करिडर ओ प्रशिक्षित दल प्रस्तुत अछन्ति आपनको सुस्थता आमर सर्वोच्च प्राथमिकता
1: स्वास्थ्य ओ परिवार कल्याण विभाग ओडिसा
2: ये मुदिटी भलो लागुची पत्नीको पसंद आसिबो
3: हां सर आपनको चॉइस बहुत भलो अछि आ ओ डिजाइन भी नुवा
2: डिजाइन नुवा छ ठीक अछि किंतु सुनार विशुद्धतार प्रमाण कौठि मिलिबो
3: सचेतन ग्राहक हुवंतु आज ही डाउनलोड करंतु बीआईएस केयर ऐप सुना किणिबा पूर्वरु बीआईएस केयर ऐप रु एचयूआईडी कोड निश्चय जांच करंतु
4: जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ महाप्रभुंकर आज जो बाहुड़ा यात्रा ये बाहुड़ा यात्रा रो महिमा जे केते उच्च केते हृदयस्पर्शी केते चमत्कार केते मनछुआ अनुभव ही जाने से अनुभव नहीं कहीं केते दूररु भक्त माने धाई आसुछंदी कम्बड़ कथा आमे वर्तमान अछु से भक्त सालबेगंकर समाधि पीठरे जाओ आमर परम सौभाग्य आकाशवाणी कटक केन्द्र जो भक्त सालबेगंकर समाधि जहाँ कोटि कोटि ओडिया मानक उद्बुद्ध करुची जो साल बेग थे कही तो भकत जीवन भकत निमंते तोर शंख चक्र चिन्ह तोर चक्र चिन्ह तेणु शंख चक्र चिन्ह देखेवाई प्रभुंकर यात्रा जहाँ आम प्रथम केन्द्र रु आम शुणुले जे महाप्रभु महाबाहूंकर दुई पटरे गोटे पटरे शंख आउ गोटे पटरे चक्र एवं जो राजा इंद्रदम्नंकर राणी गुंडीचा जहाँ नाम अनुसार ये यात्रार नाम होइछि गुंडीचा यात्रा ये गुंडीचा यात्रा को जदि आप उच्चारण करिवे गुंडीचा यात्रा आसी महाप्रभु को दर्शन करिवे सत जन्म पाप आपणकर दूर होइजिव सत जन्म पापरु मुक्त हबापाई भक्त माने धाई आसुछंदी माने स्वतस्फूर्त भाव में जमी चुंबक लुहा को टाणे तेणु प्रभुंकर आकर्षण रे प्रभुंकर देदीप्यमान लीला रे आकर्षित ही भक्त माने धाई आसुछंदी जो श्रद्धार बाली कथा आलोचना करूथिले आमे से श्रद्धार बाली को लागिकिरी जो गुंडीचा मंडप जहाँ को कहा जाउछि आड़प मंडप से आड़प मंडप कौन से आड़प मंडप होची आटोप मंडप पट्टारे निर्मित मंडप जेतेबेले ख्रीष्टीय नवम शताब्दी रे सुवंशी राजा जो जाति केसरी महाप्रभु जगन्नाथ जो पाताल हेतिले सोनपुर गोपाली ग्राम रे 144 वर्ष किंबा 146 वर्ष से पाताल हेतिवा जगन्नाथ को उद्धार करी नवकलेवर करई आणिकिरे प्रथमे पुरी रे प्रतिष्ठा करिचंदी कोठि प्रतिष्ठा करिचंदी ना ये गुंडीचा मंडप रे प्रतिष्ठा करिछंती ए गुंडीचा मंडप को आटप मंडप कहा जाए जहाँ महादला पंजी रे उल्लेख रही जजाति केसरी समय रु 38 हाथ उच्चर ए जो पटोल पटार निर्मित देउल पटार निर्मित मंडप से ही मंडप रे महाप्रभु को प्रथमे रखा जाइतिबारु तार ना होची जनकपुरी जन्मस्थान जन्मवेदी किंतु श्रोता बंधु ता पूर्वरु आउ गोटे देउळ रहिची ता नाउची नृसिंह देउळ नृसिंह मंदिर जहाँ को वर्तमान आमे यज्ञ नृसिंह बोली कहुचु जो यज्ञ नृसिंह र मूर्तिर परिकल्पना रे आमे कहुचे जे कोळरे लक्ष्मी मस्तकर अनंत आमर जो टिके आगुरु आमे आलोचना करूथिले जे लक्ष्मी रोषशाला रे जो रहिछन्ते श्रीमंदिर रोषरे सब रोष करुछन्ती रोषई करुछन्ती एठी मध्य आड़प मंडप रे लक्ष्मी रहिछन्ती कारण जो यज्ञनाथ यज्ञनारायण तांकर कोळरे लक्ष्मी मस्तकर अनंत ये होउछन्ते आदि नृसिंह एवं प्रथमे जजाति केसरी एठी स्थापन कला परे ए क्षेत्र नाहिछि पुरुषोत्तम क्षेत्र एवं पुरुषोत्तम क्षेत्रर अधिवासी होउछन्ति प्रथमतः जे नृसिंह दशवतार भितरे चतुर्थ अवतार होउछि नृसिंह अवतार जो नृसिंह को आदि नृसिंह भाव देखुचु आउ जणे नृसिंह अछन्ति वर्तमान जो सहायत उच्चर देउळ जो रहिछि वर्तमान रो देउळ दक्षिण पटरे जो मुक्त मंडप को लागिकिरि जो नृसिंह अछन्ति से होउछन्ति विदारण नृसिंह आदि नृसिंह तेणु नृसिंह

0: जय जगन्नाथ। जगतर नाथ प्रभु श्री जगन्नाथ रथयात्रा केवल एक पर्व नुह बर हूँ लक्ष लक्ष श्रद्धालु आस्था विश्वास और भक्ति रे भरा दस दिन व्यापी एक महासमागम। यही पवित्र रथयात्रा अवसर में भक्त मान सुस्थता और सुरक्षा निश्चित करिबा आम समस्त दायित्व। से खाद्य निरापत्ता प्रति सचेतन हवा अत्यंत जरूरी। यही समय रे खाद्य निरीक्षक मैंने निजर कर्तव्य सक्रिय भाव में तुलेबा समय आमको केते गुड़िए दिग प्रति यथेष्ट ध्यान देवा पड़ो जमीक तटका खाद्य खातु एवं विशुद्ध पानीय जल व्यवहार करूँ। बाहर खोल में बिक्री होता खाद्य कृत्रिम रंग दिया खाद्य बासी और दुर्गंध होता खाद्य माछी बसुवा खाद्य एवं पचा सड़ा फल और पनीपरिया आदो खातु ना। खाद्य खावा पूर्व एवं पर तथा शौच हाँपर निज हाथ को साबुन भल भाव धुंतु। शरीर जल शुष्कतु रक्षा पाइबापी आवश्यक स्थले ओआरएस द्रवण पिंतु। सर्वदा पायखाना व्यवहार करूँ एवं परिष्कार परिच्छन रुंतु। अलिया आवर्जना तथा बड़का खाद्य एणे तेणे न पक डबिन व्यवहार कर। जरूरकालीन सहायता पूरी जिला मुख्य चिकित्सालय कंट्रोल रूम फोन नंबर 06752221175 जोगाजोग कर आंबुलांस 108 को कल कर। जय जगन्नाथ।
1: स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग ओडिशा द्वारा जनहितरे जारी।
2: जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ। अति आनंदर कथा आमे वर्तमान देखी पारुचु गोटे शरथावली रे गोटे भक्त निजक हनुमान बेसरे सुसज्जित करी अति सुंदर भावरे नृत्य करुछंती। आउ एपटे नाकचणा द्वार जो नाकचणा द्वार अपेक्षा करिछंती केतेबेले महाप्रभु एही पथ देई रथारूढ़ हेबा निमन्ते आगमन करिवे। आउ आमे मध्य देखुचु अति सुंदर भावरे गोटे मठ जो मठर प्रत्येक वर्ष गोटे विराट बड़ धूपकाठी करिथांती महाप्रभुंक सेवारे जो धूप एवं धूप प्रदान करिबा पाई तांकर पथ को सुसमित बा कुसुमित करिबा सहित सुगंधित करी ए वातावरण को आहुरी आनंद पवित्र भूतमय करिबा निमन्ते शरधा बाली जो शरधा बाली होउछंती श्रद्धार बाली जहार स्पर्शरे जो जगन्नाथ कोटि गैबलनाथंकर स्पर्शरे दांडर धूली पवित्र पुण्यमय होइ उठि अछि। भवानी शंकर वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणी जाभ्याम बिना न पश्यन्ति सिद्धा स्वांतस्तम ईश्वरम। मनीष जीवन रे श्रद्धा हेउची एक अपरिहार्य।

0: सूचना दौची तुम्हें माने आगे ही चल काल को अपेक्षा करना काल चक्र कहारी की अपेक्षा करे ना आपण जानती सुदर्शन भगवान जेतेबेले आसंती सेतेबेले जेतेबेले से बाहरंती गुंडीचा मंदिर रु तांक मस्तक रे टाहिया लागे ए जो टोपर आकृति टाहिया जो टाहिया राघव दास मठ प्रदान करिथांती भगवानंकर जो स्वयं लीला गोटे स्नान यात्रा आ गोटे गुंडीचा यात्रा ए स्नान यात्रा गुंडीचा यात्रा रे संपूर्ण समुदाय छ थर महाप्रभुंकर पहंडी विजय नीति अनुष्ठित हुए थाए एवं जो चतुर्धा मूर्ति जाती तेणु से चबीस गोटी टाहिया प्रस्तुत करी आमे देखुचु वर्तमान राधा बल्लभ मठ पार्श्व देई
1: डॉक्टर दास आमर जो महा चक्रराज सुदर्शन जो पहंडी हूँ बोली आम कहते प्रकृत में ये तो पहंड पहंड कर आसुना तेणु महाप्रभु मानकर जो तीन ठाकुर पहंडी ता भितर प्रकृत में आम देखुचे दि ठाकुर ही पहंडी
0: हूँ पाउंड पर पाउंड पके
1: पाउंड पर पाउंड पकई कर आसु चक्रराज सुदर्शन सेवक मानकर स्कंद देश रे आसुचंती माँ सुभद्रा मध्य से भली आसुचंती
0: स्कंद देश रे आसीबे
1: तथापि आम याकु सामग्रिक भाव में पहंडी बोली कहू
0: हाँ जेहेतु दुई बड़ ठाकुर पहंडी हूँ तेणु ये मध्य तारी अंतर्भुक्त तेणु आपको आम पहंडी बोली कहो कि वास्तविक से मैंने पाउंड पाउंड पर पाउंड न पकईकि जो तांकर प्रिय भक्त तांकर जो प्रिय सेवक दईता एवं पति महापात्र अच्छा अन्यान्य सेवक अच्छा तेणु दईता मानकर स्कंधावलंबन पूर्वक यही सुदर्शन भगवान विजय करुचंती आम देखुचु सी धीरे धीरे धीरे धीरे आसी नंदीघोष रथ अतिक्रम करुचंती नंदीघोष रथर अग्रभाग को आसिले एवं नंदीघोष रथ तापर दर्पदलन रथ एवं परिशेषे तालध्वज रथ को मध्य एक घेरा परिक्रमा करिवे एक घेरा परिक्रमा करी से देवी रथ दर्पदलन विजय करिवे
1: हाँ सेटा होची जे तीन रथ रे 16 14 12 42

0: कार्यरत महिला और शिशु विकास विभाग ओडिशा सरकार।
1: जय जगन्नाथ। पवित्र रथयात्रा अवसर में समस्त श्रद्धालु और भक्तवृंदों को हार्दिक शुभेच्छा। आपणों सुरक्षा और सुस्थता आमर प्रतिबद्धता। खोला बासी और माछी बसुवा खाद्य खातु ना पटका खाद्य खातु। विशुद्ध पानीय जल व्यवहार करूँ। दीर्घ समय धरिकी खरारे रुहंतु ना। धला टोपी हालका पोशाक किंवा ओदा कपड़ा व्यवहार करूँ। यथेष्ट परिमाण में पा किंवा ओआरएस पानी पियंतु। छेप खंकार अलिया आवर्जना को एणे तेणे न पकाई डस्टबिन में पकातु। पाइखाना व्यवहार करूँ। शौच पर साबुन में हाथ धुंतु। राति रहणी करुले मशारी किंवा मशा निवारक व्यवहार करूँ। निशा सेवन ठू दूरे रुहंतु। मुंड बुलेवा किंवा असुस्थ अनुभव कले विलंब नक निकटस्थ स्वास्थ्य कर्मचारी किंवा स्वास्थ्य शिविर परामर्श नियंतु। वयस्क व्यक्ति शिशु गर्भवती महिला और भिन्नक्षम जत्न नियंतु। सुस्थ रुहंतु सुरक्षित रुहंतु।
2: स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग ओडिशा।
3: पवित्र रथयात्रा रे पूर्वतट रेलपथर विनम्र सेवा जारी रही। वर्ष यात्रीमानंक सुविधा पाई ओडिशार विभिन्न प्रांतरु ओ पड़ोसी राज्यरु विशेष ट्रेन चलाचल घोषणा करा जायछि। एथिसहित अतिरिक्त टिकट विक्रय केन्द्र यात्री सहायता केन्द्र ओ स्टेशन मानंकरे यात्रीमानंक सुरक्षा पाई विशेष व्यवस्था करा जायछि। पूर्वतट रेलपथ आपणंक सेवारे।
4: जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ। वर्तमान आमे देखुचु नाकचणा द्वार सम्मुख भागरे लोकारण्य अर्थात वर्तमान घंटुआ माने सेठी पहुँची गले नृत्यकारी माने सेठी पहुँची गले एवं आमे जानी पारुचु या परे होउचंती पहंडी हेबे सेई बलभद्र भगवान। दुर्भ्याम शोभित लांगलम समुसलं कादंबरी चंचलं रत्नाढ्यं वरकुंडलं भुजबलई राक्रांत भूमंडलं वज्राभामलचारु गंडजुगलं नागेन्द्र चूड़ोज्वलं संग्रामे चपलं शशांक धवलं श्रीकामपालं भजे। आज कामपाल विजय करिवे आउ अल्प समय परे आमे देखिबा कामपाल विजय करिवे। यही जो घंटुआ माने वर्तमान घंट बजाऊ से माने श्री सुदर्शन भगवान को दर्पदलन रथरे आज छाड़ी जाती यही सुदर्शन होती समग्र विघ्नर उच्चारण करने से आसी जेतु प्रभु माने विजय करिवे। चक्र विराजे दक्ष करे सूर्य की उदित अंबरे श्री जगन्नाथ महाप्रभु दक्ष कर डाहाण कर भगवान सुदर्शन विजय करी होती सूर्य कोटि समप्रभ से कहा जाए सूर्य की उदित अंबरे सत्यकण अंबर अर्थात नवोदय नवमंडल सूर्य उदय हेले कि भाव विजय विजय कले से श्री सुदर्शन महाराज घंट घंट घंट घंटा धीरे धीरे शुभिलाणी एवं आमे मध्य जो फांकरे आमे देखुले जे वर्तमान विजय करुले सुदर्शन महाराज से ही फांक वर्तमान आमे देखुचे धीर पदक्षेप परे पाहुंड पकई विजय करुछंती कामपाल हलायुध संकर्षण भगवान श्री बलभद्र भगवान सी होती कामपाल तांकर गोटे नाम होची कामपाल श्री कामपाल भजे। कामपाल कहले कौन काम कहले कंदर्प पाल कहले रक्षा पालक कंदर्प कंदर्पर ज्वालारु जे रक्षा करती सी होती कामपाल अर्थात शिवस्वरूप भगवान शंकर कंदर्प को ध्वंस करते जेहेतु श्री बलभद्र भगवान होती शिवंकर स्वरूप तेणु तांकु कामपाल कहा जाए। काम कहले कंदर्प पाल कहले पालक कंदर्प ज्वालारु जे मनुष्य को रक्षा करे सी होती कामपाल से कामपाल से विजय करिवे। से किए से अयं रोहिणी पुत्रो रमयन सुहृदो गुणैः आख्यास्यते राम इति बलाधिक्याद वलं विदुः जदुना मपृथक भावात् संकर्षण मृत स्नुते। तेणु कहार कथा है अयंगी रोहिणी पुत्र ये होती

0: रथी आपणक रथ शून्य आपण ए शून्य रथ को पूर्ण करंतु महाप्रभु। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। हे पूर्ण स्वरूपी महाप्रभु आपण आसंतु देखंतु येते भक्तगण अछंति आए टाहिया नथिले महाप्रभु सुंदर कण। तेणु महाप्रभु कौन सुंदर हो पारे टाहीटे न लगेले एक किए विचार करा जेतेबले रघु अरक्षित नामक जड़े भक्त सी सिंहद्वार बसी यही माने सूर्यातपरे सूर्यंर जो आतपरे से संतप्त होते तपस्या करुले भगवान को डाकुले महाप्रभु महाकृपामय तेणु सी आसिक छत्र टेकिले तेणु से कहते रघु अरक्षित हे प्रभु मो तपस्या बेले आपण छत्र टेकिले आपण यही प्रार्थना करुच्ची प्रभु आपण जिते बाहर को बाहर आपण एमती लंडित मस्तक बाहर नहीं आपण मस्तक यही टाहिया आणिकी देवी जहाँ को देखला मान प्रत्येक हृत्स्पंदन जात हम एवं देख देखिपु से धला धला आखि से धवल कमल भली अत्यंत सुंदर ढली ढली आसुचंती चतुर्दश भुवनर लोक माने दर्शन करुचंती कि अपूर्व ये शोभा वास्तविक आखिरे न देखिले ये शोभा को वर्णना करने कविर बाणी आज कुंठित हम से महाप्रभु धीरे धीरे आसुचंती से कहा कथा सुनिबे नाही भक्त होकर प्राण तेणु भक्त प्राण महाप्रभु से भक्त मान गहण को माड़ आसुचंती अपेक्षा कर दशावतार मठ यही दशावतार मठ से रही निजे श्री जयदेव जय जयदेव कवि जयदेव गीत गोविंद रचना करते जदि हरिस्मरणे सरसंग मनो जदि विलास कलाशु कुतूहल मधुर कोमल कांत पदावली शुणु तदा जयदेव सरस्वती। तेणु यही जयदेव एवे सूक्ष्म दृष्टि यही अपेक्षा कर रही से प्रभु को टे दर्शन करे से आज घंटुआ सेवक मैने समस्ते लग पड़ महाप्रभु को आनी माने आज घंटा घंटार घंटार जो घोर घर घर शब्द आज प्रकंपित करुची सरधा बाली को एवं ये जो माने अपेक्षा कर रही समस्त मनरे महाप्रभु को दर्शन करिवार जो लालसा से लालसा आज बलवती हे महाप्रभु आउ कहीं विलंब करुचंती प्रभु धीरे धीरे धीरे धीरे अग्रसर हुवंतु एवं आपण को चाहिकी बसंती तालध्वज रथ शून्य तालध्वज रथ को आपण परिपूर्ण करंतु महाप्रभु आसुचंती धीरे धीरे आसुचंती टिके तल को टिके ऊपर को टिके टिके पार्श्व को आउ गोटे पार्श्व को ढली ढली दोहली दोहली भक्त मानक हृदय को मध्य भक्त माने तुम्हें संभाली जाओ कारण से जमी ढलुंती आमे मध्य सेमती ढली जाऊ से बाम को ढलुंती आमर हृदय मध्य बाम को ढली जाऊ प्रभु अति सुंदर भाव से आसुचंती भक्त मानक गहल को एवं आउ मात्र अल्प समय अपेक्षा से अल्प समय भितर से आसी कालध्वज रथरे अवतीर्ण हेबे एवं आमे देखुचु जो टिके टिके खरा वर्तमान देखा देलानी कारण सूर्यदेव से कहले अरे जो जो दिन प्रभु आसीते मत तो मेघ आच्छादन कर रखी मोर शत्रु साजी इंद्र तेणु सी मेघडम्बर गुड़ाक पकईकी मत देखे दे ना आउ प्रभु आज बाहर तेणु वर्तमान नवमंडल मु देखुची वर्तमान खरा पड़गला खरा तो नुह ये भगवान सूर्यदेव सी मध्य खरा मध्यम आज महाप्रभु को आज सेवा करुंट महाप्रभु को सेवा करुंतर आज महाप्रभु धीरे धीरे धीरे धीरे अग्रसर हो।
1: डॉक्टर दास ये जो टाहिया कथा आपण कहते ये टाहिया रो जो रूप एवं टाहिया रो जो स्वरूप महाप्रभु मस्तक परिकल्पना कराई ये हूँ आपको कहुच ये गोटे मयूर जोबले नृत्य विभोर हुए तार जमी पुच्छ मेली जाए आपण देखु मयूर वर्षा आकाश में मेघ को देखी ये तो प्रावृत काल महा ठाकुर माने वर्तमान आकाश में मेघ को देखुं।

0: झुलाई झुलाई ए प्रभु आसुचंती निजे झुली झुली आम हृदय भितर से भावना को जाग्रत करी जो भाव आज भक्त और भगवान को सहित मिलिबारे आम श्रद्धावली देखिपु अनेक श्रद्धालु बर्तमान जो मैंने समस्ते बसी जाते भितर से भावना एत जाग्रत हो समस्ते दंडा मान जाती हरिबोल हूलहुी जय जय गान श्रद्धा बाली प्रकंपित होबे श्रद्धा बालीर ए दृश्य सहित आज गुंडीचा मंडप ठारु जो सिंहद्वार दृश्य आम मैंने देखिपु जहाँ देखिपुना आमर आउ गोटे द्वितीय केन्द्र अच्छी जो बड़ संघटे से बड़ संघ ठारु जो बड़दाण्डर जो प्रशस्त भूमि 3 किलोमीटर व्याप्त ताकू श्रवण करवा नहीं जाऊ द्वितीय केन्द्र को जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ
1: धन्यवाद सुंदर भाव आलोचना करुले कल्याणी जे वर्तमान जगत जननी कृपामयी माँ सुभद्रा ठाकुरानी वर्तमान जाऊंती रथ को दर्पदलन रथ देवदलन रथ को एवं ये रथ सुसज्जित अपेक्षा करते आसवे माँ वर्तमान जाऊंती दर्पदलन रथ को एवं ता आगु आयुध पुरुष चक्रराज सुदर्शन महाप्रभु जे कि ब्रह्मांडनाथ ब्रह्मांड नायक जगन्नाथ बाम पटे शोभा पाता जो वर्तमान जो प्रकार आप देखुं पहंडीर दृश्य बर्तन आम जो अच्छु वर्तमान भक्त सालबेगर समाधि एवं एपटे अर्धशोषणी माँ मौसी माँ मंदिर यही मझीरे आम देखु धीरे धीरे गहली बढ़िवार लगी धीरे धीरे एवं तांकर मेहना जा सारा आपण मैने शुणी खुशी हे जेकि ओडिया जातिर मौड़मणि गजपति महाराज चतुर्थ दिव्य सिंह देव जी वर्तमान पुरीर गजपति अंतर मेहना को सेने नहीं सारे वर्तमान बड़गंडी पाखे बड़शंख पाखे मेहना को रखे एवं गजपति महाराज कारे आसवे से पर्यंत रामजान जीवे श्रद्धा बाली को तेणु वर्तमान धीरे धीरे गहली लगी वर्तमान पाग जदि तीव्र नहीं किंतु लोकों भितर जो आग्रह जो उत्साह से उत्साह जहा पड़ी जाऊंट आसुंट लोक धारी बांधिक जाऊँ एपट को जापट एपट को आस गहली चहली लगी गहली चहली लगवाई महाप्रभु कृपा रही कारण बर्तमान आपणकर अग्निश्रम भाई माने बर्तमान प्रस्तुत हो गला जलसिंचन करने दायित्व निर्वाह करुंट समस्ते समस्त दायित्व निर्वाह करे हूँ गोटे सामूहिक कार्य ये महोत्सव ये रथजात्रार महोत्सव गुंडीचा जात्रार महोत्सव पतित पावन जात्रार महोत्सव ये भाव में चली न देखिले कहीं जापलब्धि करू धीरे धीरे बड़दाण्ड भाव समुद्र जनसमुद्र बोली मुझे ना भाव समुद्र में समस्ते आज उमुटुब होती गोटे जगतर नाथ जगन्नाथ कृपा पाइबा आशीष पाइबा यही लक्ष्य नहीं समस्ते आज धीरे धीरे बड़दाण्ड में परिवार धरिकी आसुंट कारण आज छाड़देले आज छाड़देले आई पुणी आर वर्ष को पागमत्य अनुकूल अच्छी वर्षा ना समस्ते निज निज साधन आसुंट बड़दाण्ड जो बड़दाण्ड में पाद थापीदे अनुभव करें बर्तमान पुलिस भाई मैने वर्तमान धाड़ी जाकर कर्तव्य स्थल को गंतव्य स्थल को ये समस्ते समस्त दायित्व ठीक भाव में निर्वाह करण से पूरा जगतनाथ श्री जगन्नाथ से परम ब्रह्म से परमात्मा से निर्विकार सर्वधर्म समन्वयर हितस्थी होतेष्ट्र जनमानस जगन्नाथ धर्म जगन्नाथ संस्कृति समस्त को आपने समस्त को निजर कर जगन्नाथ महाप्रभु को जोबले आम देखू ये जड़े कबर देवता दारू देवता एवं दारू मूर्ति जो महाप्रभु समग्र विश्व को दर्शन दौरान समग्र मानव जाति को ज्ञान दौर प्रज्ञा दौर विचार दौर से देवता देखापी समस्त।

0: ये होउछि श्रोता बंधु गोटे महाप्रभु प्रति जन्म जन्मांतर तपस्यार फल तेणु सी आम केन्द्र को आसी आम बहुत कृतज्ञता ज्ञापन करुछु से महाशय निकट
1: प्रताप बाबू जड़े दिव्यांग किंतु तांकर मनर आग्रह मनर बल तांकुठी टाणी आनी
0: महाप्रभु कहते पंगुम लंघयते गिरिम
1: तम बंदे परमानंद माधव
0: से परमानंद माधवंकर आकर्षण रे आकर्षित होई से माने केते सौभाग्य मिली बोली प्रकाश करुथिले
1: परम पावन यात्रा रे सेवा को प्राधान्य देते महाप्रभु सेवा बिना किसी नहीं निस्वार्थपर सेवा ही मनीष को मुक्तिमोक्ष दिए मनीष को आ पुनर्जन्म दिए ना यही जो ज्ञान महाप्रभु देते आवाल वृद्ध बनीता समस्ते धाई आसठ को ये ज्ञान ये विचार ये अनुभव
0: अचल को सचल करती बेले जोबले महाप्रभु कृपा कटाक्ष टे पड़ी जाए ना कौन आप
1: महाप्रभु कटाक्ष महाप्रभु दृष्टि चारि चक्षुर मिलन ना महाप्रभु कृपा न पाइले
0: डॉक्टर कानन को सेदिन कुबुजा उपरे महाप्रभु दृष्टि पड़ा से कही मतलब चंदन लगे दि तेणु कुबुजा को उद्धार कले अर्थात अति दिव्य रमणी भाव में महाप्रभु
1: उद्धार करते लोक को महाप्रभु उद्धार कर सत्य त्रेतया द्वापर कली चारि जुगरे केते लोकों को महाप्रभु उद्धार करिसंदी
0: बड़दांडर परिवेश धीरे धीरे भावमय पूर्ण होई जाउची भक्तिमय होई जाउची आपण मानंकु आमे किभली भावरे पहुंचेबू शब्द शब्द मध्य तार बात पाउनी काहेकि ना बड़दांडर परिवेश सही परि अछि जो बड़दांड टिके स्थिर थिला किछ समय पूर्वरु ता वर्तमान चलचंचल होई जाइछि
1: प्रताप बाबू ठाकुर अछन्ति गुंडीचा मंदिर सरदावली
0: निश्चय
1: धीरे धीरे श्रीमंदिर आड़ गहली लगे
0: निश्चय
1: तार कारण हो समस्ते भाई बाट से जिते प्रभु जी श्रीमंदिर को कर्मभूमि को यही आम रही महाप्रभु को रथ टाणी दवा महाप्रभु को देखीद चारि चक्षुर मिलन हो ज्ञान समस्त भितर शोभा पाकि जमान
0: तेणु आम निजक भाग्य सौभाग्य मणवा जे आम उत्कल जन्म पुणी महाप्रभु धाम जन्म आर यटी उत्कल मटी आम जन्म होचे आम जन्म मटी को महाप्रभु पवित्र दरबार को सारा विश्व आज दर्शन करने धाई आसुची दिव्य लीला को दर्शन करने वर्तमान आरक्षी बाहिनी माने सेवा अर्पण करुछंती अग्निशम बाहिनी सेवा अर्पण करुछंती अवसर में महाप्रभु दिव्य पहंडीर परिवेश को अति सुचारू रूप से आपण मान निकट में पहुंचाई आम प्रथम केन्द्र शरदा वाली की नहीं जाऊ जय जगन्नाथ
2: जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ श्रोता बंधु आपण द्वितीय केन्द्र शुणुते आमर भाष्यकार माने सेठिकार विवरणी एवं सेठिकार अनुभव आपण मानक शुणुते प्रकृत में वर्तमान महाप्रभु पहंडी खूब क्षिप्र गति चली क्षिप्र गति चली हेतु दुई तीन ठाकुर वर्तमान रथारूढ़ होगले बड़ ठाकुर बलभद्र तालध्वज रथरे माँ सुभद्रा दर्पदलन रथरे सुदर्शन चक्रराज नंदीघोष माँ सुभद्रा रथरे आसीन हो गले आवल महाप्रभु आगमन को समस्त प्रतीक्षा आपण जानते महाप्रभु सहजरे आसती ना से अचल महामेरु निश्चित भाव कौन तर लीला थी कहीं विलंब हो कथा आम नाकचणा द्वारू आपण को देखिकना किंतु मंदिर भितर चलचंचलता मंडप भितर चलचंचलता आम दृश्यमान होती संकीर्ण बाट देकर आम देखिपु चंचलता अच्छी से जमापड़ी जे महाप्रभु आ किसी समय भितर पहंडी आसवे आपण देखिले श्रोता बंधु ये जो पहंडीर क्रम को आप लक्ष्य करूँ प्रथम आसिले चक्रराज सुदर्शन चक्रराज सुदर्शन प्रथम आसवर कारण कौन कहीं पहंडीर परिकल्पना कराई तार कारण हूँ जे चक्रराज सुदर्शन होती कालर प्रतीक एवं काल जेहेतु अप्रतिहत काल जेहेतु क्या अपेक्षा करे ना से स्कंध देश में सेवक मैने अति क्षिप्र बेगरे आनी सुभद्रा रथ से आसीन करेले ताद्वारा कौन है ना सी हूं महाप्रभु क्रियाशक्ति क्रियाशक्ति ये महाप्रभु तांकरी माध्यम ही सकल कर्म संपादन करती सकल कर्म संपादन करते क्रियाशक्ति रथ उपर विराजमान कले पहंडी होकर आसिले समग्र जगत चलचंचल है समग्र बड़दांड चलचंचल है समस्त भक्त श्रद्धालु मैंने चल

0: ଚାଙ୍ଗଡ଼ାରେ ନାନା ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ମରୁଆ ଏବଂ ତୁଳସୀ ଦୟଡ଼ାକୁ ମିଶ୍ରିତ କରି ଗେଣ୍ଡୁ ଫୁଲ ଆଦି ମିଶ୍ରିତ କରି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ତାଙ୍କର ସେବାକୁ ଆଜି ଅର୍ପଣ କରିବାକୁ ଆସିଛନ୍ତି।
1: पवित्र रथयात्रा उपलक्षे सुभद्रा शक्ति बजार आपणंकु जणाउछि असुमारी शुभेच्छा। एही शुभ अवसर रे सुभद्रा शक्ति बजार रे एसएचजी मां मानंक हात तयारी हस्ततंत ओ हस्तकला सामग्री सहित मिलिट्री प्रस्तुत विभिन्न जैविक सामग्री रो अपूर्व संभार। पवित्र घोषयात्रा उपलक्षे सुभद्रा शक्ति बजार रे विभिन्न क्रय उपरे स्वतंत्र रिहाती। आसंतु आपणंक अपेक्षा रे सुभद्रा शक्ति बजार एसआईआरडी कैंपस यूनिट 8 भुवनेश्वर।
2: पवित्र रथयात्रा रे पूर्वतट रेलपथर विनम्र सेवा जारी रहिछि। ए वर्ष यात्रीमानंक सुविधा पई ओडिसार विभिन्न प्रांतरु ओ पडोसी राज्यरु विशेष ट्रेन चलाचलर घोषणा करा जायछि। एथि सहित अतिरिक्त टिकट विक्रय केन्द्र, यात्री सहायता केन्द्र ओ स्टेशन मानंकरे यात्रीमानंक सुरक्षा पई विशेष व्यवस्था करा जायछि। पूर्वतट रेलपथ आपणंक सेवारे।
3: मशाबाहित रोग डेंगू मलेरिया एवं जापानी ज्वर हेउछि आम राज्यर मुख्य मशाबाहित रोग।
4: वर्षा ऋतुर आरंभ ओ शेष उभय समयरे मशा वंश वृद्धि निमन्ते अनुकूल परिवेश सृष्टि हुए ओ एई तीनोटी रोगर प्रादुर्भाव बढ़ी जाए।
3: एथिरु रक्षा पाइबा पई घर चारिपाखरे ओ घर भितरे कौनसी स्थानरे सात दिनरु अधिक समय पानी जमी रहिबाकु दियंतु नाही।
4: पानी को धरि रखुथिबा भंगा डब्बा सढ़ेई अव्यवहृत हांडी टायर आदि नष्ट करि दियंतु।
3: घर पाखरु बणबुदा सफा करंतु।
4: नाळ नर्दमारे ओ खालुआ स्थानरे जमी रहुथिबा पानीरे मशा निरोधक औषध पकाइबाकु स्वास्थ्य कर्मचारी बा पौर कर्मचारीकु सहायता करंतु।
3: दिन हेउ बा राति सोइबा बेले मशारी व्यवहार करंतु।
4: शरीरकु यथासंभव अधिक ढांकिबा भळी पोशाक पिंधंतु।
3: स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग ओडिशा।
5: हाँ ये मुदिटे भलो लगुची पत्नी को पसंद आसीबो।
6: हाँ सर आपनको चॉइस बहुत भलो अछि आ ए डिजाइन भी नुआ।
5: डिजाइन नुआ अछि ठीक अछि किंतु सुनार विशुद्धतार प्रमाण केउठि मिलिबो।
6: सचेतन ग्राहक हुवंतु आज ही डाउनलोड करंतु बीआईएस केयर ऐप। सुना किनिबा पूर्वरु बीआईएस केयर ऐप रु एचयूआईडी कोड निश्चय जांच करंतु।
7: पुरीर बडदांड केवल गोटे रास्ता नुहे
8: एहा भक्त ओ भगवान को जोड़ी बार पथ।
7: एही पथ रे जाति नाही धर्म नाही परिचय नाही
8: अछि केवल मनीष पणिया।
7: आ जते बेले कहा पाई सहाय्य रो हाथ बढे
8: ताहा ही हुए महाप्रभु का प्रति श्रेष्ठ समर्पण।
7: सड़क दुर्घटनाग्रस्त जीवन रक्षार संकल्प सह सरकार आनी पीएम राहत योजना।
8: जेउठी अनुबंधित घर डाक्तरखान सात दिन जाए देढ़ लक्ष टंका पर्यंत चिकित्सा खर्च सरकार बहन करती।
7: सातश अठानबे घर डाक्तरखाना योजन पंजीकृत होती।
8: समस्त सरकारी डाक्तरखान सड़क दुर्घटनाग्रस्त चिकित्सा संपूर्ण मागणा।
7: आसंतु मानविकतार यही संकल्प में सहभागी होई आमे भी बढ़ावा सड़क दुर्घटनाग्रस्त को सहायतार हाथ।
8: पवित्र घोषयात्रार हार्दिक शुभेच्छा।
7: राज्य परिवहन प्राधिकरण ओडिशा द्वारा जनहित रे जारी।
1: राष्ट्रीय प्रगति रो भीति नारींकु शक्ति विकसित भारत रे समृद्ध ओडिशा पई महिला सशक्तिकरण को केंद्र ओ राज्य सरकारक विशेष गुरुत्व। महिला सशक्तिकरण रो जुगांतकारी योजना सुभद्रा रे महिलांकु मिलिछि आर्थिक सहायता। मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना एकीकृत ममता ओ प्रधानमंत्री मातृवंदना योजना रे योग्य हिताधिकारींकु सहायता। असुविधा रे थिबा महिलांकु तुरंत सहायता पई महिला हेल्पलाइन नंबर 181 असहाय महिलांक पई शक्ति सदन वन स्टॉप सेंटर पोषण अभियान मुख्यमंत्री संपूर्ण पुष्टि योजना इत्यादि माध्यम रे गर्भवती किशोरी प्रसूति और शिशु स्वास्थ्य को दिया जाउची प्राधान्य। प्रारंभिक शैशव जत्न और शिक्षा आमे पढ़िबा आम भाषा रे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान अद्युका इत्यादि जरिया रे महिला और शिशु सर्वांगीन उन्नति पई सर्वदा कार्यरत महिला और शिशु विकास विभाग ओडिशा सरकार।
0: जय जगन्नाथ। केते सुंदर भाव रे आमे देखुचु वर्तमान से धड़ा छति जो कला छति आसीथिले बड़ भाई बलभद्रंकर जेतबळे पहंडी आरंभ होइथिला आउ ये वर्तमान धड़ा छत्री रो जो दृश्य आमको दर्शै दउचि जे वर्तमान कालिया शांत गोटी ब्रह्मांड रो स्वामी सेई पति तपावन जी हासुछंती जगतर नाथ जगन्नाथ झुली झुली ताहिया हलै हलै प्रभु आसीबे एई मंडन करिबे कोळमंडन करिबे नंदी घोष रथर सेई वेदी को आउ एपटे जो पहंडी बेलर जो सुंदर दृश्य घंटुआ मानंकर जो घंटनाद वास्तविक ता प्रशंसनीय काहेकि ना एते सामर्थ्य एते शक्ति प्रभुता को प्रदान करिछंती। दुई घंटा धरी माने क्रमागत निरंतर भाव रे जो घंट बजाई आम मानक मन भितर अधिकर जो आनंद जो भाव बेग को सृष्टि करा

0: विश्व प्रसिद्ध प्रभु श्री जगन्नाथंकर पवित्र रथयात्रा उपलक्षे लक्ष लक्ष श्रद्धालुंक सुरक्षा एवं स्वास्थ्य सेवा निमन्ते सजाग रहिछंती स्वास्थ्य विभाग। जदि कोनोसी भक्त हठात असुस्थ होंती किंबा जरूरी चिकित्सार आवश्यकता हुए तेबे निकटस्थ मेडिकल पोस्ट स्वास्थ्य सेवा केंद्र स्वास्थ्य कर्मी पुलिस किंबा स्वेच्छासेवी को तुरंत सूचना दियंतु। रथयात्रा समय रे पुरी एवं आखपाख अंचल प्रमुख स्थान जथा
1: गांडुआ चौरा छक
0: सिंहद्वार रथ निकटरे टाउन थाना दिगबारिणी खुंटी स्वर्गद्वार लाइट हाउस पुलिस हॉस्पिटल टीबी एवं आईडीएच गुंडीचा मंदिर मालती पाटपुर बस स्टैंड चंदनपुर सीएचसी साखी गोपाल सीएचसी सातशंख सीएचसी पिपिली सीएचसी बालीघाई छक कोणार्क पीएचसी गोप सीएचसी निमापड़ा गिराल छक
1: रेबणा नुआगा
0: सीएचसी सातपड़ा डाक्तरखाना आदि स्थान रे 46 टी सरकारी एम्बुलेंस सह 36 टी बेसरकारी एनजीओ एम्बुलेंस को मिसई मोट 82 टी एम्बुलेंस मुतयन करा जाई छी। जदि किए असुस्थ अनुभव करे तुरंत 108 को कॉल करंतु। निकटरे थिबा एम्बुलेंस केवल किछि मिनिट मध्यरे घटनास्थल रे पहुंची प्राथमिक चिकित्सा आरंभ करिवो एवं आवश्यक हेले निकटस्थ चिकित्सालय को सुरक्षित भाबरे नेइछिबो। प्रत्येक एम्बुलेंस रे ऑक्सीजन जीवन रक्षाकारी उपकरण और जरूरी औषध सह स्वास्थ्य कर्मी 24 घंटा स्वास्थ्य सेवा पाई प्रस्तुत रही। समस्त एम्बुलेंस रो परिवहन एम्बुलेंस कॉरिडोर मध्यरे स्वेच्छासेवी एवं पुलिस कर्मचारी मानंक द्वारा कार्यकारी हेबो। मने रखंतु रोगी निमन्ते एम्बुलेंस रो प्रत्येक सेकेंड अमूल्य। आसंतु जरूरी सेवा को सहयोग करिबा ओ सुरक्षित भावे महाप्रभुंक रथयात्रा रे सामिल हेबा।
2: स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग ओडिशा सरकार।
3: जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ। विज्ञापन विरती परे पुणी आपण मानको स्वागत श्रोता बंधु। वर्तमान नाकचणा द्वार बाहर महाप्रभु तांकर सुंदर टाइया दोलायमान करी समग्र विश्व को देखुचंती ऊर्ध्व चक्षु होई सते जमते आकाश को चाहुचंती तापर माटी को चाहुचंती बड़दांड को चाहुचंती बड़ सुंदर दृश्य। तेणु ए जो महाप्रभुंकर काहेकि कला रंग एवं काहेकि तांकर गोल गोल आखि यार पछरे एवं एमानंकर महाप्रभु बड़ ठाकुर बलभद्र काहेकि धला माँ सुभद्रा काहेकि हलदिया एवं सुदर्शन काहेकि स्तंभाकृति ये सबस्तंकर पछरे गोटे मध्य वैज्ञानिक कारण अच्छी से वैज्ञानिक कारण मध्य आमको जानिबाकु हबो। बड़ भाई थाउ थाउ सान भाई नाँ मंदिर काहेकि बड़ भाई थाउ थाउ सान भाईर एत प्राधान्य काहेकि ये सब कथार मध्य गोटे वैज्ञानिक विश्लेषण कराई से विश्लेषण मध्य आमको जानिबाकु हबो। जानिले ये जो पुराण जनश्रुति किंवदंती भितरे आमे महाप्रभु को बांधुचे तार भितर वैज्ञानिक तथ्यटी मध्य आमे जदि जानिबा महाप्रभु को प्रति आमर विश्वास आहुरी बढ़ी जिवो आहुरी दृढ़ीभूत हबो। आपण जानंतु जे भागवतरे कहिले जे ब्रह्मांड माळ माळ होई मो लोम मूले विराजई तो लोम मूले विराजई तेणु ब्रह्मांड माळ माळ होई जार लोम मूळरे विराजमान करुचे। आपण ब्रह्मांड कहिले कौन जानंतु महाप्रभु आमे गोटे छोटिया ग्रह रे बास करुचे एवं आमे जो ग्रह रे बास करुचे पृथ्वी ताना एवं सेई पृथ्वी गोटे सूर्य भली नक्षत्र रो गोटे ग्रह तेणु एभली भाव रे एमिति कोटि कोटि सूर्य ए विश्व ब्रह्मांड रे अछंती। तेणु से जो ब्रह्मांड माळ माळ होइकरी जहार लोम मूल रे विराजमान करचंती से केमिति हेइथिबे आपण भावंतु तांकर विशालता आपण भावंतु तांकर व्यापकत्व। तेणु विज्ञान कहुचे कौन आमर सूर्य होचि गोटे छोट तारा जहाँ चारिपटे आम पृथ्वी और अन्यान्य ग्रह उपग्रह घूरुचंती सूर्यों ठारु आहुरी बड़ प्राय 20 लक्ष तारा को नहीं आमर गैलेक्सी बा ब्रह्मांड बोली आम जहाँ कहूँ यहीपरी कोटि कोटि ब्रह्मांड महाकाश में अवस्थित अच्छा युड़िक शह शह आलोक वर्ष दूर थिले मध्य निर्मल आकाश में आमको मेघखंड भली देखा जाती यहाँ आम आकाश गंगा बा इंग्राजी में जहाँ मिल्कवे कहुए आम मिल्कवे कहूँ ये सृष्टि को किए गढ़ी वैज्ञानिक माने स्वीकार करिसंती गोटे महाकाश महाशक्ति द्वारा ये महाविश्व तैयारी यहाँ वैज्ञानिक माने कहते कॉस्मिक एनर्जी। तेणु ये जो कॉस्मिक एनर्जी यहाँ गवेषणा करी जाना जाए जे यही कॉस्मिक एनर्जी बा महाशक्ति चारि प्रकार शक्तिर समाहार कौन से चारि प्रकार शक्ति गोटे हूँ डार्क एनर्जी गोटे हूँ व्हाइट एनर्जी गोटे हूँ नेगेटिव एनर्जी आ गोटे हूँ कॉन्शियसनेस। ये डार्क एनर्जी होती जगन्नाथ व्हाइट एनर्जी होती बलभद्र नेगेटिव।

0: अनंत मूरती कंठरु जात सरस्वती सदा चंचल निद्रा नाही एरूपे शून्य सदा चंचल निद्रा नाही एरूपे शून्य अछु रही अशेष तोहर महिमा केजाणी पारे गुण सीमा तो नाम करुथिले लय कोटिए जन्म पाप क्षय नाम घोषिले सर्वसिद्धि खंडई रोग शोक आदि आरत भंजन तो बाना आतंग काले वज्र सेना होइलु दश अवतार नासिलु अवनिर भार दुष्ट निवारी संत पालु तुनाथ परम दयालु तु अटु दरिद्रंकर धन तोपदे रहु मोर मन सती युवतींकर मने निजर स्वामी थांती जेने सही प्रकारे मोर मन तोपदे रहु भगवान कहई दास जगन्नाथ कहई जगन्नाथ दास कमल चरण को आस आपण जहा जहा कहिले वेद वेदांतर सबु कथा गुडाक जगन्नाथ दास नवाक्षरी वृत्तरे केडे सरल भावरे लिखि दैछन्
1: सेहिते पे गीतारे कहिसन्ति प्रभु कहिले अरे मु किछि मागुनी मजेव मन आधस्व मय बुद्धि निवेशय मते मन दे ते कथा को शेषरे से कहिले सती नारी ता पति पाखरे जेमिति मति को बा मन को निश्चल करि रखे हे प्रभु आपणक पाखरे मो मनटा अत्यंत निश्चल हे कि रहु तेणु मो मन
0: तेणु तेणु एबे श्रोता बंधु माने टिके मने कर मने पकांतु जदि पति हेतिबे मने करंतु नहले पत्नी हेतिले भी मने करंतु पत्नी जेमिति पति कथा सब बेले विचार करे जदि से सच्चा पत्नी हेथाय सत पतिव्रता हेथाय पति पति प्राण हेथाय सीए जमी सब बेले पति कथा भावे एवं पति जदि प्रकृत रे पत्नी प्राण हेथाय सीए जमी निजर पत्नी कथा सब बेले भावे से ही भगवान कहते तू पति पत्नी भली पवित्र भाव जदि मो प्रति मन लगेबू मु तोर सकल दुख को दूर कर देबू
1: भगवान केते बड़ आश्वस्ति करचंती अनन्यास चिंतयंतो मांग जे जना परजुपासते तेसा नित्य विदुक्ता नाम योग खेमं वहाम्यहम जे को अन्य पतिव्रता नारी कौन करे तार मन टे तार पति टे ता मन को गोटे पति पाखरे जेमि से निश्चल करी रखी दे सेमती भगवान कहते जो व्यक्ति निजर मन को अन्य कौन सी जगह न दे अनन्यास चिंतयंतु मांग कौन सी जगह न दे मोते केवल प्रदान करी थाए मते चिंता करू थाए मु तार दीटा कथा बहन करे ते सांग नित्याभिजुक्ता नाम नित्य अभिजुक्त से ही व्यक्ति मानू मोर जोग क्षेम वहाम्यहम कौन या अर्थ जोग माने कौन क्षम माने कौन जोग कहिले अप्राप्तस्य प्राप्ति ही जहाँ तो जीवन रे पाइनु मु तते प्रदान करी आउ क्षम माने कौन प्राप्तस्य रक्षण जहाँ तते मु दुर्लभ जिनिष देली ताकू सुरक्षा करी जन को पांच कोटी टंका देई आम निश्चिंत बसी पारानी जदि टिके बा माने लीक ही गला तेबे निश्चित भाव ता मुंडटी कटिजीव तेणु भगवान कहले मु दुर्लभ वस्तु दिए एवं ताकू सुरक्षार भार मध्य मु निए
0: जो योगक्षेम कथा कहले अप्राप्त वस्तुर प्राप्ति एवं प्राप्त वस्तुर रक्षण तेणु आमको भगवान बहुत कथा देले मध्य आमे ताकू धारण करिबा आमे ताकू रक्षा करिबा निज भितरे सबुबेले सेई भावना रे रहिबा सेटा आमर हुए नाही कारण आज पवित्र भावना आसुची काली से भावना चली जाऊची तेणु भगवान कहते तू जदि अनन्य चित्त होकरी मो सहित रहिबू ताले तते मु अप्राप्त वस्तुर प्राप्ति मध्य करेबी एवं से प्राप्त वस्तुटी को तू किभली धारण कर रखिबू ते शक्ति मध्य तते देबी
1: देबी जहाँफल तू निश्चिंत होइजिबू केते बड़ कथा तेणु आमको निश्चिंत करदे निजे कहते ये सब सत्वे एवं निजे आसुचंती निजे आसिकी कौन करचंती कहले अरे मोर केतोटा जात्रा रे तू आ दोले च दोल गोविंद चापे तू मधुसूदन रथे तू बामनम दृष्टवा पुनर्जन्म न विद्यते जदि दोल जात्रा रे मु दोल गोविंद होकरी जेतेबेले दोल बेदी रे झुलुथिबि सेतिबेले मते टिके दर्शन करिबु आउ चापे च मधुसूदन जेतेबेले चाप

0: श्री राज्यरु विशेष ट्रेन चलाचलर घोषणा करा जायछि। एति सहित अतिरिक्त टिकट विक्रय केन्द्र, यात्री सहायता केन्द्र ओ स्टेशन मानंकरे यात्री मानंको सुरक्षा पई विशेष व्यवस्था करा जायछि। पूर्वतट रेलपथ आपनको सेवारे।
1: राष्ट्रीय प्रगतिर भीति नारीको शक्ति, विकसित भारतरे समृद्ध ओडिसा पई महिला सशक्तिकरणको केन्द्र ओ राज्य सरकारंक विशेष गुरुत्व। महिला सशक्तिकरणर जुगांतकारी योजना सुभद्रारे महिलांको मिलिछि आर्थिक सहायता। मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना, एकीकृत ममता ओ प्रधानमंत्री मातृवंदना योजनारे योग्य हिताधिकारीको सहायता। असुविधारे थिबा महिलांको तुरंत सहायता पई महिला हेल्पलाइन नंबर 181, असहाय महिलांको पई शक्ति सदन, वन स्टॉप सेंटर, पोषण अभियान, मुख्यमंत्री संपूर्ण पुष्टि योजना इत्यादि माध्यमरे गर्भवती, किशोरी, प्रसूति और शिशुं स्वास्थ्य को दियाजाउछि प्राधान्य। प्रारंभिक शैशव जत्न और शिक्षा, आमे पढ़िबा आम भाषा, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान, अद्युका इत्यादि जरिया महिला और शिशुं सर्वांगीन उन्नति पई सर्वदा कार्यरत महिला और शिशु विकास विभाग ओडिशा सरकार।
2: ये मुदिटी भलो लागुछि, पत्नीकु पसंद आसिबो।
3: हां सर, आपनको चॉइस बहुत भलो अछि, आउ डिजाइन भी नुआ।
2: डिजाइन नुआ अछि ठीक अछि, किंतु सुनार विशुद्धतार प्रमाण कोठि मिलिबो?
3: सचेतन ग्राहक हुवंतु, आज ही डाउनलोड करंतु बीआईएस केयर ऐप। सुना किनिबा पूर्वरु बीआईएस केयर ऐप रु एचयूआईडी कोड निश्चय जांच करंतु।
4: पुरीर बडदांड केवल गोटे रास्ता नुहे,
5: एहा भक्त ओ भगवान को जोडीबार पथ।
4: एही पथरे जाति नाही, धर्म नाही, परिचय नाही,
5: अछि केवल मणिष पणिया।
4: आउ जेते बेले कहा पाई साहाज्यर हाथ बढ़े,
5: ताहा ही हुए महाप्रभुंका प्रति श्रेष्ठ समर्पण।
4: सड़क दुर्घटनाग्रस्त जीवन रक्षार संकल्प सह सरकार आनी पीएम राहत योजना,
5: जेउठी अनुबंधित घर डाक्तरखाना रे 7 दिन जाए 1.5 लाख टंका पर्यंत चिकित्सा खर्च सरकार बहन करती।
4: ओडिसार 798 घर डाक्तरखाना योजना पंजीकृत होती।
5: समस्त सरकारी डाक्तरखाना रे सड़क दुर्घटनाग्रस्त चिकित्सा संपूर्ण मागणा।
4: आसंतु मानवीयतार एही संकल्प रे सहभागी होई आमे भी बढ़ाइबा सड़क दुर्घटनाग्रस्त को सहायता राहत।
5: पवित्र घोष यात्रा हार्दिक शुभेच्छा।
4: राज्य परिवहन प्राधिकरण ओडिशा द्वारा जनहित जारी।

0: जय जगन्नाथ। जगतर नाथ प्रभु श्री जगन्नाथ रथयात्रा केवल एक पर्व नुहे, बरं एहा होची लक्ष लक्ष श्रद्धालुंकर आस्था विश्वास और भक्ति रे भरा दस दिन व्यापी एक महासमागम। यही पवित्र रथयात्रा अवसर में भक्त मानकर सुस्थता और सुरक्षा निश्चित करिबा आम समस्त दायित्व, से खाद्य निरापत्ता प्रति सचेतन होवा अत्यंत जरूरी। यही समय रे खाद्य निरीक्षक माने निजर कर्तव्य सक्रिय भाव में तुलेबा समय रे आमको मध्य केते गुड़िया दिग प्रति यथेष्ट ध्यान देवाक पड़िबो, जेमिति तटका खाद्य खांतु एवं विशुद्ध पानीय जल व्यवहार करंतु। बाहर खोलार बिक्री होउथुबा खाद्य, कृत्रिम रंग दिया खाद्य, बासी और दुर्गंध होउथुबा खाद्य, माछी बसुथुबा खाद्य एवं पचा सड़ा फल और पनीपरिया आदो खांतु नहीं। खाद्य खाइबा पूर्वरु एवं परे तथा शौच होबा परे निज हात को साबुन ने भल भाव धुंतु। शरीर जल शुष्कतारु रक्षा पाया आवश्यक स्थले ओआरएस द्रवण पियंतु, सर्वदा पायखाना व्यवहार करंतु एवं परिष्कार परिच्छन्न रुहंतु। अळिया आवर्जना तथा बड़का खाद्य एणे तेणे न पकई डस्टबिन व्यवहार करंतु। जरूरीकालीन सहायता पूरी जिला मुख्य चिकित्सालय कंट्रोल रूम फोन नंबर 06752222175 रे जोगाजोग करंतु एवं आंबुलांस पाई 108 को कॉल करंतु। जय जगन्नाथ।
1: स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग ओडिशा द्वारा जनहित रे जारी।
2: जय जगन्नाथ,
3: जय जगन्नाथ,
2: जय जगन्नाथ,
3: जय जगन्नाथ।
2: हमें ये जो विज्ञापन विरति गला
3: आज्ञा आज्ञा
2: ता पूर्व आलोचना करथले श्रद्धा और विश्वास।
3: हाँ,
2: श्रद्धा विश्वास माने कौन ना जो शास्त्र मान कथा आम आलोचना करुचु से शास्त्र मान विश्वास करवा कहीं विश्वास करवा किए प्रश्न भी करें कहीं विश्वास करवा ना विश्वास करवा ये साधु संत महापुरुष माने तपस्या एवं योग बल ज्ञान बल जहाँ उपलब्धि कर ज्ञान आमको दे आमे से भली तपस्या करी परिवानी आमर से भली ज्ञान नहीं तेणु जो ज्ञान आमको परंपरा सूत्र

0: का अलर्ट जारी किया और भारत की अनाहत सिंह विश्व जूनियर स्क्वाश चैंपियनशिप के सेमीफाइनल में पहुंची। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पेपर लीक की घटना के बाद पिछले ढाई महीने में कई कदम उठाए गए हैं। दोषियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है। कल रात एक वीडियो संदेश में श्री मोदी ने कहा कि सरकार की मुख्य जिम्मेदारी ये सुनिश्चित करना था कि विद्यार्थियों का शैक्षणिक वर्ष व्यर्थ न जाए। प्रधानमंत्री ने कहा कि संबंधित विभागों को फास्ट ट्रैक अदालतों के लिए प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं।
1: फास्ट ट्रैक कोर्ट के लिए विभागों को निर्देश दिए थे। विभागों ने लगातार मेहनत करके देर रात मुझे मुसद्दा भी दे दिया। फास्ट ट्रैक कोर्ट और कठोर सजा के प्रावधान के साथ का ये मुसद्दा कैबिनेट में चर्चा होगी। कैबिनेट के साथियों के सुझाव के बाद उसका अंतिम रूप दिया जाएगा और सोमवार से जल्द उस बिल को सदन में पारित कराने का प्रयास किया जाएगा।
0: दिल्ली उच्च न्यायालय ने सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम अधिनियम 2024 के अंतर्गत मामलों की सुनवाई के लिए एक त्वरित न्यायालय का गठन किया है। इस कदम का उद्देश्य सार्वजनिक परीक्षाओं में अनुचित तरीकों से संबंधित मामलों का शीघ्र निपटारा सुनिश्चित करना है। कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा पेपर लीक से संबंधित लंबित मामलों की सुनवाई के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट के गठन के निर्णय की सराहना की है। श्री मेघवाल ने मीडिया से कहा कि इन अदालतों में मामलों की सुनवाई प्रतिदिन होगी।
2: प्रधानमंत्री जी ने निर्णय लिया कि पेपर लीक से संबंधित जो मामले अदालतों में लंबित हैं, चल रहे हैं, उनकी सुनवाई हम स्पेशली डेजिग्नेटेड फास्ट ट्रैक कोर्ट गठित करके करवाएंगे, जिससे डे टू डे बेसिस पे सुनवाई होगी, स्पीडी ट्रायल होगा और टाइम बाउंड इन्वेस्टिगेशन होगा, तो युवाओं को न्याय मिलेगा।
0: पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने फास्ट ट्रैक कोर्ट के गठन की घोषणा को देश के शिक्षा प्रणाली के लिए मील का पत्थर बताया है। स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा और केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह तथा कई अन्य भाजपा नेताओं तथा कांग्रेस जनता पार्टी सीजेपी के प्रतिनिधियों के बीच नई दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में दूसरे दौर की बातचीत जारी है। ये बैठक राष्ट्र स्तर की परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर युवाओं के नेतृत्व में चल रहे विरोध प्रदर्शनों में हुए महत्वपूर्ण घटनाक्रमों के बाद हो रही है। सीजेपी के प्रतिनिधियों सौरभ दास, आशुतोष रांका, अभिजीत दिपके और दीपक बलियान ने सरकार द्वारा उनकी दो शर्तों को स्वीकार करने के बाद वार्ता के लिए सहमति जताई है। ये शर्तें हैं, शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों के खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की जाएगी और हाल में हुई परीक्षाओं में अनियमितताओं से प्रभावित विद्यार्थियों के परिवारों को पर्याप्त मुआवजा दिया जाएगा। संसद के दोनों सदनों में आज लगातार पांचवें दिन नीट पेपर लीक के मुद्दे पर हंगामा जारी रहा। कई बार के स्थगन के बाद लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही सोमवार तक के लिए स्थगित कर दी गई। दोपहर 12 बजे पहले स्थगन के बाद सदन की कार्यवाही फिर शुरू होने पर संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि सरकार पहले दिन से ही नीट पेपर लीक मामले पर चर्चा के लिए तैयार है।
3: पार्लियामेंट हम लोग चर्चा नहीं करेंगे तो बिल्कुल अच्छा संदेश नहीं जाएगा। गांधी जी से अनुरोध करता हूं, आप अपने कांग्रेस पार्टी के साथियों को थोड़ा समझा दीजिए और बाकी कई पार्टीज के एमपीज भी निजी तौर पर सबने अपना मत रखा है कि चर्चा होना चाहिए। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि आज पांचवा दिन है, हम इसमें एक अच्छा सार्थक बहस क्यों नहीं कर सकते हैं।
0: सभापति जगदम्बिका पाल ने कहा कि विपक्ष को सदन की कार्यवाही सुचारू रूप से चलाने में सहयोग करना चाहिए। इससे पहले नीट पेपर लीक मामले में विपक्ष के विरोध के बाद संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई थी। दिन में 11 बजे लोकसभा की कार्यवाही शुरू होने पर अध्यक्ष ओम बिरला सहित सदन के सदस्यों ने करगिल युद्ध में सर्वोच्च बलिदान देने वाले भारतीय सशस्त्र बलों के शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की।
4: दिनांक 26 जुलाई 2026 को कारगिल विजय दिवस की 27वीं वर्षगांठ है। ये सभा भारतीय सशस्त्र बलों के उन वीर जवानों को श्रद्धापूर्वक नमन करती है जिन्होंने अत्यधिक दुर्गम पर्वतीय क्षेत्रों, विषम परिस्थितियों और प्रतिकूल मौसम की परवाह न करते हुए अद्वितीय वीरता और अटूट संकल्प का परिचय दिया।
0: करगिल शहीदों की याद में सदन में मौन भी रखा गया। उधर राज्यसभा की कार्यवाही भी इसी मुद्दे पर शोर शराबे के कारण सोमवार तक स्थगित कर दी गई। दोपहर 12 बजे पहले स्थगन के बाद सदन की कार्यवाही शुरू होने पर

0: सभापति सीपी राधाकृष्णन ने प्रश्नकाल शुरू करने का प्रयास किया, लेकिन विपक्ष ने शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर हंगामा जारी रखा। दिन में 11 बजे राज्यसभा की कार्यवाही शुरू होने पर सदन में कारगिल युद्ध के शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। सभापति सीपी राधाकृष्णन ने कहा कि कारगिल विजय दिवस 1999 के कारगिल युद्ध में भारत की विजय का स्मरणोत्सव है।
1: On this occasion, this house pays its respectable homage to the gallant martyrs who made the supreme sacrifice in service of the nation. We also express our profound gratitude to all the members of the armed forces.
0: राज्यसभा में भी शहीदों के सम्मान में मौन रखा गया। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने कहा है कि जब तक शिक्षा मंत्री को पद से नहीं हटाया जाएगा, विपक्ष नीट परीक्षा प्रश्न पत्र लीक मामले पर किसी भी चर्चा में हिस्सा नहीं लेगा। संसद परिसर में पत्रकारों से बातचीत में श्री गांधी ने कहा कि छात्रों की तीन प्रमुख मांगे हैं, जिनमें शिक्षा मंत्री का इस्तीफा भी शामिल है। समाजवादी पार्टी की सांसद डिंपल यादव ने नीट परीक्षा प्रश्न पत्र लीक मामले में जवाबदेही तय करने की मांग की है। दिल्ली मेट्रो रेल निगम ने राष्ट्रीय राजधानी में सुरक्षा कारणों से आज नई दिल्ली सहित 18 मेट्रो स्टेशनों को बंद रखने की घोषणा की है। इन स्टेशनों में लोक कल्याण मार्ग, राजीव चौक, पटेल चौक, रामकृष्ण आश्रम मार्ग, बाराखंबा रोड, सुप्रीम कोर्ट, सेवा तीर्थ, जनपद, झंडेवालान, मंडी हाउस, केंद्रीय सचिवालय, आईटीओ, दिल्ली गेट, इंद्रप्रस्थ, खान मार्केट, जोरबाग और शिवाजी स्टेडियम शामिल हैं। हालांकि राजीव चौक, मंडी हाउस और केंद्रीय सचिवालय स्टेशनों पर इंटरचेंज की सुविधा जारी रहेगी, लेकिन नई दिल्ली स्टेशन पर इंटरचेंज की सुविधा उपलब्ध नहीं होगी। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध है। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। सर्वोच्च न्यायालय ने आज केंद्र सरकार और राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी को नीट यूजी पेपर लीक मामले के बाद सुधारों को लागू करने में हुई प्रगति पर एक विस्तृत हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया। न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा और न्यायमूर्ति आलोक आराधे की पीठ ने नीट पेपर लीक मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि हलफनामे में केवल अस्थायी उपायों पर निर्भर रहने के बजाय सुधारों को संस्थागत रूप देने के लिए उठाए गए कदमों का स्पष्ट विवरण होना चाहिए। सरकार ने सोशल मीडिया पर केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल के दिल्ली में प्रदर्शन कर रहे छात्रों के बारे में धमकी भरे बयान देने के वीडियो का खंडन किया है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने स्पष्ट किया है कि वीडियो फर्जी है और एआई से बनाई गई है। इकाई ने बताया कि श्री गोयल ने प्रदर्शनों के संबंध में ऐसा कोई बयान नहीं दिया है। सोशल मीडिया पर वायरल लेफ्टिनेंट जनरल राजीव पुरी के एक वीडियो को लेकर बड़ा पर्दाफाश हुआ है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने इस वीडियो को फर्जी और डीप फेक बताया है। वीडियो में दावा किया गया है, जो गलत है, कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अनुरोध पर जनरल पुरी ने नीट परीक्षा पेपर लीक मामले के विरोध प्रदर्शनों के बीच राजधानी में अतिरिक्त सुरक्षा बलों की तैनाती का आदेश दिया है। प्रवर्तन निदेशालय ने आज दिल्ली, उत्तर प्रदेश और पंजाब में 8 स्थानों पर तलाश अभियान चलाया। ये कार्रवाई एक कथित बैंक धोखाधड़ी से धन शोधन मामले के संबंध में की गई है। चेन्नई के पास मधुरंथकम में आज एक सड़क दुर्घटना में 3 लोगों की मौत हो गई। पुडुचेरी से चेन्नई जा रही एक कार की लॉरी से टक्कर के कारण ये दुर्घटना हुई। हादसे के समय पिता और पुत्र सहित 3 लोग चेन्नई हवाई अड्डे जा रहे थे। ओडिशा के पवित्र शहर पुरी में भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र और देवी सुभद्रा की विश्व प्रसिद्ध बहुड़ा यात्रा जारी है। पहंडी अनुष्ठान पूरा हो चुका है और तीनों देवी देवताओं को विधि पूर्वक उनके अपने अपने रथों पर विराजमान कर दिया गया है। अन्य पारंपरिक अनुष्ठानों के संपन्न होने के बाद रथों को खींचने की प्रक्रिया शुरू होगी। एक रिपोर्ट।
2: भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र और देवी सुभद्रा की पहंडी रस्म सफलतापूर्वक पूरी हो गई है और इन भाई बहन देवताओं को बाहुड़ा यात्रा, श्री जगन्नाथ मंदिर वापसी की शुभ यात्रा के लिए उनके रथों पर विधिवत विराजमान किया गया है। श्री गुंडीचा मंदिर से श्री जगन्नाथ मंदिर तक फैली पूरी ग्रांड रोड लाखों भक्तों से खचाखच भरी हुई है। वापसी की यात्रा के दौरान भगवान जगन्नाथ का रथ मौसी माँ मंदिर पर पारंपरिक रूप से रुकेगा, जहाँ भगवान को पोड़ो पीठा का भोग लगाया जाएगा। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे

0: न्यूज ऑन यायार ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @यायारnews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज भारत और रोमानिया के बीच आर्थिक और निवेश संबंधों को विस्तार देने का आह्वान किया है। उन्होंने कहा कि दोनों देशों में वाणिज्यिक सहयोग की अपार संभावनाएं हैं। बुखारेस्ट में भारत रोमानिया व्यापार मंच को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि प्रस्तावित भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौता व्यापार निवेश और मजबूत आपूर्ति श्रृंखलाओं को बढ़ावा देकर आर्थिक संबंधों को मजबूत करने में महत्वपूर्ण सिद्ध होगा।
1: India-EU Free Trade Agreement is an important milestone in India-EU strategic partnership. Trade and economic cooperation are central to the contemporary partnership. With a combined market of nearly 2 billion people and an economic zone of around $25 trillion, the India-EU FTA is among the most significant economic partnerships in the world.
0: भारत ने पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में कथित दमन के मुद्दे पर संयुक्त राष्ट्र की प्रतिक्रिया को लेकर निराशा जताई है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि हरीश पर्वतानेनी ने कहा कि कुछ मामलों में संयुक्त राष्ट्र की ओर से कड़ी प्रतिक्रिया दी जाती है, लेकिन पाकिस्तान में ऐसी घटनाओं पर अपेक्षित ध्यान नहीं दिया जाता है। ये टिप्पणी पाकिस्तान के संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में एक बार फिर कश्मीर का मुद्दा उठाने की कोशिश के बाद आई है। पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव और दुनिया भर में कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस की आपूर्ति को लेकर चिंता बढ़ गई है। ब्रेंट क्रूड की कीमतें मई के बाद पहली बार 100 अमरीकी डॉलर प्रति बैरल से ऊपर पहुंच गईं। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज दोपहर के कारोबार में 0.5% से अधिक की गिरावट दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 403 अंक गिरकर 75,989 जबकि निफ्टी 116 अंक गिरकर 23,754 पर पहुंच गया। भारत की अनाहत सिंह विश्व जूनियर स्क्वाश चैंपियनशिप के सेमीफाइनल में पहुंच गई हैं। क्वार्टर फाइनल में अनाहत ने मिस्र की हबीबा रिस्क को हराया। अब सेमीफाइनल में अनाहत मिस्र की बार्ब समेह से खेलेंगी। मौसम विभाग ने पूर्वी राजस्थान गुजरात और मध्य महाराष्ट्र में आज मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। गुजरात में पिछले 3 दिन से मूसलाधार वर्षा के कारण राज्य में जनजीवन अस्त व्यस्त है। एक रिपोर्ट।
2: दक्षिण गुजरात में 2 दिन तक भारी बारिश के बाद आज उत्तर गुजरात में भी भारी बारिश हो रही है। पिछले 6 घंटों में उत्तर गुजरात के वाओथरा और पाटन जिलों में 6 इंच से ज्यादा बारिश रिकॉर्ड की गई है। सुबह से अब तक राज्य के 239 तहसील में बारिश हुई है। किसी भी इमरजेंसी से निपटने के लिए अहमदाबाद नवसारी और वलसाड में NDRF SDRF की कुल 49 टीमें और भारतीय सेना की 6 टीमें तैनात की गई है। दूसरी ओर राज्य में भारी बारिश के बीच राहत और बचाव का काम भी जोरों पर चल रहा है। मयूर सोलंकी, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
0: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, पेपर लीक घटना के बाद 2.5 महीने में दोषियों की गिरफ्तारी सहित कई कदम उठाए गए। नीट पेपर लीक मामले पर सरकार और CJP के बीच नई दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में दूसरे दौर की वार्ता जारी। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नीट पेपर लीक मामले में विपक्ष के विरोध के कारण सोमवार तक स्थगित। सर्वोच्च न्यायालय ने आज केंद्र और राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी को नीट पेपर लीक के बाद लागू किए गए सुधारों की प्रगति पर विस्तृत हलफनामा दाखिल करने के निर्देश दिए। और भारत की अनाहत सिंह विश्व जूनियर स्क्वाश चैंपियनशिप के सेमीफाइनल में पहुंची। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: आकाशवाणी FM गोल्ड पर अभी आप सुन रहे थे समाचारों की श्रृंखला। 2:30 हो चुके हैं और ये वक्त है हमारे किसान भाइयों के लिए कार्यक्रम का। तो सभी
4: खूब भालो लगे छे, हमें प्रत्येक बारी आसी किंतु एबारे जे जत्नटा पेलाम हमें जेखने एसेछि जे भलनजादे जे खातिर हमार खूब भालो लगे छे।
5: आपन को भालो लागु छि सब व्यवस्था भालो लागु छि
4: भालो लगे छे एवं आमाके जो हमें बॉय स्काउट आछि बॉय स्काउटे छेले आछि এবং ফার্স্ট এড আগে করেছি আমি ফিজিওথেরাপি করি যা প্রতিবন্ধী ডায়ালিসিস রুগীদেরকে আমি ট্রিটমেন্ট করি। আমরা দুজনে আমার স্বামী স্ত্রী দুজনেই ডাক্তার MS ঘোষ ওদের সঙ্গে আমি থেকে আমি করেছি কাজ এবং এবারে আমি সব থেকে প্রত্যেকবারই আসি এবারে স্বেচ্ছায় এসে আমি সব থেকে আনন্দ পেয়েছি এবং ভলেন্টিয়াররা যারা আমাকে নিয়ে এসেছে এরকম যত্ন করে আমি কোনোদিন আসতে পারিনি।
5: জগন্নাথ মহাপ্রভুঙ্কর
4: জগন্নাথ মহাপ্রভুর দয়া, ওনার দয়া না হলে তো কিছু করা যায় না।

0: महाशक्ति इनहेलर।
1: हाँ आज्ञा, मिशल्य करणी नुआ महाशक्ति इनहेलर व्यवहार करंतु, थंडा सर्दी तुरंत आराम पांतु।
2: जय जगन्नाथ। रथयात्रा हेउची भक्ति आनंद एवं आध्यात्मिकतार एक महापर्व। भीड़ भितर जदि किसी जरूरी परिस्थिति उपजे किंबा के असुस्थ हो पड़ती व्यस्त ब्रत हुंतु नहीं, तुरंत पूरी जिला चिकित्सालय कंट्रोल रूम को फोन करंतु। नंबर हेउची 06752-222-175। एहा सहित आउ किसी जरूरी सहायता नंबर गुड़ी को मने रखंतु। पुलिस आउ अग्निशम सेवा पई 112, एम्बुलेंस सेवा पई 108, स्वास्थ्य सहायता पई 104, शिशु सहायता पई 1098, महिला सहायता पई 181, ट्रैफिक सहायता पई 1099। एही समस्त नंबर मने रखंतु, सुस्थ रहंतु, सचेतन रहंतु एवं रथयात्रा को श्रृंखला सहित पालन करंतु। जय जगन्नाथ।
3: स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग ओडिशा सरकार।
4: पवित्र रथयात्रा रे पूर्वतट रेलपथर विनम्र सेवा जारी रही। ए वर्ष यात्री सुविधा पाई ओडिशा विभिन्न

0: आकाशरु वृष्टि हुए सेहीपरि कष्ट सही राजा प्रजाकु आनंद प्रदान करती। गोटे कथा को आपण मानक आगे आम रखुचु इति अवसर में आम केन्द्र आगरे जड़े परलोक हो जा जड़े श्रद्धा आज तर महाभाग्य ए बड़दाण्डे से जामर एक केन्द्र आगरे संकीर्तन आगे आगे चली कुटुंब माने स्वर्गद्वार को ये हूँ से ही बड़दाण्ड जो जन्म जो मृत्यु जो लीला खेला जो तो शिशु कैशोर एवं चौवन बार्धक्य शेषे विदाय आरंभ हुए जीवनर आनंद एठी पुणी विलय हो जाए आ सबुर साक्षी रुंती आम महाप्रभु। तेणु आम महाप्रभु जन्मादेश्य जत ए सूत्र रे आम को जो सुंदर कथा बुझे व्यासदेव जे जहां पाखरु जन्म हुए जहां पाखरे स्थिति बा आमे रही था लीलाखेला करी था आउ जहां पाखरे लय हो जाए जहां पाखरे आमे पुणी मिसी जाऊ ताकु अपर कथार पुणी बुझेले जे उर्ण नाभि तंतुवत अर्थात बुढ़ियाणी जेपरी तार जाल को निज शरीर गठन करे विभिन्न प्रकार सूत्र पर गठन करे शेषे निज भितर पुणी समाहित करे महाप्रभु से हीपरी ए जगत को लीलाखेला करुचंती जगत कहिले आमे समस्ते नाथ कहिले महाप्रभु परम ब्रह्म जगन्नाथ। तेणु जगत युक्त नाथ समाने जगन्नाथ ये ब्रह्मांड जाक समस्ते आम हूँ रमणी बातर पत्नी सी जड़े हूं एकम्र परम ब्रह्म सच्चिदानंद घन विग्रह महाप्रभु जगन्नाथ। तेणु तांकर लीलाखेला को आपण माने देखिबे केदार द्वारिकानाथ रामनाथ बद्रीनाथ किंतु ये हेले जगतनाथ ए जगतर नाथ शब्द को साकार करिसंती आज ए पवित्र घोष यात्रा रो जो वर्णाढ्य परिवेश ए परिवेश को केही केते बेले अस्वीकार करि पारिबो नाही जे से जगतर नुहंती बोली एटी अछंती अमेरिकार विदेशी भक्त माने एटी अछंती जापानर विदेशी भक्त माने तेणु केते दूर दूरांतरु समस्त भाई आसी
1: वर्तमान ये बड़गंडी छक सामने आम जो देखुचे बर्तमान गजपति महाराज तो गले लोकों भितर कि उत्साह उद्दीपना आम देखुचे अनुभव करुचे लोक मैंने गुंडीचा मंदिर जाऊँगी श्रीमंदिर आड़ कौन से उद्देश्य कहीं जाऊँ
0: भक्तिमय परिवेश बढ़ी जा जो नाम संकीर्तन सब आम शुणा को पा नंटा पूर्व वर्तमान विभिन्न संगठन तरफ से माने संकीर्तन नाम कीर्तन बेलू बेल उत्साह बढ़ी जा विशेषकर भक्त सालबेगंकर समाधि आगरे एक सुंदर संकीर्तन मंडली से माने उभय भक्त एवं भगवान कहीं सालबेग जो जश कीर्ति रखी जा जगबंधु हे गोसाई जगबंधु हे गोसाई आनगति नहीं जगबंधु ये गोसाई ये कथा को भक्त सालबेग महाप्रभु पाखे अजाड़ी से ही संगीत को पुनर्बार आज श्रद्धा संकीर्तन मंडली शुणरी पाखे गीत को ये हूँ जश ये हूँ कीर्ति से कीर्तिमय पुरुष से ध्येयम सदा परिभवग्नम अभीष्ट दोहम तीर्थास्पदम शिव विरिंति नूतम शरण्यम भृत्यार्तिहं प्रणत पाल भवाधिपोतम वंदे महापुरुषते चरणारविंदम से महापुरुष से विराट पुरुष भक्त जन बांधव महाप्रभु जगन्नाथंकर दिव्य लीलारे भक्तिमय हो बड़दाण्ड आउ समस्ते निजकु चलचंचल करिसंती महाप्रभुंकर सेवारे कहीं गजपति वर्तमान रथ निकटवर्ती हेबार जो परिवेश रहीगलानी सबु प्रस्तुति भितरे आउ अल्प क्षण भितरे गजपति महाराज रथ निकटरे उपस्थित होई सेवा प्रदान करिवे इति अवसर रे आम केन्द्र सम्मुख भागरे
1: वर्तमान जो परिवेश अछि पाग अनुकूल सुंदर पवन बहुची लोक माने जीवा आसीबा करुचंदी लोकों भितरे जो उत्साह जो उद्दीपना कौन पे उत्साह उद्दीपना
0: आपण गोटे कथा देखंतु श्रीगुंडीचा दिन जिते प्रतिकूल परिस्थिति थिला को लोक कम थिले तेणु भक्त केवे चाहे ना अनुकूल पाग भक्त चाहे ना जगन्नाथ पाखरे से केवल केवल चाहे मो कालिया जोठी मुठी से जिते विपत्ति आसु जिते प्रतिकूल परिस्थिति आसु से केवल चाहे मो कालिया जोठी अच्छी मु दिवारात्र से ही जगह रही।

0: आदि आम देखा पाचे
1: कनई गाई गोठ कनई जो सही भक्त मैंने रुंड होकर रहती
0: जमी दोल है विमान बाहर दोल ठाकुर को लेकिन जापरी आदि ये जो स्वयं नीला रथजात्रा ये रथजात्रा रे महाप्रभु पाखरे विमान सहित कांधुआ सहित आम समस्त हेले जन जन सेवायत भिन्न भिन्न भाव में आम महाप्रभु सेवा को अर्पण करुचे
1: से मोर विश्वास हो जगन्नाथ धाम महाप्रभु जगन्नाथ होती सर्वजनमान्य राष्ट्र देवता श्रीमंदिर रत्न सिंहासन छाड़ी नौ दिन धरिकी महाप्रभु आसी ये जो जन्मवेदी जनक पुरी रे रही आज जो फेरुंच ये एक दुर्लभ दर्शन ये एक एभली दर्शन या अनुभव कले ही भक्त मैंने जापर
0: जानती जगन्नाथ महाप्रभु गोटे मनीष परी आउ गोटे उदाहरण आम देपर ये जो टिके समय पूर्व आम श्रोता बंधु को आम सूचना देखु सिंधुक गला तीन रथ उपरको तीनोटी सिंधुक से सिंधुक कौन महाप्रभु पाट वस्त्र विभिन्न अलंकार साज सज्जा तांकर दैनंदिन नीतिकर्म पर साज सब रही आम जमी बाहर को गले
1: आटास्टा धरिकी जाऊ
0: नाई बाहर
1: की भगवान जिनस को सिंधुक नौ सिंधुक
0: आमर टे चंदन टे दरकार सिंदूर टे दरकार वस्त्र विभिन्न प्रकार दरकार ये सब जो सुरक्षित जिनस रखा गोटे पत्र आम सांगे नहीं जाऊे आटाच कथा जो आप कहले महाप्रभु गोटे बड़ पत्र नहीं जा सिंधुक
1: मैंने समग्र पृथ्वी एभरी देवता विरल
0: समय
1: पृथ्वी में एभली देवता विरल जी तर जिनपत नहीं काठर निर्मित रथरे काठ निर्मित सिंधुक सी निजे स्वयं काठ तेणु वृक्ष देवता वृक्ष को ये प्राधान्य वृक्ष को ये परिमाण में मुंडे बसला भाई रखी आपको अनुभव कले ही आम जापर
0: भगवत गीतार महाप्रभु गोटे कथा कही हे अर्जुन मम माया दूरतेया मो माया को जानवाई अति कष्ट मो माया को जापे किए ना सात वर्षर बालक ध्रुव जापे श्रीकृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव यही जो ओम नम भगवते वासुदेवाय छोटिया मंत्रटी को जप करी ध्रुव पाईगले मते तांको पाई मु माया आ विस्तार करी ना तेणु जी भक्त हेब
1: से माया मोहर ऊर्धर जा भगवान श्रीचरण
0: सी मत जापर जी सेवा सेवक हेब सी मत जापर तेणु
1: जाऊ जगन्नाथ महाप्रभु आज सुंदर देखा जाते बेश जमी अति सुंदर महाप्रभु क्विंटा क्विंटाल सुनार सज्जित होना भक्त मान दर्शन देवे घंटा पर
0: तार सौंदर्य बढ़ी जाए कर्म क्षेत्र जन जो फेरी थाए तार मुह सुखी जाए तेणु महाप्रभु जो माँ कोल आसी से सौंदर्य निश्चित देखा जिबे आउ गोटे कथा आपण जानते माँ पुरा कही जिते दौथी से खाऊ नसुखीब तोर हाथ लोके कहुथिबे खाइबा ठाकुर नीला चले जगन्नाथ तेणु
1: मो प्रताप बाबू भारतवर्षर विभिन्न जगह बुली किंतु ये जगार जो खाइबा जो पिंधिबा आनंद रहिबा परस्पर भितर भाईचारा भाव सृष्टि करी वसुधैव भाव भावधारा रे उद्भुत ही समस्त को आपणार करनवा ये ज्ञान आउ कौटी मिलना
0: जितेबले महासुआर को आम पचारिचु सी कोठसुआर महासुआर से माने कही आमे मध्य निजे अवगत नुह महाप्रभु केते प्रकार अन्न व्यंजन केते प्रकार सुखिली भोग भोजन करुचंती तेणु तांकु गोटे साधारण भाव में षाठिए पौटी बोली गोटे वर्णना रखि दि जाइए किंतु महाप्रभु तत्वधिक केते परिमाण भोजन करती
1: प्रकार भोग षाठिए पौटी
0: ता सीमित ताठू ऊर्धरे दुईश प्रकार नैवेद्य नाम सबू रही
1: संकुड़ी निसंकुड़ी सुखिली केते प्रकार भोग जो भोग को करना कले राति पाई दिन हो सर ना ये भावमय देवता ये महान देवता तांकर सबु महान से देउल महान दांड महान चक्र महान मौदी महान तांकर महाप्रसाद मध्य महान
0: एपरी एक समय रे आम महाप्रभु निकट रे आमे एपरी सौभाग्य सुजोग सब पाइचे किए दर्शन करुचे किए श्रवण करुचे किए कीर्तन करुचे किए सख्य करुचे

0: छेरा पहरा सेवा को आम देखिए आपड़ छेरा पहरा सेवे जतेक द्रव्य व्यवहार हुए से सबूगुड़ी हूँ श्वेत वर्णर निजे गजपति महाराजा तांकर बहु प्रकार वेश थिले मध्ये श्वेत वस्त्र परिधान करी से छेरा पहरा को आसंती। द्वितीय हला छेरा हूँ चंदन पाणी से मध्ये श्वेत वर्णर तापरे जो फूल पकईकिरी ओला हुए बा रथ पर मार्जन करा जाए से मध्ये श्वेत वर्णर तेणु ये सबूजाक श्वेत वर्ण काहीं एवं जो श्वेत वर्णर फूल पकईकिरी से स्वर्ण समार्जनी धरी छेरा पहरा करुछन्ती बा मंदिर परिष्कार रथ परिष्कार करुछन्ती से पुष्प जेकोणसी रंगर भी हो पारिथांता ताको काहीं स्वच्छ वर्णर पुष्प कराई तार कारण हूँ जो पर्यंत ये सबूगुड़िक हूँ मनीषर अंतरर शुभ्रता एवं स्वच्छतार प्रतिफलन जदि मनीषर अंतर भितरे स्वच्छता एवं शुभ्रतार विकास न हुए ताहले ता मन भितर समर्पण भाव आसवना कारण आम जो समर्पण सेवा बोली कहूँ गजपति सेवा समर्पण सेवा ये समर्पण सेवाई अंतर भितरटा शुद्ध रहा दरकार अंतर भितर स्वच्छता रहा दरकार अंतर भितर स्वच्छता रहा शुभ्रता रहा दरकार ये शुभ्र स्वच्छता केमी रुभ्र स्वच्छता रतबले मन भितर आम समस्त महिला गुड़ाक बाहर करदे तेणु गजपति महाराजा मध्य जेतेबेले ए सेवा करिवापाई तांको जीवन रे संकल्प नेले 1971 मसीहा ठारु सेई दिन ठारु से महाप्रभु को सेवा रे समर्पित कौनसी अहंकार न रखी से सेवा करुचंती एवं केवल ए सेवा रे तांकर निरहंकारिता नाही तांकर आचार व्यवहार रे मध्य दैनंदिन व्यवहार रे मध्य एही समर्पण भाव एही स्वच्छ भाव साधु भाव ए सब गुडी को तांकर व्यक्तिगत चरित्र रे प्रतिफलित होई तेणु जेतेबेले से ए सेवा करुछन्ती तांकर सेवारे जो माने अछन्ती तांकर पुरोहित अछन्ती तापरे तांकर अन्य सेवक माने जो माने घटुआरी अछन्ती समाने अछन्ती ए समस्ते तांको ए सेवा करिवारे सहायक होउछन्ती तेणु जो फूल सब व्यवहार होछितरे मल्ली चंपक जाति कास तुलसी पुन्नागसत केतकी कुंदाद्युत्तम पुष्पजाल रचिता माला तुला मंजुला भक्त्यामया दत्ता संप्रति गृह्यतां प्रभु बोलिकरी जेतेबेले सी महाप्रभु को आगे निउछाली होकर महाप्रभु को वंदापना करती यू पुष्पाजलि से प्रदान करती जो आरती करती आरत्रिकंग मे कृपया गृहाण हे दीनबंधु करुणैक सिंधु रमापते श्री जगदेक नाथ विष्णु मुरारी भवभीति हारिन यही भाव से जो आरत्रिक वंदापना करती छेरा पहरा करती ये हूँ गोटे अनन्य सेवा यही अनन्य सेवाटी तांकर अति पवित्र सेवा होइथिबारु ए सेवाटी दर्शन करिवा पाई मध्य समस्तंक मनरे गोटे आवेग थाए कारण ए सेवाटी स्वयं संदर्शन करिवा फळरे आम मानंक मन भितरे मध्य से भावटा संचरण हुए तेणु गजपतिंक छेरा पहराटा काहीके एते महान काहीके एते प्रसिद्ध काहीके एते प्रख्यात तार महिमा एते काहीके गजपति महाराजा समस्ते जमिती पुलिस एसपी जमिती तांकर काम करुछंती मंदिर मुख्य प्रशासक जमिती तांकर काम करुछंती ये मध्य तांकर सेमिती काम करंते तेणु यार महिमा काहीके सेवाटा को एते महिमा मंडित काहीके कराहिछि महिमा मंडित एथिपाई कराहिछि एवं एही सेवाटा को देखिबा पई आम मानक भितरे एते आवेग उन्मादना रहुछि एथिपाई एही जो समर्पण रो प्रति मन भितर से समर्पण भावटा संप्रसारित तो एवं समर्पण भाव संप्रसारित तो होला फल आमर अंतर भितर जो चेतनार विकास से गोटे अनन्य अनुभव आमको दौथपाई ए छेरा पहरा सेवाटी एत महिमा मंडित आउ टे छेरा पहरा सेवा संपर्क में कहवापी मु डॉक्टर नरेश चंद्र दास महोदय को अनुरोध करुच
1: जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ। वर्तमान आम देखिले वीर श्री गजपति गौड़ेश्वर नवकोटि कर्णाटोत्कल वर्गेश्वर अभिराय भूत भैरव दुस्सह दुस्साहसन संग्रामे सहस्रबाहु क्षत्रियकूल धूमकेतु अनिकरण राउतराय प्रबल प्रतापी गजपति महाराजा श्री श्री दिव्य सिंह देव वर्तमान छेरा पहरा कार्य करुछंती एवं जो सेवक अछंती गराबड़ू सेवक एवं मेकअप मेकअप रूपा पिंगण रे धरिचंती शुक्ल फूल एवं से शुक्ल फूल वर्तमान पको पके पके चालू चंती एवं ରାଜଗୁରୁ ସଂସ୍କାର କରି

मागुछंती मागुणी ओडिया जातिर मान गर्व अभिमान सबकिछि जेपरी बलवत्तर रहिब से समर्पित भावना नहीं सेवा करुछंती उत्कलर मौड़मणि वीरश्री गजपति गौड़ेश्वर नवकटी कर्णाट उत्कल वर्गेश्वर प्रभु केते परम दयालु प्रभु मध्य आशीर्वाद करंतु उत्कलर गजपति चलंती विष्णु को सदा सर्वदा तांकर जीवन कुसुमित होई उठु जगतर जी कल्याण निमंते प्रभु निकट में निजक समर्पण कर से गोटिए परे गोटिए जो कार्य चलुला प्रथम आसिले शुक्ल जो राजनीति बंदापना आेरा पहरार जो कार्य चलुची दुई गोटी पर्यायर कार्य प्रथम शुक्ल पुष्प को सिंचन कले आई ने गजपति महाराज तापर चंदन गुंड वर्तमान सिंचक कर जल सिंचन करजे काहाली बाजुची आवा कार्य जो सहयोग करुछंती आज यात्रार सुंदर दिव्य भाव में भंडार मेकअप दयनामाली घटुआरी गराबड़ू सेवक मुदुली सेवक राजगुरु काहालिया तड़ाऊकरण देउलकरण राजज्योतिष रही छेरापहरा कार्य प्रभु निकट में निजक समर्पण कर प्रभु नौ।

0: ये जो छेरा पहरा आप देखुं शुणु गजपति महाराज शेष जो उदारप दलन रथ से छेरा पहरा कार्य कर महान कार्य 1972 मसीह गजपति महाराजा ए छेरा पहरा कार्यरु निवृत्त करा किंतु अटकी गले महाप्रभु चारमाला निकटे फुंकिले नहीं गले नहीं शेषे आमर जड़े सहकारी प्रशिक्षक सहकारी निर्देशक आस्टन जे टेम्पल आडमिनिस्ट्रेटर से जाते अध्या पड़े स्वप्नांश होगा जे तुरंत जा गजपति खबर दिखु गजपति आसिक लंब जो पड़गले डगडग होकर महाप्रभु चलीगले नंदीघोष रथ को ये एक महान परंपरा एटी कौन भेदभाव नहीं राजा प्रजा धनी दरिद्र सान बड़ या भितर किसी भेदभाव नहीं आज्ञा ये एकमात्र देवता जहां पाखे न्यूज छेली होकर दुई हाथ समर्पित होकर सेवा मनोभाव नहीं जदि आप लंब होकर पड़े ना सबु क्षमा करदे महाप्रभु ये क्षमार सागर ये दयार सागर से लक्ष लक्ष भक्त मैने धाई आस चली आसुच्ची बड़दाण्ड को महाप्रभु को दर्शन करे भक्ति नैवेद्य अर्पण करे मनस्कामना पूरण करने जोड़ा स्तर न्यू चली डाकबे यही हूँ भाव यही हूँ विश्वास यही हूँ भक्तिर भाव गोटे नमूना एवं गजपति महाराज अल्प समय पर चेरा पहरा वर्तमान जो भाई भाव में दर्प दलन रथरे महाप्रभु गजपति जे कि चलती विष्णु ठाकुर राजा आद्य सेवक से वर्तमान जो भाई भाव में ये कर्मटी सारुचंदी एवं माने मुंडियाटे मारुचंदी जगतर कल्याण जगतर मंगल से जो देखु मस्तक केमती फुलमाल दि जाऊँ एवं आज्ञामाल दे दि जाऊँ तथास्तु कहीदन रथर देवदेवी माने यहीटा हूँ परंपरा ये हूँ महान परंपरा ये महान परंपरा को आप अनुभव कले ही जापारे कारण गुंडीचा मंदिर सम्मुखस्थ जो श्रद्धा बाली वर्तमान श्रद्धा भक्त मान भितर अपूर्व आनंद उल्लास सत्यमती विभोर हो बर्षकर जो उत्कंठा भक्ति प्लावन सत्यमती रूपातरित हो उठू भक्त मानर हरिबोल हूहुी सांग को जय जगन्नाथ जय गजपति महाराजा जय ध्वनि गगन पवन सत्यमती प्रकंपित हो उठू कथा को आगक नापी मनुज प्रतिम प्रताप त्रिपाठी महोदय को नवेदन करुच्ची जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ
1: रथारूढ़ो गच्छन् पथि मिलित भूदेव पटली स्तुति प्रादुर्भाव प्रतिपदमुपाकर्ण्य सदयः दया सिंधूर बंधु सकल जगतां सिंधुसुतया जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भव तुमे श्रोता बंधु यही जो मांगलिक मुहूर्त यही जो पावन मुहूर्त जो मुहूर्त आपण माने अनुभव करुथिबे तीन रथर छेरा पहरा को दिव्य सेवा को आद्य सेवक संपन्न करी से ही जो तामजान रे बसी से फेरी आसुचंती श्री नहर को द्वितीय अवसर रे बड़ ठाकुर महाप्रभु बलभद्र बड़बाड़ सामंतंकर से दिव्य ताल ध्वज घटक माने प्रस्तुत एवं चाहूक स्वस्थान प्रस्तुत रही से रथ को दौड़ी धरी टाणी जो प्रस्तुतिर पर्व वर्तमान चूड़ांत हो सारा नंदी घोषर चारमाल खोला सरला परे परे मां कपिल्यवासी सुभद्रिका चारमाल खोला हेबो तबे आपण माने जानी खुशी हेबे आमर ए द्वितीय केन्द्र जहाँकि बड़ संघ पाखु आम अवलोकन करे सिंह श्री मंदिर पर्यंत ये संपूर्ण परिवेश बड़दाण्डटी जन समुद्र एक उत्ताल तरंग सदृश केवल मुंड मालगुड़िक मुंडर दर्शन आम करुचे आड़दाण्ड आमको देखा जाऊना इति अवसर में फेरी आसुचंती आद्य सेवक

0: गजपति दिव्य सिंह महादेव दिव्य सिंह महाराज जहां आगे दुईट छत्री दर्शन करेंगे आपण माने से छत्री दुईट हूँ कला छत्री धला छत्री आम माने अनुभव करवा जोबले जगन्नाथं पहंडी हुए बलभद्र महाप्रभुंर पहंडी हुए कला ठाकुर पाखे धला छत्री आउ धवल वर्णर ठाकुर जे कि बलभद्र पाखे कला छत्री धरा होता है मात्र गजपति महाराज पाखे दुईट छत्री त्रास चामर पड़ू श्वेत चामर राजगुरु सहित आसुचंती ये जो लेंकाकरण देउलकरण एवं घटुआरी ये जो वर्णाढ़्य परिवेश ये जो परंपरा एत देश प्रसूतस्य सकाशात अग्रजन्मनः स्वम स्वम चरित्रम शिखेरन पृथिव्याम सर्वमानवः पृथ्वीर सबु मानव माने आमर ई वर्णाढ़्य सेवा को आमर ई नीति परंपरा को आमर ई आदर्श को आमर ई पारिवा पणिया को समस्ते अवलोकन करुछंती आनंदित हेउछंती गर्व अनुभव करुछंती आपण माने जानी आश्चर्य हेबे जेहेतु अल्प किसी समय व्यवधान रे महाप्रभुंकर दिव्य कालध्वज रथ टणा आरंभ होई सेतिपाई उभय बड़दांडर उभय जो कोठा गुड़िक अच्छी से अट्टालिकार विभिन्न जो महला सब रही महला मानकर छात उपरे समस्ते झरका निकटरे जीए जो पार्टी रही निजर स्थान को संरक्षण करते आदर एते आग्रह एते भाव एते मानसिकता जे आम महाप्रभु को टे आखि पूरे देखू आज आमरी आग दे से दिव्य महाप्रभुंर से जो ऐश्वर्यपूर्ण देवदुर्लभ रथ त्रय आज आमरी आगरे जीवे यही अपेक्षार आम देखिपु संपूर्ण भाव प्रति जो बड़ जो कोठा गुड़िक भक्त माने अच्छा तेणु ये कथार आपण माने केते आनंद अनुभव करुथिबे
1: सुंदर समस्ते अपेक्षा करते महाप्रभु बड़ बलिहार भुज बड़ ठाकुर तालध्वज रथ केते आसीबो केते आगुक आसीबो समस्ते आपण देखंतु बड़दांडर उभय पटरे श्रद्धालु भक्त माने अपेक्षा करिसंदी देखिबा पई ये होची भाव ये भाव समुद्र
0: जो छोट छोट दोकानी माने दोकान मिली से माने सब उठे नहीं गले कहीं गहली बढ़ी से माने बिक्री करें पुणी आग को चलने जहां कि सिंहद्वार पाखापाखि से माने चली गले तेणु धीरे धीरे समस्त गति वर्तमान सिंहद्वार आड़ को समुद्र परिपूर्ण हो गला
1: प्रताप बाबू आज तीन रथ टणा सिंहद्वार सम्मुख को जिबे नगले काली सुनावेश ही पारिबो
0: नहीं महाप्रभुंकर दायित्व
1: आज जहां ले भी तांको नहीं जिबे
0: आमे केवल कर्तव्य संपादन करिबा आम हाथ में रही केवल दायित्व महाप्रभुंकर सेवा
1: से नहीं पड़े
0: प्रति आराधना तेणु यही जो दिव्य अवसर रही आपण माने जानती श्रोता बंधु दुईट मासरे ये दिव्य रथत्रय निर्माण करा जाए भोई सेवायत महाराणा सेवायत माने तीन रथर तीन जन सर्दार तांकु दिया जाई थाए साड़ी बंधा जाई थाए निमंत्रण दिया जाई थाए जहां कि वैशाख शुक्ल तृतीया तिथि बा अक्षय तृतीया ठारु से दिन श्रीमंदिर जो कार्यालय सम्मुखरे श्रीनर सम्मुखरे जो तीन खंड रथर अनुकूल करा जाई थाए रथ अनुकूल बोली आपण माने जानते अक्षय तृतीया आज देखुचंती सेई र दिव्य रथ बाही नहीं थेला महाप्रभु आम प्राणप्रिय ठाकुर को पुणी सीए वर्तमान फेरी आसुचंती से कर्म बेदी को आपण माने एक कथा को अंगीकार करुथिबे प्रथम हेउछि कर्म द्वितीय रे हेउछि धर्म कर्म ही भगवान कर्म ही धर्म ए कथा को आज प्रतिपादन करुछंती महाप्रभु जगन्नाथ जाइथिले यात्रा रे मात्र सातटी दिन मां को कोल रे रही पूरी नवदिनात्मक यात्रा रे फेरी आसुचंती वर्तमान ये अवसर रे कौन कहिबे
1: कर्म ही भगवान एवं भगवान सबुले कहउचंती कर्म कर कर्म तोहर निज गुरु उद्धव केते तू पचारु
0: सही कथा को भगवत गीता कहउचंती कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन हे अर्जुन तुम्हें कर्म करि चालो फल रे जदि आशा संचार करिवो फल अभिमुखी हेबो तुम्हें कर्म को ठीक भाव

देखी सखी भूली जाए भकत संसार ताकु ही निरेखी बुझीबे नी आखी भजु थाए नाम तार से हटिया जणे केवल कि चिन्हे नासी गर्व अहंकार से जे ओडिया प्राण ठाकुर निखिल जन अधीश्वर से जे ओडिया प्राण ठाकुर गोपीनाथ से जे वृंदावने रासविहार।

0: ପ୍ରଚାର କଲୁ ଯୁବଶ୍ରୋତା ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଯୁବବାଣୀ ଆକାଶବାଣୀ ଭବାନୀପାଟଣା ଷ୍ଟୁଡ଼ିଓ ଘଡ଼ିର ସମୟ ସନ୍ଧ୍ୟା 6 ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ପ୍ରଥମେ ହିନ୍ଦୀ ଏବଂ ପରେ ପରେ ଇଂରାଜୀରେ ସମ୍ବାଦ ରିଲେ କରି ଶୁଣାଉଛୁ ଆକାଶବାଣୀ ଦିଲ୍ଲୀ କେନ୍ଦ୍ରରୁ କିଛି କ୍ଷଣ ମଧ୍ୟରେ।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पेपर लीक और परीक्षा में गड़बड़ी के मामलों में फास्ट ट्रैक अदालत बनाने और कड़ी सजा सुनिश्चित करने के लिए एक मसौदा विधेयक को आज मंजूरी दे दी। संसद भवन परिसर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक में इसे मंजूरी दी गई। सूत्रों ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि इस विधेयक को अगले सप्ताह संसद में पेश किए जाने की उम्मीद है। श्री मोदी ने कल एक वीडियो संदेश में घोषणा की थी कि पेपर लीक के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के प्रावधानों वाला विधेयक संसद में पेश किया जाएगा। इस बीच संसद परिसर में संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि सरकार विद्यार्थियों के भविष्य के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठा रही है।
2: सोमवार को बिल तो हम लोग तो तैयारी कर रहे हैं। हम तो प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि छात्रों को लेकर के जो हम बिल ला रहे हैं तो उसमें कोई विलंब नहीं होना चाहिए, और जो प्रधानमंत्री जी ने कहा है इस पे कोई रुकावट पैदा करने के लिए कोई हठगंडे अपनाना ठीक नहीं होगा। अब इसको राजनीतिकरण करके फायदा नहीं है, हम लोगों को ठोस कदम कैसे उठाना चाहिए छात्रों का भविष्य के लिए, इस पे ध्यान देना चाहिए।
1: केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह ने आज नई दिल्ली में कांग्रेस जनता पार्टी CJP के प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात की। श्री नड्डा ने बताया कि बैठक के दौरान परीक्षा प्रणाली में सुधार संबंधी पार्टी की मांगों को ध्यानपूर्वक सुना गया।
3: लगभग 2 घंटे चली सरकार की ओर से मैं और मेरे साथ सरकार के मंत्री जितेंद्र सिंह की बातचीत में शामिल हुए। उनकी बातें हमने सुनी, बातें सौहार्दपूर्ण वातावरण में हुई और कई दृष्टि से उन सारी बातों पर हर तरीके से चर्चा हुई।
1: इस बीच प्रतिनिधिमंडल में शामिल CJP के प्रवक्ता आशुतोष रांका ने दावा किया कि सरकार ने सैद्धांतिक रूप से उनकी 2 मांगों पर सहमति दे दी है।
4: डिमांड है 3, उनमें से 2 डिमांड कॉम्पनसेशन और FIR का विड्रॉल और सॉवरेन गारंटी, उनसे सरकार पॉजिटिव है।
1: संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही आज लगातार 5वें दिन भी नीट परीक्षा पेपर लीक और विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन को लेकर हंगामे के कारण सोमवार तक के लिए स्थगित कर दी गई। राज्यसभा की कार्यवाही दूसरे सदन के बाद फिर शुरू होने पर गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026 पेश किया। विधेयक पेश होने के बाद विपक्षी दलों ने नीट मुद्दे पर फिर से नारेबाजी शुरू कर दी। हंगामे के जारी रहने पर उपसभापति हरिवंश ने सदन की कार्यवाही सोमवार तक के लिए स्थगित कर दी। उधर लोकसभा में भी ऐसी ही स्थिति देखने को मिली। इससे पहले सदन के बाद सदन की कार्यवाही

0: कार्यवाही फिर शुरू होने पर संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि सरकार पहले दिन से ही नीट पेपर लीक मामले पर चर्चा के लिए तैयार है। मंत्रिमंडल की आर्थिक कार्य समिति ने कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में बल्लारी गुंतकाल खंड की तीसरी और चौथी लाइन को 1,264 करोड़ रुपए की कुल लागत से मंजूरी दे दी है। इससे भारतीय रेलवे का मौजूदा नेटवर्क लगभग 46 किलोमीटर बढ़ जाएगा। आज नई दिल्ली में सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि इससे आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के बीच संपर्क बेहतर होगा।
1: आंध्रा और कर्नाटक को जोड़ने वाले बहुत एक इम्पोर्टेंट इकोनॉमिक कॉरिडोर में रेलवे की थर्ड और फोर्थ लाइन और दूसरा है केमिकल सेक्टर को एक टोटली नए तरीके से भारत में डेवलप करने के लिए एक नई स्कीम अप्रूव हुई है। और केमिकल भी सेमीकंडक्टर की तरह एक फाउंडेशनल इंडस्ट्री है, इसलिए बहुत इम्पोर्टेंट था इस इंडस्ट्री के लिए एक नए तरीके से सोचना।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज भारत और रोमानिया के बीच आर्थिक और निवेश संबंधों को विस्तार देने का आह्वान किया। बुखारेस्ट में भारत रोमानिया व्यापार मंच को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि दोनों देशों

0: का मौजूदा नेटवर्क लगभग 46 किलोमीटर बढ़ जाएगा। आज नई दिल्ली में सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि इससे आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के बीच संपर्क बेहतर होगा।
1: आंध्रा और कर्नाटक को जोड़ने वाले बहुत एक इम्पोर्टेंट इकोनॉमिक कॉरिडोर में रेलवे की थर्ड और फोर्थ लाइन और दूसरा है केमिकल सेक्टर को एक टोटली नए तरीके से भारत में डेवलप करने के लिए एक नई स्कीम अप्रूव हुई है। और केमिकल भी सेमीकंडक्टर की तरह एक फाउंडेशनल इंडस्ट्री है, इसलिए बहुत इम्पोर्टेंट था इस इंडस्ट्री के लिए एक नए तरीके से सोचना।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज भारत और रोमानिया के बीच आर्थिक और निवेश संबंधों को विस्तार देने का आह्वान किया। बुखारेस्ट में भारत रोमानिया व्यापार मंच को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि दोनों देशों में वाणिज्यिक सहयोग की अपार संभावनाएं हैं। विदेश राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह ने कहा है कि पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष और उससे जुड़ी घटनाएं भारत के लिए गहन चिंता का विषय हैं। लोकसभा में एक लिखित उत्तर में श्री सिंह ने कहा कि संघर्ष शुरू होने के बाद से ही भारत संघर्ष में शामिल पक्षों अमरीका और ईरान के साथ साथ अन्य क्षेत्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय वार्ताकार के साथ लगातार संपर्क में है। ग्लासगो में राष्ट्रमंडल खेलों के आज दूसरे दिन पुरुषों की 50 मीटर बैकस्ट्रोक तैराकी में भारत के श्रीहरि नटराज ने सेमीफाइनल में जगह बना ली है। सेमीफाइनल आज देर रात होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Anuja Kumar. The Union Cabinet today approved a draft bill to set up fast-track courts and to ensure stricter punishment in cases of paper leaks and exam malpractices. The Cabinet meeting chaired by Prime Minister Narendra Modi at the Parliament House complex approved the draft bill. Sources told Akashvani News that the proposed legislation is expected to be introduced in the Parliament next week. In a video message yesterday, Prime Minister Modi had announced regarding bringing a bill with provisions for strong action in cases of paper leaks will be introduced in the Parliament. Union Ministers J.P. Nadda and Dr. Jitendra Singh today met the CJP delegation in New Delhi. Talking to media after the meeting, Mr. Nadda said they gave patient hearing to the demands of the CJP regarding reforms in the examination system. Mr. Nadda said that the CJP had put forth three main demands and also suggested some reforms to curb examination paper leak. Mr. Nadda added that the government will hold another round of discussion with the delegation tomorrow.
3: The meeting lasted for nearly 2 hours. I, along with Union Minister Jitendra Singh, participated in the discussion. The discussions were held in a cordial atmosphere and various issues were discussed from every perspective. Their proposal was also discussed.
2: Spokesperson of the CJP, Ashutosh Ranka, who was part of the CJP delegation, claimed that the government has in principle agreed to two of their demands.
4: There is an in principle agreement on compensation and legal cases. It is positive.
2: Union Parliamentary Affairs Minister Kiran Rijiju today said that Prime Minister Narendra Modi has emphasized that there should be no delay in bringing a stringent bill to prevent malpractices in examinations. Talking to reporters at the Parliament premises, Mr. Rijiju said the country also wants the same and there should be no obstruction to the passage of the bill. Mr. Rijiju said the government is taking important steps to safeguard the future of students. He added that if the opposition creates hurdles in parliamentary discussions on the issue, it will have to face the anger of the country's youth. The Cabinet Committee on Economic Affairs has approved third and fourth rail line of Bellary-Guntakal section in Karnataka and Andhra Pradesh with a total cost of 1,264 crore rupees. It will increase the existing network of the Indian Railways by about 46 kilometres. Briefing media in New Delhi this afternoon, Information and Broadcasting Minister Ashwini Vaishnaw said it will improve connectivity between Andhra Pradesh and Karnataka. He also informed about the Cabinet's approval for Bharat Audyogik Vikas Yojana Rasayan or Bhavya Rasayan scheme for establishing three dedicated chemical parks in the country.
1: Andhra aur Karnataka ko jodne wale.
5: The cabinet has approved the third and fourth railway lines on the important economic corridor connecting Andhra Pradesh.

0: ଆକାଶବାଣୀର ବିକଳ୍ପ ନାହିଁ, ଆକାଶବାଣୀ ହିଁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ମାଧ୍ୟମ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହ ସମ୍ପର୍କ ଯୋଡ଼ିବା ପାଇଁ।
1: मन की बात, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी भारत की जनता से साझा करेंगे अपने मन की बात।
2: सबसे बड़ी खास बात है इस कार्यक्रम की वो यही है कि प्रधानमंत्री इसमें बहुत अनौपचारिक होकर बातचीत करते हैं।
1: आकाशवाणी के सभी केंद्र सभी चैनल इसे प्रसारित करेंगे एक साथ।
3: पूरा देश पूरा लोग उनसे जुड़ रहे हैं, उनके अनुभवों से वाकिफ हो रहे हैं।
1: साथ ही इसका प्रसारण दूरदर्शन के नेशनल न्यूज, डीडी भारती, डीडी इंडिया, डीडी उर्दू और डीडी किसान चैनल पर भी किया जाएगा।
4: जब भी रविवार के दिन मन की बात कार्यक्रम शुरू होता है सुबह से ही हम सुनने के लिए उत्सुक रहते हैं।

0: बताओ आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव टोल फ्री नंबर 1-800-117-800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या माईगोव के ओपन फोरम और नरेंद्र मोदी मोबाइल ऐप में पोस्ट कर सकते हैं।
1: मेरे मन की बात आपके कारण सच्चे अर्थ में आपके मन की बात बन गई है।
2: सुबह 11 बजे
3: मन की बात।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना माध्यम रे प्राय 60 कोटी लोक 5 लाख टंका पर्यंत मागणा उपचार पई होईछंते योग्य हिताधिकारी ए पर्यंत 12 कोटी रु ऊर्ध मागणा चिकित्सा करा जाय छे जेउथरे गरीब परिवारक चिकित्सा खर्च प्राय 2 लाख कोटी टंका संचय होई परिछि आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड करी आयुष्मान कार्ड बनंतु अधिक सूचना पई 14555 नंबर को कॉल करंतु
1: अच्छा दास बाबू आपण को घरटा 1970 रे तयार हितला राइट
2: हले ए पर्यंत एते स्ट्रांग केमिति अछि
3: अरे एटा एकदम सिंपल एकदम

ये आकाशवाणी है। अब आप प्रियंका अरोड़ा से संसद में आज हुई कार्यवाही की समीक्षा सुनिए। पहले लोकसभा। लेखक हैं यूनिवार्ता के वरिष्ठ पत्रकार मोहम्मद आजाद। लोकसभा में शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर विपक्षी सदस्यों ने आज हंगामा किया, जिसके कारण सदन की कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। लोकसभा की कार्यवाही पहले स्थगन के बाद 12 बजे दोबारा जैसे ही शुरू हुई तो विपक्षी सदस्यों ने हंगामा शुरू कर दिया। हंगामे के बीच संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि विपक्ष के नेता राहुल गांधी भी आज सदन में मौजूद हैं। मैं उनसे आग्रह करना चाहता हूं कि प्रमुख विपक्षी दल का नेता होने के नाते और प्रधानमंत्री के पेपर लीक पर सख्त कदम उठाने की घोषणा के बाद विपक्ष को संसद में इस पर चर्चा कराने में सहयोग करना चाहिए। उन्होंने कहा कि जब सरकार कठोर कानून बनाने जा रही है, पेपर लीक को रोकने के लिए कड़े कदम उठा रही है और सरकार की मंशा मजबूत कानून लाने की है, तो फिर विपक्ष को चर्चा में सहयोग करना चाहिए। प्रमुख विपक्षी दल के नेता होने के नाते श्री गांधी को इस दिशा में पहल करना चाहिए। उन्होंने कहा कि यदि चर्चा नहीं होती है तो इसका संदेश गलत जाएगा। श्री रिजिजू के आग्रह के बाद भी विपक्षी दलों ने हंगामा जारी रखा। पीठासीन अधिकारी जगदम्बिका पाल ने भी कहा कि सरकार चर्चा के लिए तैयार है, तो विपक्षी दलों को चर्चा के लिए तैयार हो जाना चाहिए और उन्हें अपनी सीट पर जाना चाहिए। उनका कहना था कि आज महत्वपूर्ण विधेयक है, इसीलिए सदस्यों को अपनी सीट पर जाकर सदन को चलाना चाहिए। हंगामा जारी रहा तो पीठासीन अधिकारी ने सदन की कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। इससे पहले सुबह 11 बजे अध्यक्ष ओम बिरला ने जैसे ही प्रश्नकाल शुरू करने की घोषणा की, विपक्षी सदस्य अपनी सीटों पर खड़े होकर हंगामा करने लगे। श्री बिरला ने सदस्यों से शोर शराबा नहीं करने का आग्रह किया, लेकिन उनकी बात पर ध्यान दिए बिना सदस्य नारे लगाते रहे। इस पर श्री बिरला ने कहा कि प्रश्नकाल सबसे महत्वपूर्ण होता है, सदस्य सवाल पूछते हैं और सरकार की जवाबदेही तय करते हैं। अध्यक्ष के बार बार आग्रह के बाद भी हंगामा नहीं थमा, तब कार्यवाही 12 बजे तक स्थगित कर दी गई। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कार्यवाही शुरू होते ही सदन को कारगिल दिवस के बारे में सूचित करते हुए कहा कि कारगिल विजय दिवस हम 26 जुलाई को मनाते हैं, लेकिन उस दिन अवकाश होने की वजह से इस संबंध में सदन को आज ही अवगत करा रहे हैं। उन्होंने कहा कि 26 जुलाई 2026 को कारगिल दिवस की 27वीं वर्षगांठ है। ये दिन हमारे भारतीय सशस्त्र बलों के अदम्य साहस, अप्रतिम शौर्य और सर्वोच्च बलिदान का प्रतीक है। ये सभा भारतीय सशस्त्र बलों के वीर जवानों को श्रद्धापूर्वक नमन करती है, जिन्होंने अत्यधिक दुर्गम पर्वतीय क्षेत्रों, विषम परिस्थितियों और प्रतिकूल मौसम की परवाह न करते हुए अद्वितीय योगदान दिया और अपना सर्वोच्च बलिदान देकर देश की अखंडता और संप्रभुता की रक्षा की। उन्होंने कहा कि संपूर्ण राष्ट्र मातृभूमि की रक्षा में अपना सर्वोच्च न्यौछावर करने वाले अमर शहीदों का सदैव ऋणी रहेगा। ये सदन उन वीर शहीदों के परिजनों के प्रति अपनी गहरी संवेदना, सम्मान और कृतज्ञता व्यक्त करता है। सरकार ने लोकसभा में स्पष्ट किया कि देश में किसानों को उर्वरकों की समय पर और पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए प्रत्येक फसल मौसम से पहले राज्यों की आवश्यकता का आकलन किया जाता है और उसी के आधार पर मासिक आपूर्ति योजना बनाकर उर्वरकों का आवंटन किया जाता है। सरकार ने कहा कि खरीफ 2026 के दौरान यूरिया, डीएपी, एमओपी और एनपीकेएस सहित सभी प्रमुख उर्वरकों की राज्यों में पर्याप्त उपलब्धता बनी रही तथा उनकी आपूर्ति की लगातार निगरानी की जा रही है। रसायन

और उर्वरक मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने बताया कि उर्वरकों की आवाजाही पर एकीकृत उर्वरक निगरानी प्रणाली के माध्यम से नजर रखी जाती है। जिला और ब्लॉक स्तर पर उर्वरकों का वितरण संबंधित राज्य सरकारें करती हैं। उन्होंने कहा कि फॉस्फेट और पोटाश उर्वरकों के लिए वर्ष 2010 से पोषक तत्व आधारित सब्सिडी नीति लागू है। इसके तहत कंपनियां अधिकतम खुदरा मूल्य तय करने के लिए स्वतंत्र हैं, जबकि सब्सिडी पोषक तत्वों की मात्रा के आधार पर दी जाती है। किसानों को डीएपी 50 किलोग्राम की बोरी 1,350 रुपये के वहनीय मूल्य पर उपलब्ध कराने के लिए खरीफ और रबी 2025-26 तथा खरीफ 2026 के लिए एनबीए सब्सिडी के अतिरिक्त 3,500 रुपये प्रति मीट्रिक टन का विशेष प्रावधान भी किया गया है, ताकि उर्वरकों की कीमतें स्थिर बनी रहें। उन्होंने कहा कि वर्ष 2014-15 से अब तक देश भर में 26 करोड़ से अधिक मृदा स्वास्थ्य कार्ड जारी किए जा चुके हैं। विभिन्न अध्ययनों में पाया गया है कि मृदा स्वास्थ्य कार्ड की सिफारिशों के अनुसार

इसके तहत कंपनियां अधिकतम खुदरा मूल्य तय करने के लिए स्वतंत्र हैं, जबकि सब्सिडी पोषक तत्वों की मात्रा के आधार पर दी जाती है। किसानों को डीएपी 50 किलोग्राम की बोरी 1,350 रुपये के वहनीय मूल्य पर उपलब्ध कराने के लिए खरीफ और रबी 2025-26 तथा खरीफ 2026 के लिए एनबीए सब्सिडी के अतिरिक्त 3,500 रुपये प्रति मीट्रिक टन का विशेष प्रावधान भी किया गया है, ताकि उर्वरकों की कीमतें स्थिर बनी रहें। उन्होंने कहा कि वर्ष 2014-15 से अब तक देश भर में 26 करोड़ से अधिक मृदा स्वास्थ्य कार्ड जारी किए जा चुके हैं। विभिन्न अध्ययनों में पाया गया है कि मृदा स्वास्थ्य कार्ड की सिफारिशों के अनुसार उर्वरकों के उपयोग से रासायनिक उर्वरकों की खपत में 8-10% तक कमी आई है, जबकि फसलों की उत्पादकता में 5-6% तक वृद्धि दर्ज की गई है। नीति आयोग ने भी एनबीएस योजना को संतुलित उर्वरक उपयोग के लिए उपयोगी बताते हुए इसे और प्रभावी बनाने की आवश्यकता पर बल दिया है। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री प्रताप राव जाधव ने एक लिखित उत्तर में कहा कि FSSAI ने खाद्य सुरक्षा और मानक खाद्य उत्पाद मानक तथा खाद्य योजक विनियम 2011 अधिसूचित किए हैं, जिनमें बिस्किट, खाद्य तेल तथा अन्य पैकेज्ड खाद्य पदार्थों सहित विभिन्न खाद्य उत्पादों के मानक निर्धारित किए गए हैं। इन विनियमों के अनुसार पाम ऑयल एक मानकीकृत खाद्य तेल है। चूंकि पाम ऑयल एक मानकीकृत खाद्य तेल है, इसका उपयोग स्नैक्स, बिस्किट, नमकीन और अन्य पैकेज्ड खाद्य पदार्थों में खाद्य तेल के घटक के रूप में करने की अनुमति है। उन्होंने कहा कि खाद्य सुरक्षा और मानक लेबलिंग और प्रदर्शन विनियमन 2020 के अनुसार खाद्य उत्पादों की सामग्री सूची में प्रयुक्त खाद्य तेल का विशिष्ट नाम देना अनिवार्य है। केवल खाद्य वनस्पति तेल जैसा सामान्य नाम लिखना पर्याप्त नहीं है, इससे उपभोक्ताओं को सही जानकारी मिलती है और वे सूचित विकल्प चुन सकते हैं। सभी खाद्य व्यवसाय संचालकों के लिए निर्धारित मानकों का पालन करना अनिवार्य है। FSSAI के मानक स्वतंत्र वैज्ञानिक जोखिम आकलन, वैज्ञानिक पैनलों और समितियों की राय पर आधारित होते हैं तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त कोडेक्स मानकों के अनुरूप बनाए जाते हैं। केंद्रीय महिला और बाल विकास राज्य मंत्री सावित्री ठाकुर ने एक लिखित उत्तर में कहा कि किशोर न्याय बालकों की देखरेख और संरक्षण अधिनियम 2015 के अंतर्गत उन्होंने महिला और बाल विकास मंत्रालय केंद्र प्रायोजित योजना मिशन वात्सल्य के माध्यम से राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों के प्रयासों में मदद करता है। मिशन वात्सल्य योजना अन्य बातों के साथ साथ किशोर न्याय बालकों की देखरेख और संरक्षण अधिनियम 2015 तथा मिशन वात्सल्य दिशा निर्देशों के प्रावधानों के अनुसार 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर चुके और बाल देखरेख संस्थानों को छोड़ रहे पात्र युवा वयस्कों के लिए उत्तरोत्तर देखभाल सहायता प्रदान करती है। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री प्रताप राव जाधव ने एक लिखित उत्तर में बताया कि जन स्वास्थ्य और अस्पताल राज्य के विषय हैं, अतः जन स्वास्थ्य सुविधाओं में मानव संसाधन की पर्याप्तता और सेवा उपलब्धता सहित स्वास्थ्य परिचर्चा प्रणाली को सुदृढ़ करने की जिम्मेदारी संबंधित राज्य या संघ राज्य क्षेत्र सरकारों की है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश राज्य सरकार द्वारा प्रदान की गई सूचना के अनुसार स्वशासी राजकीय मेडिकल कॉलेज लखीमपुर खीरी, जिसकी वार्षिक प्रवेश क्षमता 100 MBBS विद्यार्थियों की है, को स्नातक चिकित्सा शिक्षा प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग NMC द्वारा निर्धारित मानदंडों और मानकों के अनुसार स्थापित किया गया है। वर्तमान में कॉलेज MBBS शिक्षा के लिए NMC विनियमों के तहत अनिवार्य विभागों, अवसंरचना और सुविधाओं से सुसज्जित है। वर्तमान में कॉलेज में कार्डियोलॉजी, न्यूरोलॉजी आदि जैसे सुपर स्पेशलिटी विभाग स्थापित नहीं किए गए हैं। कार्डियोलॉजी और न्यूरोलॉजी आदि जैसे रोगों से संबंधित गंभीर रोगियों का उपचार सामान्य चिकित्सा विभाग के संकाय द्वारा किया जा रहा है और जिन रोगियों को सुपर स्पेशलिस्ट परिचर्या की आवश्यकता होती है, उन्हें KGMU लखनऊ, SGPGI रेफर किया जा रहा है। अब सुनिए राज्यसभा में हुई कार्यवाही की समीक्षा। लेखक हैं PTI भाषा के माधव चतुर्वेदी। राज्यसभा में आज भी नीट प्रश्न पत्र

लीक मामले को लेकर विपक्ष के हंगामे के कारण गतिरोध बना रहा और सदन की बैठक दो बार के स्थगन के बाद पूरे दिन के लिए स्थगित कर दी गई। हंगामे के बीच ही राष्ट्रगीत वंदे मातरम के अपमान को दंडनीय बनाने के प्रावधान वाला एक विधेयक सदन में पेश किया गया। हंगामे की वजह से आज भी उच्च सदन में शून्यकाल और प्रश्नकाल नहीं हो पाया। सुबह 11 बजे उच्च सदन की बैठक शुरू होने पर सभापति सीपी राधाकृष्णन ने 26 जुलाई को मनाए जाने वाले करगिल विजय दिवस का उल्लेख किया। सभापति ने कहा कि 26 जुलाई को देश करगिल विजय दिवस मनाएगा। ये दिन 1999 के करगिल युद्ध में भारत की जीत की याद में और हमारे सशस्त्र सेनाओं के उन बहादुर अधिकारियों तथा सैनिकों के सम्मान में मनाया जाता है जिन्होंने अद्भुत साहस, वीरता और कर्तव्य के प्रति अटूट निष्ठा के साथ देश की संप्रभुता और अखंडता की रक्षा की। उन्होंने कहा कि इस अवसर पर ये सदन उन वीर शहीदों को सादर श्रद्धांजलि अर्पित करता है जिन्होंने देश की सेवा में सर्वोच्च बलिदान दिया। हम सशस्त्र सेनाओं के उन सभी सदस्यों के प्रति भी गहरा आभार व्यक्त करते हैं जिनका दम्य साहस, दृढ़ संकल्प और असाधारण चुनौतियों के बीच निस्वार्थ समर्पण देश को प्रेरित करता रहता है और देश की एकता, संप्रभुता और अखंडता को बनाए रखने के हमारे सामूहिक संकल्प को और मजबूत करता है। सभापति ने कहा कि मुझे विश्वास है कि इस सदन के सदस्य बहादुर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करने में मेरे साथ शामिल होंगे। इसके बाद सदस्यों ने देश के लिए अपने प्राणों का बलिदान देने वाले शूरवीर सैनिकों के सम्मान में कुछ पलों का मौन रखा। करगिल विजय दिवस हर वर्ष 26 जुलाई को मनाया जाता है लेकिन इस बार 26 जुलाई को रविवार होने के कारण अवकाश होगा और संसद की बैठक नहीं होगी, इसलिए आज शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई। शहीदों को श्रद्धांजलि देने के बाद सभापति ने आवश्यक दस्तावेज सदन के पटल पर रखवाए और प्रश्नकाल शुरू करना चाहा। इसी बीच विपक्षी सदस्यों ने नीट प्रश्न पत्र लीक मामले को लेकर सोमवार को राजधानी में प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों पर पुलिस की कार्रवाई के विरोध में तथा शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग करते हुए सरकार के खिलाफ नारेबाजी और हंगामा शुरू कर दिया। हंगामे के बीच सभापति ने सदन में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे को बोलने की अनुमति दी। श्री खड़गे ने प्रदर्शनकारी विद्यार्थियों पर पुलिस की कार्रवाई का जिक्र किया। उनकी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि सत्ता पक्ष के सदस्य विरोध करने लगे। सभापति ने हंगामे के कारण बैठक दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी और उच्च सदन में आज भी शून्यकाल नहीं हो पाया। एक बार के स्थगन के बाद दोपहर 12 बजे बैठक शुरू होने पर सभापति राधाकृष्णन ने फिर से सदन में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे को बोलने के लिए आमंत्रित किया। श्री खड़गे ने कहा कि शिक्षा मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए और प्रधानमंत्री को स्थिति स्पष्ट करते हुए बयान देना चाहिए। श्री खड़गे अपनी बात पूरी नहीं कर पाए थे कि सत्ता पक्ष के सदस्यों ने विरोध करना शुरू कर दिया। इस बीच विपक्ष के सदस्यों ने भी हंगामा और नारेबाजी शुरू कर दी। सदन में अव्यवस्था देख राधाकृष्णन ने बैठक दोपहर 2 बजे तक स्थगित कर दी। दो बार के स्थगन के बाद दोपहर 2 बजे बैठक शुरू होते ही विपक्षी सदस्यों ने शिक्षा मंत्री के इस्तीफे के बाद ही नीट परीक्षा पेपर लीक मामले पर चर्चा करने की मांग करते हुए हंगामा शुरू कर दिया। उपसभापति हरिवंश ने विपक्षी सदस्यों को शांत कराने का प्रयास करते हुए कहा कि राष्ट्र गौरव अपमान निवारण संशोधन अधिनियम विधेयक 2026 को पेश किया जाना है जो आज के कामकाज की सूची में सूचीबद्ध है। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने आसन की अनुमति से राष्ट्र गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026 पेश किया। इस विधेयक के तहत 1971 के मूल अधिनियम में संशोधन का प्रावधान किया गया है। संशोधन विधेयक के विरोध में प्रस्ताव रखते हुए मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के जॉन ब्रिटस ने कहा कि संविधान में जो बात तय हो चुकी है संसद उसे सामान्य अधिनियम के जरिए संशोधित नहीं कर सकती है। उन्होंने कहा कि ये संशोधन विधेयक पूर्णतः देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉ. राजेंद्र प्रसाद की मंशा पर आधारित है किंतु ये संविधान के उन संदर्भों की अनदेखी करता है जिनके आधार पर मूल कानून बनाया गया था।
श्री ब्रिटास ने कहा कि संविधान सभा ने लगातार 3 वर्ष तक गहन विचार विमर्श करने के बाद राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत को एक समान दर्जा नहीं दिया था। उन्होंने कहा कि किसी कानून के जरिए देशभक्ति और राष्ट्रवाद पैदा नहीं किए जा सकते। विधेयक की मंशा समाज का ध्रुवीकरण करना है।

0: विधेयक को पेश करने के विरोध में प्रस्ताव पेश करते हुए भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के संतोष कुमार पी ने कहा कि वंदे मातरम का उद्देश्य समाज को एकजुट करना है, बांटना नहीं है। अभी आप संसद में हुई आज की कार्यवाही की समीक्षा सुन रहे थे।
1: आकाशवाणी भवन पटना आपण मैंने शुणुले संसद समीक्षा रिले कर शुणिलु आकाशवाणी दिल्ली केन्द्र रु। श्रोता बंधु वर्तमान प्रचार करुछु आंचलिक गीत क्रम संबलपुरी गीत परेषण करिछन्ति शिल्पी कृष्णा पटेल।

0: नमस्कार, मैं हूं धर्मेंद्र।
1: और मैं हूं प्रशांत कुमार।
0: स्पोर्ट्स कैन के आज के इस अंक में आप सभी का हम दोनों स्वागत करते हैं। हम एक बार फिर मौजूद हैं, नए कलेवर, नए रंग, नए अंदाज, एक नई शुरुआत के साथ, जहां हमारे साथ है हर मैच का अपडेट, हर मैदान का हाल और हर खिलाड़ी की खबर, सब कुछ अधिक विस्तार के साथ। तो शुरू करते हैं स्पोर्ट्स कैन के साथ खेल की हर बात। पहले हेडलाइंस।
1: ग्लासगो में राष्ट्रमंडल खेलों के आज दूसरे दिन पैरा पावर लिफ्टिंग के पुरुष लाइटवेट वर्ग में अशोक चौथे स्थान पर रहकर पदक से चूके। श्रीहरि नटराज ने पुरुषों के 50 मीटर बैकस्ट्रोक तैराकी के सेमीफाइनल में जगह बनाई। हांगझोउ में ISSF विश्व कप में संयम ने महिलाओं के 10 मीटर एयर पिस्टल इवेंट में रजत पदक जीता। अनहत सिंह ओंटारियो में विश्व जूनियर स्क्वाश व्यक्तिगत चैंपियनशिप के वुमेन सिंगल सेमीफाइनल में पहुंची। भारत और जिम्बाब्वे के बीच तीन मैचों की श्रृंखला का दूसरा 2020 मैच कल हरारे में खेला जाएगा। और सितंबर में उज्बेकिस्तान के समरकंद में होने वाले फिडे शतरंज ओलंपियाड के लिए भारत की महिला और पुरुष टीम की घोषणा हुई।
0: और अब खबर विस्तार से। ग्लासगो में राष्ट्रमंडल खेलों के आज दूसरे दिन पैरा पावर लिफ्टिंग के पुरुष लाइटवेट वर्ग में भारत के अशोक चौथे स्थान पर रहे और पदक से चूक गए। इसी वर्ग में परमजीत सिंह को छठा स्थान मिला। अशोक ने कुल 143.8 जबकि परमजीत ने 135.6 अंक हासिल किए।
1: धर्मेंद्र, भारत के आज दूसरे दिन तैराक श्रीहरि नटराज ने राष्ट्रमंडल खेलों के पुरुषों की 50 मीटर बैकस्ट्रोक स्पर्धा में संयुक्त 14वें स्थान पर रहते हुए सेमीफाइनल में जगह बना ली। दो बार के ओलंपियन और कई राष्ट्रीय रिकॉर्ड अपने नाम कर चुके नटराज ने 25.52 सेकंड का समय लिया। उन्होंने बरमूडा के जैक हार्वे के साथ संयुक्त 14वां स्थान हासिल किया। सेमीफाइनल के लिए हीट से शीर्ष 16 तैराकों का चयन किया गया। नटराज अपनी 8 खिलाड़ी हीट पांचवें स्थान पर रहे। सेमीफाइनल आज देर रात खेला जाएगा। उधर पैरा तैराकी में RVV के BK बुदिगियाना और इमाम अली ने पुरुषों की 100 मीटर फ्री स्टाइल S13 वर्ग के फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया है। हीट में हिस्सा लेने वाले सभी 8 तैराक फाइनल में पहुंचे। बुदिगिना ने 57.1 सेकंड के समय के साथ हीट में तीसरा स्थान हासिल किया, जबकि इमाम अली 1:05.2 सेकंड के समय के साथ 8वें स्थान पर रहे। S13 वर्ग दृष्टिबाधित खिलाड़ियों के लिए निर्धारित पैरा तैराक की श्रेणी है।
0: और प्रशांत, पैरा पावर लिफ्टिंग में जसप्रीत कौर और सुमन देवी महिला लाइटवेट वर्ग में पदक स्पर्धा में इस समय वजन उठा रही है। और इस समय जो जानकारी है उसके अनुसार सुमन देवी रैंक में पहले नंबर पर चल रही हैं। उधर लॉन बॉल्स में रूपा तिर्की और पिंकी की भारतीय जोड़ी का मुकाबला दक्षिण अफ्रीका की थाबेलो मुवांको और जैकी वैन रेहन्सबर्ग के साथ महिला डबल्स वर्ग के दूसरे दौर में चल रहा है। भारतीय समय के अनुसार रात 10 बजे जिम्नास्टिक्स में पुरुष टीम फाइनल पदक स्पर्धा होगी। रात 10:30 बजे लॉन बॉल्स में पुतुल सोनोवाल फॉकलैंड द्वीप समूह के सेसिल अलेक्जेंडर के साथ पुरुष सिंगल्स वर्ग के दूसरे दौर का मैच खेलेंगे। रात 10:40 पर पावर लिफ्टिंग में महिला हेवीवेट वर्ग में कस्तूरी राजमणि पदक के लिए चुनौती पेश करेंगी। रात 11 बजे बॉक्सिंग में जदुमणि सिंह स्कॉटलैंड के आरोन कुलेन से पुरुष 55 किलोग्राम वर्ग के 32 मैच में मुकाबला करेंगे। भारतीय समय के अनुसार रात 12 बजे पैरा तैराकी में RVV BK बुदिगिना और अली माम पुरुषों की 100 मीटर फ्री स्टाइल S13 फाइनल में उतरेंगे। 12:30 बजे श्रीहरि नटराज 50 मीटर बैक स्ट्रोक सेमीफाइनल में चुनौती पेश करेंगे। इसी समय पैरा पावर लिफ्टिंग में झंडू कुमार और सुधीर पुरुषों के हैवीवेट वर्ग की पदक स्पर्धा में दावेदारी पेश करेंगे।
1: उधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में हिस्सा लेने वाले भारतीय दल को शुभकामनाएं दी है। उन्होंने भरोसा जताया है कि देश के एथलीट ग्लासगो में हो रहे इस मल्टी स्पोर्ट्स इवेंट में जुन पक्के इरादे और बेहतरीन खेल के साथ हिस्सा लेंगे। श्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा है कि ग्लासगो कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 शुरू हो रहे हैं, भारतीय दल को मेरी शुभकामनाएं। मुझे भरोसा है कि हमारे एथलीट गेम्स में जोश, पक्के इरादे और बेहतरीन खेल के साथ हिस्सा लेंगे। हमारे

0: एथलीटों का हुनर और लगन हमेशा अनगिनत भारतीयों को प्रेरित करता रहेगा। और श्रोता, हम आपको बता दें कि कॉमनवेल्थ गेम्स की शुरुआत कल एक रंगारंग कार्यक्रम में हुई। गेम्स की शुरुआत का आधिकारिक ऐलान किंग चार्ल्स तृतीय ने किया। ग्लासगो 2014 के बाद एक बार फिर से कॉमनवेल्थ गेम्स की मेजबानी कर रहा है। ओलंपिक पदक विजेता मीराबाई चानू और लवलीना बोरगोहेन ने परेड ऑफ नेशंस के दौरान भारतीय टीम का नेतृत्व भी किया। वेटलिफ्टिंग में भारत की ओलंपिक रजत पदक विजेता मीराबाई ने तिरंगा उठाया, जबकि टोक्यो ओलंपिक की कांस्य पदक जीतने वाली लवलीना ने सेरेमोनियल कॉमनवेल्थ बैटन उठाया। धर्मेंद्र, भारतीय दल पैरा स्पोर्ट्स समेत 13 खेलों में हिस्सा ले रहा है
1: जी। और एक अच्छी खबर हम आपके लिए बताएं कि नहीं है भारत के लिए, क्योंकि राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी नाडा ने बर्मिंघम राष्ट्रमंडल खेल 2022 की रजत पदक विजेता जूडो खिलाड़ी तुलिका मान को पिछले 12 महीनों में 3 बार रहने के स्थान की जानकारी देने में नाकाम रहने के कारण अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया है। इसके कारण उन्हें ग्लासगो में चल रहे राष्ट्रमंडल खेलों की भारतीय टीम से हटा दिया गया है। तुलिका ने पिछले राष्ट्रमंडल खेलों में 78 किलोग्राम से अधिक वजन वर्ग में रजत पदक जीता था। इस बार भी वो पदक की प्रबल दावेदार थी। अब उन पर 2 साल के प्रतिबंध का खतरा मंडरा रहा है। वह ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों से हटाई जाने वाली दूसरों जूडो खिलाड़ी हैं। कल एक अन्य भारतीय जूडो खिलाड़ी अरुण कुमार को 73 किलोग्राम से कम वजन वर्ग से हटा दिया गया था, क्योंकि वे प्रतियोगिता से बाहर की गई डोप जांच में विफल रह गए थे।
0: और अब बात स्क्वैश पर भी कर लेते हैं। ओंटारियो में भारत की उभरती खिलाड़ी अनाहत सिंह ने विश्व जूनियर स्क्वैश व्यक्तिगत चैंपियनशिप में शानदार प्रदर्शन जारी रखते हुए विमेन सिंगल्स के सेमीफाइनल में जगह बना ली है। उधर ओम सेमवाल, संदेश रवि कुमार और रतिका सिलान कड़े मुकाबले में जीत दर्ज करके आज PSA सिंगापुर चैलेंजर स्क्वैश टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए।
2: विश्व जूनियर स्क्वैश व्यक्तिगत चैंपियनशिप के क्वार्टर फाइनल में शीर्ष वरीयता प्राप्त अनाहत सिंह के खेल में धैर्य और कौशल का अद्भुत संगम देखने को मिला। महिला रैंकिंग में विश्व की 20वें नंबर के खिलाड़ी अनाहत ने अंतिम 8 के मैच में मिस्र की हबीबा रिज्क को 4 सेट तक चले मुकाबले में 11-7, 11-5, 6-11, 11-9 से हराया। इस प्रतियोगिता में पिछले साल कांस्य पदक जीतने वाली अनाहत इस तरह से विश्व जूनियर चैंपियनशिप में लगातार 2 बार सेमीफाइनल में पहुंचने वाली पहली बन गई है। दिल्ली की रहने वाली अनाहत का अगला मैच मिस्र की ही बार्ब समीह से होगा। उम्मीद है कि वह अपना शानदार फॉर्म जारी रखते हुए न सिर्फ सेमीफाइनल जीतेंगी बल्कि इस बार खिताब पर भी अपना नाम दर्ज कराएंगी। उधर PSA सिंगापुर चैलेंजर स्क्वैश टूर्नामेंट में भी भारत के पदक जीतने की बेहतर उम्मीद बनी हुई है। रवि कुमार ने पुरुषों के दूसरे दौर में जापान की 7वीं वरीयता प्राप्त श्रोता यासुन श्री को 12-10, 11-5, 3-11, 11-7 से हराकर क्वार्टर फाइनल का टिकट कटाया। चौथी वरीयता प्राप्त ओम सेमवाल ने स्थानीय खिलाड़ी आरोन लियांग को 5 सेट के कड़े मुकाबले में 11-9, 4-11, 4-11, 12-10, 11-8 से हराकर अगले दौर में जगह बनाई। महिला वर्ग में तीसरी वरीयता प्राप्त रतिका को दूसरे दौर में स्थानीय प्रतिद्वंदी वायलिन ओ योंग पर जीत हासिल करने के लिए काफी पसीना बहाना पड़ा। 5 सेट के मैराथन मुकाबले में रतिका ने 8-11, 11-9, 11-2, 7-11, 12-10 से जीत हासिल की। जया भारती स्पोर्ट्स एन।
0: बात कर लेते हैं निशानेबाजी पर, जहां संयम ने बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए सिल्वर मेडल पर निशाना साधा। चीन के हांगझाऊ में ISSF विश्व कप राइफल पिस्टल शॉटगन प्रतियोगिता में भारत के पदक का खाता खुल गया है। संयम ने सटीक निशाना साधते हुए आज महिलाओं के 10 मीटर एयर पिस्टल इवेंट में रजत पदक जीता।
3: पूर्व जूनियर वर्ल्ड और एशियन चैंपियन संयम ने क्वालिफिकेशन राउंड में 579 के स्कोर के साथ फाइनल के लिए क्वालिफाई किया। उन्होंने पोडियम फिनिश पक्का करने के लिए फाइनल फायरिंग लाइन पर कदम रखने से पहले अपनी सीरीज में लगातार प्रिसिजन बनाए रखा। 22 वर्षीय संयम ने कुल 243.4 का स्कोर बनाकर रजत पदक अपने नाम किया। वह गोल्ड मेडल जीतने से सिर्फ 0.2 पॉइंट से चूक गईं। हांगझोंग में मिला यह सिल्वर मेडल संयम का दूसरा ISSF वर्ल्ड कप मेडल है। उन्होंने इससे पहले कतर के दोहा में हुए 2025 ISSF वर्ल्ड कप फाइनल में भी महिलाओं के 10 मीटर एयर पिस्टल इवेंट में सिल्वर मेडल जीता था। चीन की याओ किया नक्सुन 243.6 पॉइंट्स के साथ पहले स्थान पर रही, जबकि ईरान की ओलंपियन हनिया रोस्तमियन 21 पॉइंट्स के साथ तीसरे स्थान पर रही। हालांकि कई बार ISSF वर्ल्ड कप गोल्ड मेडल जीत चुकी सुरुचि सिंह फाइनल में कुल 137.6 पॉइंट्स के साथ 7वें स्थान पर रही। पुरुषों के 25 मीटर रैपिड फायर पिस्टल

0: क्वालिफिकेशन में भावेश शेखावत भारत के सबसे अच्छे खिलाड़ी रहे। उन्होंने 22वां स्थान हासिल किया। ओंकार सिंह, अनिश भनवाला, प्रदीप सिंह शेखावत और आदर्श सिंह भी क्वालिफाई नहीं कर सके। यहाँ पर हम आपको बता दें, ISSF वर्ल्ड कप में व्यक्तिगत गोल्ड मेडल जीतने वाले खिलाड़ी साल के अंत में होने वाले ISSF वर्ल्ड कप फाइनल के लिए क्वालिफाई करेंगे, जो दिसंबर में रोम में होगा। हांगझोंग शूटिंग मीट एक संयुक्त ISSF वर्ल्ड कप है, जिसमें राइफल, पिस्टल और शॉटगन शूटर हिस्सा ले रहे हैं और यह प्रतियोगिता मंगलवार को समाप्त हो जाएगी। ज्योत्सना पांडे, स्पोर्ट्स स्कैन।
1: और अब बात क्रिकेट की। भारत और जिम्बाब्वे के बीच 3 मैच की श्रृंखला का दूसरा 2020 क्रिकेट मैच कल हरारे में खेला जाएगा। इससे पहले कल रात भारत ने पहले मैच में 7 विकेट से जीत हासिल कर श्रृंखला में 1-0 की बढ़त बना ली। सुनते हैं ये रिपोर्ट।
2: आयरलैंड और फिर इंग्लैंड के खिलाफ करारी शिकस्त के बाद कल जिम्बाब्वे पर जीत के साथ भारतीय टीम के कप्तान श्रेयस अय्यर की अगुवाई में सफलता की राह पर वापस लौटती दिख रही है। मैच में मयंक यादव की अगुवाई में भारतीय गेंदबाजों के शानदार प्रदर्शन के चलते मेजबान टीम 7 विकेट पर सिर्फ 125 रन ही बना सकी थी। मयंक ने किफायती गेंदबाजी करते हुए 2 विकेट लिए। इसके बाद वैभव सूर्यवंशी के 19 गेंद में बनाए गए 50 रन की बदौलत भारत ने ये मैच आसानी से जीत लिया। मैच में वैभव इंटरनेशनल मैच में 50 लगाने वाले यंगेस्ट प्लेयर बन गए। उन्होंने सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड तोड़ दिया। सूर्यवंशी ने अर्धशतक लगाने के बाद अपनी मां के नाम आरती का पहला लेटर ए का साइन बनाया। अपनी इस पारी को वैभव ने बेहद खास बताया।
3: आपका जब करियर का स्टार्टिंग फेज रहता है और इस तरीके के इनिंग्स अगर आपको मिलते इनिंग्स में और आप अच्छा करते तो कॉन्फिडेंस आता है नेक्स्ट मैचेस के लिए। ऐसा लग रहा था कि मैं अपने जोन में हूँ और खुद के स्ट्रेंथ को मैंने बैक किया। फैमिली को डेडिकेट करूंगा, अपने कोचेस को डेडिकेट करूंगा, उन सबों को डेडिकेट करूंगा जिन्होंने मेरे जर्नी में मेरा साथ दिया है, सपोर्ट किया है मुझे हर अच्छे बुरे फेज में।
2: कप्तान श्रेयस अय्यर ने भी युवा मयंक और वैभव के प्रदर्शन की जमकर तारीफ की।
4: एक्सेप्शनल स्टार्ट गिवन बाय मयंक, द वे ही बोल्ड इन टर्म्स ऑफ एग्जीक्यूटिंग हिज लाइन एंड लेंथ, नॉट गिविंग देम रूम टू स्कोर रन्स, आई थिंक दैट सेट द रिदम फॉर अस एंड देन वैभव कमिंग इन द पावर प्ले गिविंग अस एक्सेप्शनल स्टार्ट। हिज फियरलेस यंगस्टर एंड द वे ही अप्रोच दिस इनिंग्स वाज इनडोमिटेबल। आई थिंक ही हैज प्लेड हियर बिफोर सो हीज गॉट अ फेयर आईडिया अबाउट हाउ द विकेट्स आर। हीज गॉट 175 आई गेस इन अंडर 19 फाइनल, सो डेफिनेटली ही पजेसेस इमेंस कॉन्फिडेंस व्हेन ही स्टेप्स ऑन टू द फील्ड, सो यू कुड सी इट टुडे।
2: अब कल भारत के पास दूसरे मैच में जीत के साथ सीरीज में 2-0 की निर्णायक बढ़त लेने का मौका होगा। हालांकि ये काम इतना आसान भी नहीं होगा क्योंकि जिम्बाब्वे ने हाल ही में अपने घरेलू मैदानों पर अच्छा प्रदर्शन किया। जिम्बाब्वे की टीम भी जीत के लिए सब कुछ झोंक देगी, लेकिन इसके लिए उनके गेंदबाजों के साथ साथ बल्लेबाजों को भी अपना शत प्रतिशत देना होगा। पहले मैच में हरारे की पिच तेज गेंदबाजों के लिए अच्छी नजर आई थी। हालांकि क्रीज पर सेट होने के बाद बल्लेबाज भी आसानी से रन बनाते हुए दिखाई दिए। इस मैदान पर अब तक कुल 84 2020 मुकाबले खेले गए हैं, जिसमें से 45 में जीत पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम के हाथ लगी है। वहीं 37 मुकाबलों में रनों का पीछा करने वाली टीम ने जीत दर्ज की है। पहली पारी का औसतन स्कोर 155 रहा, वहीं दूसरी पारी का औसतन स्कोर 133 रन रहा है। कल हरारे में मौसम पूरी तरह से आने की उम्मीद है और बारिश होने की आशंका ना के बराबर है। ऐसे में एक रोमांचक मुकाबले की पूरी उम्मीद है। निखिल कुमार, स्पोर्ट्स स्कैन।
5: धर जापान के आचीना गोया में 19 सितंबर से शुरू होने वाले एशियाई खेलों की क्रिकेट स्पर्धा पुरुषों के मैच के साथ 24 सितंबर से शुरू होगी। इसमें मौजूदा चैंपियन भारत और पाकिस्तान के पुरुष और महिला क्रिकेट टीम को सीधे क्वार्टर फाइनल में जगह दी गई है। धर्मेंद्र, भारतीय महिला टीम जापान के खिलाफ अपने अभियान की शुरुआत करेगी, जबकि पुरुष टीम का मुकाबला प्रारंभिक चरण के मैच के बाद तय होगा।
1: और क्रिकेट के मैदान से अब शतरंज के बिसात की तरफ चलते हैं। भारत ने 16 से 27 सितंबर तक उज्बेकिस्तान के समरकंद में होने वाले फिडे शतरंज ओलंपियाड के लिए टीम की घोषणा कर दी है। ओपन वर्ग की टीम में विश्व चैंपियन डी गुकेश और शानदार फॉर्म में चल रहे आर प्रज्ञानंदा के अलावा अर्जुन एरिगैसी, निहाल सरीन और विदित गुजराती शामिल हैं। सरीन 2024 में खिताब जीतने वाली टीम का हिस्सा नहीं थे। मैली में कोनेरू आर वैशाली, विश्व विजेता दिव्या देशमुख, वंतिका अग्रवाल और सविता श्री बी को शामिल किया गया। इसमें से हम्पी और सविता श्री 2024 में स्वर्ण पदक जीतने वाली टीम में शामिल नहीं थी।
5: धर्मेंद्र, 5 बार के विश्व चैंपियन विश्वनाथन आनंद ने विश्व शतरंज की सर्वोच्च संस्था फिडे के अंतरिम अध्यक्ष का पदभार संभाल लिया है। इसके प्रमुख अकार्डी डोरकोविच को यूरोपीय संघ ने प्रतिबंधित व्यक्तियों की सूची में शामिल कर दिया था, जिसके बाद उन्होंने प्रतिबंध हटने तक अपना पद छोड़ दिया है।
1: और भारत की अंडर 20 फुटबॉल टीम 2027 में होने वाले AFC अंडर 20 एशिया कप क्वालिफायर की तैयारियों के तहत 3 और 6 अगस्त को सिंगापुर के खिलाफ 2 अंतरराष्ट्रीय मैत्री मैच खेलेगी।
5: और श्रोताओं, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का। कल स्पोर्ट्स कैन में इसी समय आपसे मुलाकात होगी खेल के मैदान की हर खबर के साथ।

0: आपको ये कार्यक्रम कैसा लगा, इस पर आप अपनी राय और सुझाव हमें स्पोर्ट्सकैन की ईमेल sportscan.air@gmail.com पर हमें भेज सकते हैं। तब तक के लिए मुझे और धर्मेंद्र को अनुमति दीजिए, नमस्कार।
1: परेशानियों से घिरे हैं, मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 1-4416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं हैं, मदद बस एक कॉल दूर है।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। मंत्रिमंडल ने पेपर लीक और परीक्षा में गड़बड़ी के मामलों में फास्ट ट्रैक अदालत बनाने और कड़ी सजा सुनिश्चित करने वाले मसौदा विधेयक को मंजूरी दी। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी में सुधार को लेकर सरकार सख्त, पेपर लीक मामले में 47 अधिकारी बर्खास्त। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह ने नई दिल्ली में CJP के प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात को सकारात्मक बताया। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही आज पेपर लीक सहित अन्य मुद्दों को लेकर विपक्ष के हंगामे के कारण लगातार पांचवें दिन भी बाधित हुई। मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति ने कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में बल्लारी गुंटकल खंड की तीसरी और चौथी लाइन को मंजूरी दी। गुजरात के कई हिस्सों में मूसलाधार वर्षा से जनजीवन प्रभावित। चीन में ISSF निशानेबाजी विश्व कप में भारत की संयम ने महिलाओं के 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में रजत पदक जीता। और राष्ट्रमंडल खेलों में पुरुषों की 50 मीटर बैकस्ट्रोक तैराकी में भारत के श्रीहरि नटराज ने सेमीफाइनल में जगह बनाई। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पेपर लीक और परीक्षा में गड़बड़ी के मामलों में फास्ट ट्रैक अदालत बनाने और कड़ी सजा के लिए एक मसौदा विधेयक को आज मंजूरी दे दी। संसद भवन परिसर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक में इसे मंजूरी दी गई। इस विधेयक को अगले सप्ताह संसद में पेश किए जाने की संभावना है। श्री मोदी ने कल एक वीडियो संदेश में पेपर लीक के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के प्रावधानों वाला विधेयक संसद में पेश करने की घोषणा की थी। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा है कि सरकार विद्यार्थियों के भविष्य के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठा रही है।
3: सोमवार को बिल तो हम लोग तो तैयारी कर रहे हैं। हम तो प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि छात्रों को लेकर के जो हम बिल ला रहे हैं तो उसमें कोई विलंब नहीं होना चाहिए, और जो प्रधानमंत्री जी ने कहा है इसमें कोई रुकावट पैदा करने के लिए कोई हठगंडे अपनाना ठीक नहीं होगा।
4: अब इसको राजनीतिकरण करके फायदा नहीं है, हम लोगों को ठोस कदम कैसे उठाना चाहिए छात्रों का भविष्य के लिए, इस पे ध्यान देना चाहिए।
2: इस बीच सरकार ने सख्त रुख अपनाते हुए राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी के 47 अधिकारियों को बर्खास्त कर दिया है। सूत्रों के मुताबिक इनमें से कुछ अधिकारियों के खिलाफ कानूनी और आपराधिक कार्रवाई भी की जाएगी। ये परीक्षा व्यवस्था में बड़े सुधार लाने की दिशा में एक अहम कदम है। साथ ही पेपर लीक के मामलों को लेकर विवादों में रही एजेंसी में किए जा रहे व्यापक बदलावों का हिस्सा भी है। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह ने आज नई दिल्ली में कांग्रेस जनता पार्टी के प्रतिनिधि मंडल से मुलाकात की। श्री नड्डा ने बताया कि मुलाकात सकारात्मक रही। उन्होंने कहा कि बैठक में परीक्षा प्रणाली में सुधार संबंधी मांगों को ध्यानपूर्वक सुना।
5: लगभग 2 घंटे चली सरकार की ओर से मैं और मेरे साथ सरकार के मंत्री जितेंद्र सिंह की बातचीत में शामिल हुए। उनकी बातें हमने सुनी, बातें सौहार्दपूर्ण वातावरण में हुई और कई दृष्टि से उन सारी बातों पर हर तरीके से चर्चा हुई।
2: श्री नड्डा ने बताया कि कांग्रेस जनता पार्टी ने 3 मुख्य मांगे रखी और परीक्षाओं के पेपर लीक पर रोक लगाने के लिए कुछ सुधारों का सुझाव भी दिया। श्री नड्डा ने कहा कि सरकार कल प्रतिनिधिमंडल के साथ एक और दौर की चर्चा करेगी। इस बीच प्रतिनिधिमंडल में शामिल कांग्रेस जनता पार्टी के प्रवक्ता आशुतोष रांका ने दावा किया कि सरकार ने सैद्धांतिक रूप से उनकी 2 मांगों पर सहमति दे दी है। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही आज लगातार 5वें दिन भी नीट परीक्षा पेपर लीक और विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन पर हंगामे के कारण सोमवार तक के लिए स्थगित कर दी गई।

0: हमारे संवाददाता से।
1: मानसून सत्र के पहले सप्ताह में कोई महत्वपूर्ण विधायी कार्य नहीं हो सका। सरकार की ओर से बार बार यह आश्वासन दिए जाने के बावजूद कि वह नीट पेपर लीक मामले पर चर्चा के लिए तैयार है, विपक्ष ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग को लेकर अपना विरोध प्रदर्शन जारी रखा। हंगामे के बीच गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने आज राज्यसभा में राष्ट्र गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026 पेश किया। इससे पहले लोकसभा और राज्यसभा ने कारगिल विजय दिवस के अवसर पर कारगिल युद्ध के शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि सरकार पहले दिन से ही नीट पेपर लीक मामले पर चर्चा के लिए तैयार थी, लेकिन कांग्रेस द्वारा रखी गई कुछ शर्तों के कारण इस मुद्दे पर चर्चा शुरू नहीं हो सकी। पीठासीन अधिकारियों और सरकार की ओर से व्यवस्था बनाए रखने की बार बार अपील के बावजूद विपक्षी सदस्य दोनों सदनों में विरोध प्रदर्शन करते रहे। लगातार हंगामे के कारण लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही पूरे दिन के लिए स्थगित कर दी गई। अनुपम मिश्र के साथ आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युवाओं के हित में शिक्षा और रोजगार से जुड़े मामलों के त्वरित निपटारे के लिए फास्ट अदालत बनाने की घोषणा की है। उन्होंने बताया कि मध्य प्रदेश के चारों महानगरों भोपाल, इंदौर, जबलपुर और ग्वालियर में ऐसे फास्ट ट्रैक कोर्ट स्थापित जाएंगे। इस बीच दिल्ली मेट्रो रेल निगम ने सूचित किया है कि मंडी हाउस और केंद्रीय सचिवालय मेट्रो स्टेशनों के प्रवेश द्वार अब खोल दिए गए हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति ने कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में बल्लारी गुंडकल खंड की तीसरी और चौथी रेल लाइन को 1264 करोड़ रुपए की कुल लागत से मंजूरी दे दी है। इससे भारतीय रेलवे का मौजूदा नेटवर्क लगभग 46 किलोमीटर बढ़ जाएगा। नई दिल्ली में सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि इससे आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के बीच संपर्क बेहतर होगा।
2: आंध्रा और कर्नाटक को जोड़ने वाले बहुत एक इम्पोर्टेंट इकोनॉमिक कॉरिडोर में रेलवे की थर्ड और फोर्थ लाइन और दूसरा है केमिकल सेक्टर को एक टोटली नए तरीके से भारत में डेवलप करने के लिए एक नई स्कीम अप्रूव हुई है। और केमिकल भी सेमीकंडक्टर की तरह एक फाउंडेशनल इंडस्ट्री है, इसलिए बहुत इम्पोर्टेंट था इस इंडस्ट्री के लिए एक नए तरीके से सोचना।
0: ये परियोजना प्रधानमंत्री गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान के तहत बनाई गई है, जिसका मुख्य उद्देश्य एकीकृत योजना और संबंधित पक्षों के परामर्श के माध्यम से बहुमार्गीय संपर्क और लॉजिस्टिक दक्षता को बढ़ाना है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने केंद्रीय मंत्री परिषद से रवनीत सिंह का इस्तीफा स्वीकार कर लिया है। श्री रवनीत रेल और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग राज्य मंत्री थे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज बुखारेस्ट में रोमानिया के प्रधानमंत्री इलिये बोलोयान से मुलाकात कर भारत रोमानिया साझेदारी को आगे बढ़ाने पर सार्थक चर्चा की। इस दौरान दोनों देशों ने द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा की और व्यापार, निवेश, स्वच्छ ऊर्जा, संचार तथा उभरती प्रौद्योगिकियों में सहयोग को मजबूत करने पर चर्चा की। दोनों नेताओं ने आपसी हित के क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर विचार विमर्श किया और रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने की अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि की। भारत ने कहा है कि जब तक पाकिस्तान सीमा पार आतंकवाद को समर्थन देना बंद नहीं करता, तब तक सिंधु जल संधि स्थगित रहेगी। नई दिल्ली में आज विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने भारत की जानबूझकर पाकिस्तान में बाढ़ लाने की मीडिया रिपोर्ट को खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि हाल ही में चिनाब नदी में पानी का बहाव इस सप्ताह जम्मू और उसके आसपास के इलाकों में मूसलाधार वर्षा के कारण बढ़ा है। विदेश मामलों के राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह ने कहा है कि सरकार अपने निकटवर्ती क्षेत्रों में हो रहे सब घटनाक्रमों पर कड़ी नजर रख रही है, जिनका उनके राष्ट्रीय हितों पर असर पड़ सकता है और राष्ट्रीय सुरक्षा की रक्षा और उसे मजबूत करने के लिए सभी आवश्यक उपाय किए जा रहे हैं। आज लोकसभा में लिखित उत्तर में श्री सिंह ने कहा कि सरकार ने द्विपक्षीय और बहुपक्षीय मंचों पर सीमापार आतंकवाद सहित आतंकवाद के खतरे से निपटने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग पर विशेष बल दिया है। उन्होंने कहा कि भारत सभी प्रासंगिक मंचों पर सीमापार आतंकवाद के प्रभाव के बारे में लगातार बात करता रहा है, विशेष रूप से जम्मू कश्मीर के बारे में। विदेश मामलों के राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह ने कहा है कि भारत आपसी हितों को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से बांग्लादेश के साथ निरंतर संपर्क में है। आज लोकसभा में लिखित उत्तर में श्री सिंह ने कहा कि भारत ने तीस्ता नदी व्याप

0: प्रबंधन और पुनः स्थापन परियोजना के संदर्भों तथा प्रस्तावित चीन म्यांमार बांग्लादेश आर्थिक गलियारे की रिपोर्टों पर ध्यान दिया है। भारत ने आज नई दिल्ली में आपदा जोखिम शमन पर तीसरी ब्रिक्स मंत्री स्तरीय बैठक की मेजबानी की। बैठक का समापन आपदा जोखिम शमन पर ब्रिक्स संयुक्त वक्तव्य को सर्वसम्मति से अपनाने के साथ हुआ। सदस्य देशों ने 2025-28 तक ब्रिक्स आपदा जोखिम शमन कार्य योजना के कार्यान्वयन में तेजी लाने और मजबूत समाज के निर्माण के लिए सहयोग को गहरा करने की सामूहिक प्रतिबद्धता की पुष्टि की। बैठक की अध्यक्षता गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने की। उन्होंने बेहतर सहयोग, नवाचार और सतत विकास के माध्यम से आपदा से निपटने की कार्य प्रणाली को मजबूत करने की अपनी साझा प्रतिबद्धता की पुष्टि की। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के सदस्य डॉ. कृष्णा वत्सा ने कहा कि ब्रिक्स सदस्य देशों ने एक साथ संयुक्त वक्तव्य, शहरी बुनियादी ढांचे के लिए स्वैच्छिक सिद्धांत और प्रारंभिक चेतावनी डेटा एकीकरण के लिए दिशा निर्देशों को अपनाया है।
1: ब्रिक्स महत्वपूर्ण देशों का समूह है। हम मिलकर डिसाइड करते हैं कि किन सारे एरियाज को हम और उस पर ध्यान केंद्रित करें, कहाँ पर हम ज़्यादा एक दूसरे से सहयोग कर सकते हैं। तो एक वर्क प्लान बनाने की बात थी और जो औपचारिक डॉक्यूमेंट्स हैं उनको भी हमने अडॉप्ट किया।
0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। गुजरात के कई इलाकों में मूसलाधार वर्षा के कारण जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि प्रभावित क्षेत्रों में राहत और बचाव कार्य जारी हैं।
2: सभी बाढ़ प्रभावित जिलों में युद्ध स्तर पर राहत और बचाव कार्य जारी है। नवसारी में आज NDRF, SDRF और भारतीय सेना की संयुक्त टीमों ने 14,000 से अधिक नागरिकों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया है। उधर अहमदाबाद में मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने अमली और घुमा जैसे जलभराव वाले क्षेत्रों का दौरा किया और स्वास्थ्य मंत्री ऋषिकेश पटेल के साथ समीक्षा बैठक की। इस बीच भारी जलभराव के कारण आज भी रेल यातायात प्रभावित हुआ है। मौसम विभाग ने कल वर्षा की चेतावनी दी है और राज्य के 7 जिलों के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। अपर्णा खुंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
0: मौसम विभाग ने गुजरात, कोंकण और गोवा, मध्य महाराष्ट्र, उड़ीसा और राजस्थान के कुछ हिस्सों में कल बहुत तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। पूर्वोत्तर भारत, तटीय कर्नाटक, पश्चिम बंगाल के गंगाई क्षेत्र, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पंजाब, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक और उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में भी कल मध्यम से तेज वर्षा की संभावना है। हिमाचल प्रदेश के जनजातीय जिले लाहौल में आज भीषण सड़क दुर्घटना में 13 लोगों की मौत हो गई। ये दुर्घटना उदयपुर पुलिस स्टेशन के अंतर्गत सीमा सड़क संगठन मार्ग पर कदुनाला राहुली के पास हुई, जब पहाड़ी से अचानक एक विशाल चट्टान लुढ़क कर वाहन पर गिर गई। घटना के बाद पुलिस, जिला प्रशासन के अधिकारियों और स्थानीय निवासियों ने बचाव और राहत कार्य शुरू किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने दुर्घटना पर गहरा शोक व्यक्त किया है। हमारी विशेष श्रृंखला पीपल्स पद्मा आकाशवाणी के साथ के अंतर्गत आज हम हॉकी खिलाड़ी सविता पुनिया से बात करेंगे, जिन्हें इस वर्ष प्रतिष्ठित पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। चीन के हांगचाओ में ISSF विश्व कप निशानेबाजी प्रतियोगिता में भारत की संयम ने आज महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में रजत पदक जीता। संयम ने क्वालिफिकेशन राउंड में 579 के स्कोर के साथ फाइनल के लिए क्वालिफाई किया। ग्लासगो में राष्ट्रमंडल खेलों के आज दूसरे दिन पुरुषों की 50 मीटर बैकस्ट्रोक तैराकी में भारत के श्रीहरि नटराज ने सेमीफाइनल में जगह बना ली है। सेमीफाइनल आज देर रात होगा। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मंत्रिमंडल ने पेपर लीक और परीक्षा में गड़बड़ी के मामलों में फास्ट ट्रैक अदालत बनाने और कड़ी सजा सुनिश्चित करने वाले मसौदा विधेयक को मंजूरी दी। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी में सुधार को लेकर सरकार सख्त, पेपर लीक मामले में 47 अधिकारी बर्खास्त। केंद्रीय मंत्री JP नड्डा और जितेंद्र सिंह ने नई दिल्ली में CJP के प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात को सकारात्मक बताया। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही आज पेपर लीक सहित अन्य मुद्दों को लेकर विपक्ष हंगामे के कारण लगातार 5वें दिन भी बाधित हुई। मंत्री

0: बालिगां दासिया मोनाम
1: होये सुबुजी दिनो जाको तो ताला पतर खेद लेखनी धरी बसिला
2: लुगा भुलनी पेट को दाना जीवो केमिति
0: कौन कहिलो कमळे पुथिरे मुई कालिया ठाकुर को नाम लेखे लेखे तांको गुण कीर्तन करी करी मोर तो भूकुसोस किछि नाही
2: तमर सीमा पुथि लेखिले पेट पुरुची मोर तो पुनी पेटटाय अछि केते दिन आ पेटरे उदाकना दे सोइबि तीन दिन हैला पेट को दाना जाइनी चुली अजला अब केते सहिबि कुहो
0: तीन दिन हैला चुली अजला किंतु मते तो तमे खाइबो देइछ
2: आ कोन कथांति हांडरे जो पखळा पानी थिला से तो को तमको देली मु खाली
0: पानी पी रही छ
2: हां आ कोन कथांति जे
0: चावल दीटा बसै थिलो नि असुविधा कोन हला
2: तमे तो भोलानाथ तमको कोन कहिबि हप्ता का तले जो लुगा खंड को बुनी थिलो से तो को प्रधान घर देई दी मान चावल आनथिली चार दिन चली गला आ केते दिन जीवो जे सेई दिन ठुर तो तमे लुगा बुना बंद ए पुथी लेखरे तमे मातिच आ मोहिन कपाल को सिना पिला छुआ नहांती जदि पुन जाय थांते बंचते केमिति कहिलो
0: सेई दिन तो हमको कालिया ठाकुर पिला छुआ देई नहांती कमळी
2: ना ना इतम ओ कपाल दोस
0: तमे बुझना कमळी ये जगा कालिया सुद्रा से हमर पिला छुआ बापों बा
2: मोर जेते बळे कोळो खाली तमे परिहास न करिवो केमिति
0: मु परिहास करनी कमळी सत कहुचि से माने हमर टिकी पिला ए कोन कमळी तुम आखिर लुह
2: ना से किछि नहि
0: तमे मते बाहा हि खूब दुख पाउ छ कमळी दि ओळा दि मुठा आहार तुमको दे परुनी कोडरे पिला टिके दे परलेनी
2: सेमती कुहने
0: ना कोमली मुगोटे अपदार्थ स्वामी एक केतो अच्छा बजातेरे जन्म सेथिरे पुनि निकोमा तमे
2: ये कोन कहुछ तमे
0: तमे तमे बापा घर को चल जा कोमली बापा आउ कोठे हाथ को देहात कर देबे तमे सुख रहिबो आखिर लोह सुखि जिवो
2: छी छी एको त मुनि तमे कहुछ तमो ठाकुर गणन को एक कथा सिखै छन कोमली सतगुरु

0: नंद गोसाई घरे अछंती नंद गोसाई
1: के दासिया कि रे अरे आ तते अपेक्षा करथिल दास
0: आगे
1: हे लुगाबुणा शेष होइछि कि नै आज देखिया पे तो पाकू जाई थांती
0: हां आपन को लुगाबुणा

मणु ही कराई सारिबो मो कथा मने पकाइबो ए मो श्रीफल गोटी धरी गरुड़

0: तू कौन पगला है लिखरे दासिया अरे ठाकुर कौन हाथ बढ़े जिनस ग्रहण करती
1: हां गुसी से हाथ बढ़े नेबे जदी न नियंती तेबे मुनोड़िया फेरे आनी मु
0: हसेनु दासिया तू भली पगला लोक मु कोठी देखि नाही
1: मोरे इतिक उपकार कर गुसी
0: करिबिरे दास पुरस्तम जाउथिले के ठाकुरंग पई किछि जिनस नबा को मना करंती नाही बारता बुढ़ांती नाही सेइथि पई खास नेबी पुणी फेरे आने को हबो एक कथा आज ठारु जाने
1: हाँ ठाकुर ननेले मु नड़िया फेरे आनी गोसे रुह गछुर चढ़ी नड़िया पारि आनी चोपा छड़े तुम हाथ देवी
0: हाउ जा ए, ए, ए, ए सामना नुआ गछ से ऊपर नड़िया टाणी जा तू नड़िया पारु पारु मु घरे लुगाटी रखी चाउल माने आनुछि
2: हे हे नोना ये गरुड़ पछे कौन करुछ कौन आनी दौन दिय निकट भोग करदेवी हाँ कड़ा कौड़ी काट दौ रत्न सिंहासन बुले आने बेढ़ा बुले देवी
0: भोग कर सारे

0: आकाशवाणी कटक समय वर्तमान राति 11टा बजिबाक जाउछि। हिंदी रे संवाद रिलेकरी प्रचार करुछु आकाशवाणी दिल्ली।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मोहम्मद जुबैर। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पेपर लीक और परीक्षा में गड़बड़ी के मामलों में फास्ट ट्रैक अदालत बनाने और कड़ी सजा के लिए एक मसौदा विधेयक को आज मंजूरी दे दी। संसद भवन परिसर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक में इसे मंजूरी दी गई। इस विधेयक को अगले सप्ताह संसद में पेश किए जाने की संभावना है। श्री मोदी ने कल एक वीडियो संदेश में पेपर लीक के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के प्रावधानों वाला विधेयक संसद में पेश करने की घोषणा की थी। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा है कि सरकार विद्यार्थियों के

0: भविष्य के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठा रही हैं।
1: सोमवार को बिल तो हम लोग तो तैयारी कर रहे हैं। हम तो प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि छात्रों को लेकर के जो हम बिल ला रहे हैं तो उसमें कोई विलंब नहीं होना चाहिए, और जो प्रधानमंत्री जी ने कहा है इस पे कोई रुकावट पैदा करने के लिए कोई हठगंडे अपनाना ठीक नहीं होगा। अब इसको राजनीतिकरण करके फायदा नहीं है, हम लोग को ठोस कदम कैसे उठाना चाहिए छात्रों का भविष्य के लिए, इस पे ध्यान देना चाहिए।
0: इस बीच सरकार ने सख्त रुख अपनाते हुए राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए के 47 अधिकारियों को बर्खास्त कर दिया है। सूत्रों के मुताबिक इनमें से कुछ अधिकारियों के खिलाफ कानूनी और आपराधिक कार्रवाई भी की जाएगी। ये परीक्षा व्यवस्था में बड़े सुधार लाने की दिशा में एक अहम कदम है। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह ने आज नई दिल्ली में कॉकरोच जनता पार्टी यानी सीजेपी प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात की। श्री नड्डा ने बताया कि बैठक में परीक्षा प्रणाली में सुधार संबंधी मांगों को ध्यानपूर्वक सुना गया। प्रतिनिधिमंडल में शामिल सीजेपी के प्रवक्ता आशुतोष राका ने दावा किया कि सरकार ने सैद्धांतिक रूप से उनकी दो मांगों पर सहमति दे दी है। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही आज लगातार पांचवें दिन भी नीट परीक्षा पेपर लीक और विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन पर हंगामे के कारण सोमवार तक के लिए स्थगित कर दी गई। राज्यसभा की कार्यवाही दूसरे स्थगन के बाद फिर शुरू होने पर गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026 पेश किया। विधेयक पेश होने के बाद विपक्षी दलों ने नीट मुद्दे पर फिर से नारेबाजी शुरू कर दी। हंगामा जारी रहने पर उपसभा पति हरिवंश ने सदन की कार्यवाही सोमवार तक के लिए स्थगित कर दी। दिल्ली यातायात पुलिस ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता धारा 163 के अंतर्गत लागू निषेधाज्ञा के मद्देनजर नागरिकों को अधिसूचित क्षेत्र में अनावश्यक आवाजाही से बचने और वैकल्पिक मार्गों का उपयोग करने की सलाह दी है। इसके साथ ही यातायात पुलिस ने बताया है कि आपातकालीन सेवाएं जिनमें एम्बुलेंस, अग्निशमन सेवाएं, अधिकृत सरकारी वाहन शामिल हैं, निर्धारित अनुमति के अनुसार संचालित होती रहेंगी। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए के महाप्रबंधक स्तर पर वरिष्ठ पेशेवर पदों की नियुक्ति के लिए विज्ञापन जारी किए गए हैं। साथ ही संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी के प्रतिभा सेतु पोर्टल के माध्यम से 16 युवा पेशेवरों की भर्ती प्रक्रिया भी शुरू की गई है। एनटीए ने एक बयान में कहा कि ये उपाय एजेंसी के संस्थागत पुनर्निर्माण की दिशा में पहला ठोस कदम है, जिसे प्रोफेसर के राधाकृष्णन की अध्यक्षता वाली उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समिति की सिफारिशों के अनुरूप लागू किया जा रहा है। मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति ने कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में बल्लारी गुंतकल खंड की तीसरी और चौथी रेल लाइन को 1264 करोड़ रुपए की कुल लागत से मंजूरी दे दी है। इससे भारतीय रेलवे का मौजूदा नेटवर्क लगभग 46 किलोमीटर बढ़ जाएगा। नई दिल्ली में सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि इससे आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के बीच संपर्क बेहतर होगा। चीन के हांगझोउ में आईएसएसएफ विश्व कप निशानेबाजी प्रतियोगिता में भारत की संयम ने आज महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में रजत पदक जीता। संयम ने क्वालिफिकेशन राउंड में 579 के स्कोर के साथ फाइनल के लिए क्वालिफाई किया। उन्होंने कुल 243.4 का स्कोर बनाकर दूसरा स्थान हासिल किया और स्वर्ण पदक जीतने से सिर्फ 0.2 पॉइंट्स से चूक गई। चीन की याओ क्यांग सुन 243.6 पॉइंट्स के साथ पहले स्थान पर रहीं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय साइरा मुज्तबा। The Union Cabinet today approved a draft bill to set up fast-track courts and to ensure stricter punishment in cases of paper leaks and exam malpractices. The Cabinet meeting chaired by Prime Minister Narendra Modi at the Parliament House complex approved the draft bill. Sources told Akashvani News that the proposed legislation is expected to be introduced in the Parliament next week. In a video message yesterday, Prime Minister Modi had announced about bringing a bill with provisions of strong action in cases of paper leaks. Meanwhile, in a major bid to bring out serious examination